मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 अगस्त सन 2026 प्रातः के 5:57 होने को है। अब हमारी पहली सभा आरंभ होती है। आप सभी को मिलाद-ए-नबी और ओणम की बहुत सारी शुभकामनाएं।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी

0: लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपेनिये के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है वंदना।

यह मृत्ति का केवल मृत्ति का नहीं, असंख्य यज्ञाग्नियों में तपकर निकली हुई राष्ट्रात्मा की विभूति है। इसके कण कण में किसी अधूरे स्वप्न की पूर्ण आहुति, किसी वीर की मौन शपथ और किसी माँ की अश्रुसिक्त प्रार्थना गुप्त है। पर्वत इसके धैर्य के मेरुदंड है, नदियां इसकी स्मृतियों की चीर प्रवाहमान सरिताएं और नभ उन बलिदानों का अनंत पट है जिन पर स्वाधीनता ने अपने रक्तिम अक्षरों से इतिहास लिखा है। और वह ध्वज, वह केवल आकाश में लहराता हुआ वस्त्र नहीं, करोड़ों हृदयों की सामूहिक चेतना का वह अग्नि शिखर है जिसके सम्मुख समय भी अपना मस्तक झुका देता है।

जब सृष्टि के समस्त शब्द अपने अर्थों का परित्याग कर महाशून्य की निष्पंद निस्तब्धता में समाधिस्त हो जाते हैं, तब उस मौन के गर्भ से एक ऐसा नाद प्रस्फुटित होता है जिसे श्रवण नहीं केवल चेतना सुनती है। वह स्वर नहीं अनाहत स्पंदन है, वह ज्योति नहीं ज्योति के जन्म से पूर्व का आदि आलोक है। जैसे रात्रि के कृष्णाभ वक्ष में प्रभात अपनी पहली किरण को गर्भित रखता है, वैसे ही समस्त चराचर उस अदृश्य पर ब्रह्मा की एक अनंत अनुलंघ्य और अविराम धड़कन मात्र है।

हमने अपने चारों ओर अहंकार की अभेद्य प्राचीरें चुन दी और फिर उन्हीं प्राचीरों की छाया में अनंत का अन्वेषण करते रहे, स्वयं को क्षुद्र बिंदु समझते रहे, जबकि अंतरात्मा के अतल में एक अगाध अनिर्वचनीय महासागर निरंतर ज्वार ले रहा था। जिस क्षण मैं का हिमाच्छादित शिखर पिघलता है, उसी क्षण चेतना की सरिता अपना नाम, अपना रट और अपना पृथकत्व विसर्जित कर देती है और तब बूंद को पहली बार अनुभूति होती है कि वह सागर में मिली नहीं, वह सागर से कभी विलग

जब नियति के नभ पर निराशा के कृष्ण मेघ इतने घने हो जाएं कि दिशा स्वयं अपने अस्तित्व का स्मरण कर बैठे, जब पथरीले समय के चरणों से आशा के अंतिम पुष्प भी झर जाएं, तब वह अदृश्य अनुकंपा वर्षा बनकर नहीं आती, वह तो अंतरात्मा की अतल भूमि में सुप्त पड़े किसी दिव्य बीज का मूक अंकुरण बन जाती है। आंधियां तब भी चलती है, मरुभूमियां तब भी तपती हैं, किंतु उसी अग्नि के मध्य कहीं एक कमल जन्म लेता है और मनुष्य समझता है कि कृपा ने परिस्थिति नहीं बदली, उसने परिस्थिति के भीतर देखने वाली दृष्टि को ही परिवर्तित कर दिया।

फिर जीवन की संध्या किसी अदृश्य वीणाकार की भांति अस्तित्व की अंतिम तार को स्पर्श करती है और एक एक करके नाम, परिचय, अभिलाषा, उपलब्धि और अहंकार के समस्त स्वर मौन होने लगते हैं। जैसे धूप स्वयं को अग्नि में अर्पित कर सुगंध बन जाती है, जैसे हिमकण सूर्य के अधर पर अपना पृथक अस्तित्व खोकर जलधारा बन जाता है, जैसे नदी अपने समस्त वक्र पथों का इतिहास विसर्जित कर महासागर की निःसीम बाहों में समा जाती है, वैसे ही मनुष्य भी अनंत अपने मैं की अंतिम आहुति देकर उस अखंड अव्यक्त अनादि चेतन प्रकाश में प्रतिष्ठित हो जाता है। वहां कोई दूरी नहीं, कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई साधक नहीं रहता, केवल वह रहता है जो सदैव था, जो अभी है और जो समस्त अस्तित्व के विलय के पश्चात भी शीश रहेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे वंदना, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब सुनिए चिंतन, आलेख पूजा शर्मा का है, वाचक स्वर मनीष कुमार सोनी के।
1: छोटे प्रयास बड़ी सफलता देते हैं। जीवन में छोटे प्रयास बड़ी सफलताओं की सीढ़ी बन जाते हैं, जो सुनने में हमें छोटी भले ही लगती है, लेकिन जीवन बदलने की ताकत रखती है। छोटे प्रयास ही बड़ी सफलता की नींव होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता अचानक मिलती है, कोई बड़ा मौका मिलेगा, कोई चमत्कार होगा और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सच ये है कि सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि रोज उठाए गए छोटे छोटे कदमों से मिलती है। सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो क्या वो सीधे दौड़ने लगता है? नहीं, वो पहले गिरता है, फिर उठता है, फिर दो कदम चलता है, फिर गिरता है। उसके वो छोटे छोटे प्रयास ही उसे एक दिन बिना रुके चलना सिखा ही देते हैं। इसी तरह जीवन में भी हर छोटी कोशिश मायने रखती है। यदि आप रोज सिर्फ 20 मिनट तक पढ़ते हैं तो एक साल में आप हजारों पन्ने पढ़ चुके होंगे। अगर आप रोज 10 मिनट व्यायाम करते हैं तो कुछ ही महीनों में आपका शरीर और आत्मविश्वास दोनों बदल जाएंगे। अगर आप रोज एक नई चीज सीखते हैं तो कुछ ही सालों में आप साधारण से असाधारण बन सकते हैं। समस्या ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, समस्या ये है कि हम छोटे प्रयासों को छोटा समझकर उन्हें शुरू ही नहीं करते। हमें लगता है इतना करने से क्या होगा, लेकिन याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। एक किसान बीज बोते समय ये नहीं सोचता कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा बीज है। वो जानता है कि इसी छोटे बीज में पूरा पेड़, पूरी फसल छिपी है। बस जरूरत है धैर्य, देखभाल और निरंतर प्रयास की। हम भी अपने सपनों के बीज रोजाना बो सकते हैं। थोड़ी मेहनत, थोड़ा अनुशासन और थोड़ा धैर्य रखना जरूरी होगा। दुनिया के हर सफल व्यक्ति की कहानी उठाकर देख लीजिए। किसी ने एक दिन में ही सफलता नहीं पाई, उन्होंने रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास किया। छोटे प्रयास हमें तीन बड़ी चीजें सिखा ही देते हैं। पहला अनुशासन, दूसरा धैर्य और तीसरा आत्मविश्वास। जब हम रोज छोटी जीत हासिल करते हैं तो हमें अपने ऊपर भरोसा होने लगता है और यही भरोसा आगे चलकर बड़ी जीत में बदलता है। बड़ी सफलता का रास्ता कभी भी बड़ी शुरुआत से नहीं, बल्कि छोटी लेकिन लगातार कोशिशों से बनता है। तो आज से ये मत सोचिए कि मैं बड़ा क्या कर सकता हूं, ये सोचिए मैं आज छोटा सा अच्छा कदम कौन सा उठा सकता हूं, क्योंकि वही छोटा कदम कल आपकी बड़ी मंजिल की शुरुआत बनेगा। हम सभी को अपने जीवन में रोज छोटे प्रयास करना चाहिए, जिससे एक दिन बड़ी सफलता हमारे समक्ष होगी। इसलिए छोटे प्रयासों पर निरंतर कार्य करते रहें। ईश्वर हमारे प्रयास को बड़ी सफलता में एक दिन जरूर परिवर्तित कर देगा।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख पूजा शर्मा का था, वाचक स्वर मनीष कुमार सोनी के। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब आपको सुनवा रहे हैं खेती की बातें। इसमें आप सुनेंगे अंतर्वर्ती शस्य क्रियाएं, डॉक्टर नरेंद्र कुमावत।
2: किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमावत कृषि महाविद्यालय इंदौर से आया हूं और आपको खरीफ फसलों में अंतर्वर्ती शस्य क्रियाओं के बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं फसलों में सभी फसलों में अलग अलग प्रकार की शस्य क्रियाएँ की जाती है और इनका फसल उत्पादन में एक विशेष योगदान है। खरीफ फसल में अंतर्वर्ती शस्य क्रियाएँ जैसे निराई गुड़ाई करना, मिट्टी चढ़ाना, डोरा चलाना, हल चलाना इत्यादि, इन सभी क्रियाओं का एक विशेष महत्व है। जैसे निराई गुड़ाई करने से खरपतवार नष्ट होते हैं और साथ में वायु का संचार भी अच्छा होता है, जिससे फसलों की बढ़वार और पैदावार में इजाफा होता है और साथ में ये क्रियाएं मृदा में नमी को भी संरक्षित करती है। निराई गुड़ाई करने से जल कणिकाएं टूट जाती है, जिससे पानी का ह्रास भी कम होता है। जैसा आप सब जानते हैं कि खरीफ फसलों में पानी की कमी वैसे भी बनी रहती है, इसीलिए खरीफ फसलों में निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक क्रिया है। अब हम फसलों के अनुसार क्या क्या अंतर्वर्ती शस्य क्रियाएं कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सोयाबीन हमारे क्षेत्र की प्रमुख फसल है, इसमें हम दो निराई गुड़ाई कर सकते हैं, पहली 25 से 30 दिन पे तथा दूसरी 40 से 50 दिन के अवश्य हमें करनी चाहिए, जिससे खरपतवार तो नष्ट होते ही हैं, साथ में वायु का संचार भी अच्छा होता है, जिससे फसल की पैदावार और बढ़ोतरी होती है। सोयाबीन की फसल के बाद हमारे क्षेत्र मालवा निमाड़ में कपास की फसल भी बहुत ऐसे लगाई जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह फसल काफ़ी फैलने वाली होती है, इसके कारण पौधे गिरने का भय रहता है। अगर पौधे गिर जाए तो पैदावार के साथ साथ गुणवत्ता में भी कमी आती है, इसलिए यह आवश्यक है कि कपास के पौधों को सीधा रखा जाए। इसके लिए कपास के पौधों को दोनों तरफ से मिट्टी चढ़ाई जाए और यह कार्य लगभग 60 दिन की अवस्था में हमें कर लेना चाहिए। यह क्रिया आप देसी हल से, मेड बनाने वाले हल से कर सकते हैं। ऐसा करने से मिट्टी चढ़ाने के साथ साथ खरपतवार भी नष्ट होते हैं। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में मक्का और ज्वार की फसल का भी एक विशेष योगदान है, इसमें भी निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक है। इस क्रिया में हम लगभग 3 से 4 सप्ताह के बाद बेल चलित ब्लेड हैरो या हस्त चलित व्हील हो से एक निराई गुड़ाई कर सकते हैं। ये मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करता है, जिससे फसल में अच्छा संचार, वायु का अच्छा संचार होता है और साथ में अच्छी बढ़वार भी होती है। इसके बाद हम मूंगफली की फसल में भी अंतर्वर्ती शस्य क्रियाओं का एक विशेष योगदान है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि मूंगफली जमीन के अंदर लगती है। इसके लिए हमें 45 से 50 दिन में हम देखते हैं कि फूल और सुइयां बनना प्रारंभ हो जाती है। इस समय मूंगफली के पौधों के चारों ओर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना अति आवश्यक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सुइयां मिट्टी में जाकर फली का निर्माण करती है, ये कार्य करने से ज़्यादा फलियां बनेगी और पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी अरहर की फसल, जो एक लंबी अवधि वाली फसल होती है और अधिक फैलने वाली भी होती है। इस फसल में पहली निराई गुड़ाई 30 दिन पर तथा दूसरी निराई गुड़ाई हम उसके 20 दिन बाद करें। यदि संभव हो तो 2 से 3 बार डोरा चलाकर भी ये कार्य हम कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र निमाड़ मालवा में कुछ किसान भाई मूंग उड़द की फसल भी उगाते हैं, उनको भी मेरी यही सलाह है कि पहली निराई गुड़ाई 25 से 30 दिन पे तथा दूसरी निराई गुड़ाई उसके ठीक 20 दिन बाद अवश्य करें। यह कार्य किसान भाई खुरपी या डोरा चलाकर भी कर सकते हैं। इन सभी क्रियाओं को फसल अनुसार अपनाकर किसान भाई अपनी पैदावार में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्वर्ती शस्य क्रियाएं विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नरेंद्र कुमावत।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

श्री राम के हाथों जब पल भर में शिवजी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हो आया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे, किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिख पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: कार्यक्रम विवरण में आपको बता दें, आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपसे थोड़ी देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपका पत्र कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे राजेश, कार्यक्रम प्रमुख और मुकाम सिंह चौहान। 8:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में आज हम आपको जानकारी देंगे, जानकारी भरा ये फिल्म संगीत होगा और आप जानकारी सुन सकेंगे मिलाद उन नबी और ओणम के बारे में। प्रातः 9:00 आप सुनेंगे लोक संगीत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे शंकरलाल धौनपुरिया और साथियों के गाए लोकगीत। सुगम संगीत का समय रहेगा प्रातः 9:15, और इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे अनुजा झोकरकर को। शास्त्रीय संगीत में प्रातः 9:30 सुनिएगा फारूक खान का सारंगी वादन राग बसंत मुखारी। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रातः 10:00 अनुप्रसारित की जाएगी। प्रातः 10:05 पर आप सुनेंगे हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।

0: और अब दिन के कार्यक्रमों के बारे में बता दें, प्रातः 11 बजे आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करेंगे सुने, ये आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा। 12 बजे फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे संग्रहालय से, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:30 बजे। दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम आप सुनेंगे। लोक संगीत का समय रहेगा दिन में 1:30 बजे और सुगम संगीत आप सुन सकेंगे दिन में 1:45 पर। फिल्म संगीत का समय रहेगा दिन में 2:00 बजे और दिन में 2:30 बजे। और अब सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। संध्या 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज के इस कार्यक्रम का आकर्षण है एक ही फिल्म से, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे रक्षा बंधन फिल्म के बारे में जानकारी और उसके गीत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा संध्या 5:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग आप सुनेंगे संध्या 6 बजे। 6:30 बजे सुनिएगा सुगम संगीत में अनुजा झोकरकर और साथियों की गाई रचनाएं। लोक संगीत आप सुन सकेंगे 6:45 पर और इसमें आप सुनेंगे शंकरलाल धौलपुरी और साथियों के गाए लोकगीत। खेती गृहस्थी कार्यक्रम का समय रहेगा, क्षमा कीजिएगा, 7:20 पर आप सुनेंगे ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के आकर्षण में है आज की बात में आप सुनेंगे मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के बारे में। भेंटवार्ता सुनवाएंगे प्रगतिशील कृषक जगन्नाथ पटेल से सुनीता पंडित की समसामयिक कृषि पर चर्चा। इसके साथ ही अन्य जानकारी भी आप सुन सकेंगे। सुर्खियों से ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रात्रि 8 बजे अनुप्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8:15 पर सुनिएगा दिल ने फिर याद किया। चित्रगीत का समय रहेगा 9:15 पर और 9:30 बजे चर्चा का विषय आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे रूपक सुनवाएंगे महाकवि कालिदास, लेखक ओम जोशी, प्रस्तुतकर्ता उदित तिवारी। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:30 बजे उस्ताद अमीर खां का गायन राग रागेश्वरी। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सबलं प्रतिपादितवान् यत् अवसंरचना सेवाभ्यः यथासंभवं सामान्योपयोग मार्गाणां संभावनाः अन्वेष्टुम् आवश्यकता अस्ति इति। विशेषतया प्रमुख परिवहन अवसंरचना परियोजनानां निर्माण समये सेवातीर्थे प्रगतिः इत्यस्य 53वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी मन्त्रालयेभ्यः राज्येभ्यः प्राविधिक आर्थिक संभावनाः दृष्ट्वा योजना निर्माणस्य स्तरे एव एतादृशान् एकीकृतोपायान् परीक्षितुम् आह्वानं कृतवान्। सः उक्तवान् यत् कार्यान्वयनस्य शीघ्रतया सह गुणवत्तायाः विषये कोऽपि सन्धिः न भवेत्। असौ मन्त्रालयेभ्यः राज्येभ्यः कार्यान्वयन संस्थानेभ्यश्च आधुनिक प्रौद्योगिकीनाम् अंगीकरणाय प्रत्येकस्मिन् चरणे गुणवत्ता निश्चयं पर्यवेक्षणं च सुदृढीकर्तुम् आह्वानं कृतवान्। उपवेशने श्रीमोदी रेलपट्टिका मार्ग विद्युत क्षेत्राणां 6 प्रमुखाणाम् अवसंरचना परियोजनानां समीक्षां कृतवान्। एताः परियोजनाः नवराज्येषु विस्तृताः सन्ति, अथ च तासां समग्र व्ययः 30,000 कोटिरुप्यकाधिकः अस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे अग्रस्थानं प्राप्तुं भारतस्य आन्तरिकसुरक्षा अधिकं सुदृढा करणीया। नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सम्मेलनस्य समापन सत्रं संबोधयन् श्रीशाहः उक्तवान् यत् 47-2000 यावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः विकसित भारतस्य दृष्टिं साकारयितुं सुदृढा आन्तरिक सुरक्षा अत्यावश्यकी अस्ति। मन्त्रिणा उक्तं यत् प्रशासनेन मादक द्रव्य सम्बद्धाः समस्याः नक्सलवादः अथ पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य च समाह्वानानि सफलतया निराकृतानि। एतासाम् उपलब्धीनां श्रेयः असौ राज्यारक्षिबलाय, केन्द्रीयाभिकरणेभ्यः तथा केन्द्रीय सशस्त्रारक्षिबलेभ्यः प्रदत्तवान्। भारत चीन देशयोः मध्ये द्वैपाक्षिक सम्बन्धस्य निरन्तर विकासाय प्रगत्यै च भारत चीन सीमाक्षेत्रेषु शान्ति स्थापनस्य महत्वं भारतं प्रतिपादितवान्। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः फिजिंग नगरे चीन विदेश मन्त्रिणा वांग यी इत्यनेन सह भारत चीन सीमा प्रश्न विषयेषु विशेष प्रतिनिधीनां वार्तायाः 25वें चरणस्य सहाध्यक्षतां कृतवान्। विदेश मन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् उभौ प्रतिनिधि तेषां समग्रं दीर्घकालिकं च हितं दृष्ट्वा सीम प्रश्ने राजनैतिक समाधानस्य प्रयत्नान् अनुवर्तयितुं सहमतौ अभवताम्। उभौ पक्षौ 24वें अक्टूबर मासे कजान नगरे, गतवर्षे अगस्त मासे तियाचीन नगरे च स्वनेतृभिः प्राप्तानां महत्वपूर्ण सर्वसम्मतीनां कार्यान्वयने प्रगतिम् अभिलक्षितवन्तौ। उपभोक्तृ कार्य विभागस्य सचिवा निधि खरे इत्येषा अकथयत् यत् कांदा एक्सप्रेस यानं दिल्ली नगरं प्रति प्रायः 800 मैट्रिक टन परिमितं पलाण्डुः आनयनस्ति। सामाजिकान्तरजालीये पटले सचिवा अवदत् यत् नाफेड, एनसीसीएफ तथा केन्द्रीय भण्डार केन्द्रेषु पलाण्डुः 35 रूप्यकाणि प्रति किलोग्राम मूल्येन विक्रियते। कांदा एक्सप्रेस यानम् आरम्भे चेन्नई, एर्नाकुलम, मदुरई, गुवाहाटी इत्येतेषु स्थानेषु प्राप्स्यति इति सा संसूचितवती इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र और राज्य के बीच मजबूत तो समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त की मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में नेपस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

0: सौंपेगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि वह केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करेगा। केंद्र सरकार ने इस याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
1: श्रोताओ, FM 101.6 MHz पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती के इंदौर केंद्र से प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से सुनिए साइबर जागरूकता पर केंद्रित सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस कार्यक्रम में IT विशेषज्ञ, स्टेट साइबर सेल इंदौर के आला अधिकारी, साइबर ठगी से जागरूक कर रहे संस्थान के विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित होते हैं। तो आप भी सीधे हमारे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो जुड़िए हमारे कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान से और अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान जानिए। सुनते रहिए विविध भारती का इंदौर केंद्र FM 101.6 MHz पर और कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से 12 बजे तक।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: बुधवार की शाम आपकी पसंदीदा फिल्मों के नाम।
1: बंध के रक्षा बंधन से।
0: जी हाँ, युववाणी कार्यक्रम में इस बुधवार एक ही फिल्म से में हम लेकर आए हैं आपके लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित फिल्म रक्षा बंधन।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम संबंधी ये सूचना है। इस गुरुवार यानी कल 27 अगस्त 2026 को सुबह 10:32 से 11 बजे के बीच आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और कल के इस कार्यक्रम का विषय रहेगा सर्दी खांसी वायरल बुखार और जोड़ों का दर्द तथा बारिश के दिनों में होने वाली बीमारियां और होम्योपैथी पद्धति से उनका उपचार। श्रोता, इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर ए के द्विवेदी होम्योपैथी विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकेंगे। और हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो सुनना ना भूले कल 27 अगस्त को 10:30 कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
3: भोपाल केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाएं। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े 10,630 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मालनपुर में गोदरेज की चौथी विनिर्माण इकाई का करेंगे शुभारंभ और प्रदेश में भोपाल और उज्जैन सहित 5 संभाग के जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े 10,630 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने 12 सड़क मार्गों के निर्माण के लिए मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को नाबार्ड से 4,600 करोड़ रुपए के ऋण की शासकीय गारंटी देने का निर्णय लिया। ये भी निर्णय लिया गया है कि 22 चयनित राजमार्गों, जिला और ग्रामीण मार्गों का स्वामित्व मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को हस्तांतरित किया जाएगा। बैठक में सिवनी बालाघाट के 91.64 किलोमीटर मार्ग को 3,960 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन करने की मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने गरीब और कमजोर वर्गों से जुड़ी 19 जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही उज्जैन के मध्य प्रदेश धनवंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 244 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा है कि नशीले पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल ग्वालियर जिले के डबरा तहसील प्रांगण में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत किसानों की सेवा और समृद्धि के लिए बलराम कृषि महोत्सव मनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर तेजी के साथ विकास की ओर अग्रसर है। ग्वालियर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का भी बड़ा हब बनने जा रहा है। डॉ. यादव ने ग्वालियर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी आदर्श गौशाला लाल टिपारा की भी सराहना की। श्री यादव ने कहा,
1: ग्वालियर की पावन धरती पर डबरा के अंदर बलराम कृषि महोत्सव के माध्यम से किसानों को और बाकी आनंद के साथ त्योहार की पूर्व 2 दिन के पहले से जो माहौल बन रहा है, वास्तव में रक्षाबंधन में बहनों के साथ इमरती देवी, प्रियंका जी, सारी हमारी बहनें बैठी हुई है। अब तो 33% आरक्षण मिलने वाला, बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। आपके कलेक्टर भी बहन है और सारे लोग यहाँ आने वाले समय की दृष्टि से ये सरकारों का पावर आप ही को मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से खासकर बलराम कृषि महोत्सव में आप सबको पुनः स्वागत करता हूँ। भगवान बलराम जी की जयंती 2 तारीख को है, लेकिन अब ये तो किसान कल्याण वर्ष पूरा वर्ष मना रहा है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की चौथी विनिर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे। 450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित इस इकाई से 2,250 रुपए से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नई इकाई में आधुनिक स्वचालित पैकेजिंग प्रणाली और 10 मीट्रिक टन प्रति घंटे क्षमता वाला सैपो निफिकेशन संयंत्र स्थापित किया गया है। विस्तार के बाद राज्य को प्रति वर्ष लगभग 185 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जीएसटी राजस्व मिलने का अनुमान है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में अन्य किसानों के बीच दी जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा,
3: तरफ बड़ी बड़ी चुनौतियां जिसमें चेंज का खतरा है, पानी की कमी है, मिट्टी के, आप में से ही किसी ने कहा कि प्राकृतिक खेती कितनी आवश्यक है, आपके बीच में ही किसी ने कहा चार जिसकी जरूरत ही नहीं, मारे जा रहे हैं, कार्बन कम हो रहा है, नई नई बीमारियां, नए कीट, खेती की लागत भी बढ़ रही है और बाजार भी तेज लगे हित हाथ। एक विषय पे और जाट साहब मैं सुझाव दे रहा हूँ। आप
0: हरियाणा के पंचकुला में हुए भारतीय एथलेटिक्स सीरीज के 14वें चरण में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में विक्रांत पांचाल ने 46.16 सेकंड के समय के साथ जीत दर्ज की। उन्होंने ओलंपियन मोहम्मद अजमल को पीछे छोड़ा जो 47.03 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे। महिलाओं की हेमंत थ्रो में तान्या चौधरी ने 61.28 मीटर के प्रयास के साथ पहला स्थान हासिल किया। प्रदेश में मॉनसून अब उत्तरी पश्चिमी और मध्य हिस्से में एक्टिव रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश में इस मॉनसूनी सीजन में औसत 25.5 इंच बारिश हो चुकी है जो कुल कोटे की 68% है। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया और सागर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, दमोह, मैहर और सिवनी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में 1 सितंबर को स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत महाविद्यालय के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक के क्षेत्र में IIT दिल्ली के विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। टिंडौरी में अति वर्षा और बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए यात्री बसों के सुरक्षित संचालन के लिए जिला परिवहन अधिकारी द्वारा यात्री बस ऑपरेटर्स और संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दतिया में संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। अशोकनगर के कलेक्टर साकेत मालवीय कल ग्राम पलकाटोरी में औद्योगिक क्षेत्र विकास के संबंध में कहा कि जिला प्रशासन द्वारा उद्योग स्थापना के लिए उद्यमियों के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत झाबुआ जिले के पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए द्वारका सोमनाथ तीर्थ यात्रा प्रस्तावित है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आइए सुने आपका पत्र कार्यक्रम।

0: नमस्कार श्रोताओं, आपका पत्रकार के साथ मैं मुकाम सिंह चौहान
1: और मैं राजेश पाठक।
0: आप सभी को हमारा नमस्कार और श्रोताओं बहुत सारी शुभकामनाएं मिलाद उन नबी और ओणम की।
1: और मुकाम जी, आज 26 अगस्त है
0: जी,
1: और मुख्य रूप से महिला समानता दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं को समाज में समान अधिकार और अवसर दिलाने के लिए समर्पित है
0: जी,
1: और इसमें महिलाओं के अधिकार और सम्मान का प्रतीक तो है ही है, मानवता की सेवा करने वाली मदर टेरेसा का भी आज जन्मदिन है।
0: बिल्कुल।
1: और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नाम्बिया के लोगों के संघर्ष की याद में भी आज मनाया जाता है। तो आज का दिन खास है, और जैसा आपने कहा आज मिलाद उन नबी है, इसे ईद ए मिलाद भी कहा जाता है। यह आधिकारिक तौर पर जो है पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और खास करके हम आपको बता दें, मदर टेरेसा ने कई संस्थाओं में चैरिटी वर्क किया, फिर 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी बनाई और 45 साल तक गरीबों, बीमारों और अनाथों की सेवा की। शांति दूत के रूप में मदर टेरेसा जाना जाती है, और 17 अक्टूबर 1989 को मदर टेरेसा को मानवता की मदद के लिए शांति का नोबल दिया गया, और भारत सरकार ने भी 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से नवाजा गया था। तो देखिए, इन विभूतियों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: बिल्कुल।
1: और बात करते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब की, तो पैगंबर मोहम्मद जी ने पूरी मानवता को अल्लाह की इबादत करने, सच्चाई, न्याय, दया और भाईचारे का संदेश दिया था। उन्होंने कुरान के माध्यम से यह शिक्षा दी थी कि सभी इंसान बराबर हैं और उन्हें अच्छे कर्म करना चाहिए। जैसे एकेश्वरवाद की बात करें तो केवल अल्लाह को मानना और किसी को उसकी साझी न बनाना और कमजोरों, गरीबों, जरूरतमंदों को मदद करना, और सच्चाई और न्याय की बात करें तो हमेशा सच बोलना और हर परिस्थिति में न्याय का साथ देना, ऐसी सीख दी, और माता पिता का सम्मान करें और आपस में भाईचारे बनाए रखें।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: बिल्कुल।
1: हम उनके संदेश को अमल करें।
0: बिल्कुल। और पारस
1: मानवता
0: जी, पारस्परिक सौहार्द का वातावरण उत्पन्न हुआ है, क्योंकि बहुत सारे त्यौहार एक साथ आ रहे हैं, और आज जैसे कि आपने बताया दो त्यौहार हैं, लेकिन अब दो दिन बाद रक्षाबंधन का पर्व भी आने वाला है।
1: बिल्कुल।
0: तो कुल मिलाकर जो है एक तरह से मिठास ही मिठास पूरे वातावरण में घुल रही है, और उस मिठास की जो सुगंध है वो हमारी भूख भी बढ़ा रही है। लेकिन राजेश जी, आज जो है
1: सबसे पहले आप बता दें कि हमारे मेल आईडी बता दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सुनने वालों को बता दें, मेल आईडी हम बता दें, आपका पत्र aarindore@gmail.com ये है हमारा मेल आईडी। वैसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं को पता है और लगातार वो हमें पत्र भेज रहे हैं मेल के माध्यम से। और राजेश जी, आज जो
1: और
0: है,
1: जो मेल नहीं भेज पाते हैं
0: हाँ, वो आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं।
1: व्हाट्सएप नंबर 9993290063, एक बार पुनः सुन लें, 9993290063।
0: बिल्कुल।
1: और हम कुछ साझा करना चाहेंगे।
0: बिल्कुल। लेकिन उससे पहले जो है
1: एक बात, हम जब अभी घर से आ रहे थे
0: जी,
1: तो झमाझम बारिश हो रही।
0: हाँ जी।
1: और बारिश के इस माहौल में श्रोताओं को देखिए प्रेम, हम बिना समय गवाए बिल्कुल समय से आपके सामने हाजिर हो गए।
0: बिल्कुल। आज चूंकि छुट्टी का दिन है, लेकिन इस छुट्टी के दिन भी आप ऑफिस में दिख रहे हैं, ये आपकी तत्परता है,
1: का प्रेम है।
0: बिल्कुल।
1: और मुकाम जी, कुछ अपने श्रोताओं के लिए कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे
0: जी।
1: भींगते रहे तेरी यादों की बारिश में, भींगते रहे तेरी यादों की बारिश में, जैसे दिल डूबा हो मीठी सी ख्वाहिश में। तू पास नहीं फिर भी एहसास है, तेरी यादों का ही ये तो मधुर उल्लास है।
0: क्या बात है।
1: हर बूंद में तेरा अक्स नजर आए, जैसे तू ही मेरी सांस में समाई है, बरस रही थी बारिश बाहर और वो भींग रहा था मुझ में, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भींग जाया कर, बारिश तो एक हर एक के लिए होती है, लेकिन ये आंखें सिर्फ तुम्हारे लिए बरसती।
0: क्या बात है, क्या बात है। और राजेश जी, मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम हमारे लिए बहुत खास
1: क्या है, रेडियो और श्रोताओं के बीच जो संबंध होता है केवल ध्वनि और कान का नहीं
0: जी,
1: बल्कि सीधे मन और भावनाओं का एक अटूट जीवंत रिश्ता है।
0: बिल्कुल,
1: रेडियो पर दिखने वाला चेहरा नहीं होता, केवल एक ही आवाज होती है जो कल्पना के पंख लगाकर सीधे दिल में उतर जाती है। और यह एक ऐसा माध्यम है जो घर के किसी भी कोने में, सफर में या काम करते हुए इंसान को तन्हा महसूस होने नहीं देता।
0: बिल्कुल। और राजेश जी, बहुत सारे पत्र आ चुके हैं मेल के माध्यम से, आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, और कुछ पत्र मेरे हाथ में भी हैं। और एक ऐसा ही एक शुभकामना संदेश लिखा हुआ है और बहुत खूबसूरत पत्र आया है
1: जी।
0: और राजेश जी, सबको पता है कि आज जो है आपका पत्र कार्यक्रम आपका अंतिम पत्र माना जा सकता है, क्योंकि 31 तारीख को जी अंतिम प्रस्तुति है और 31 तारीख को आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे श्रोताएं जो है आपका पत्र के माध्यम से आपको शुभकामनाएं संदेश भेज रहे हैं, उनमें एक पत्र आया है बाछीखेड़ा ग्राम से है, सारंगी जिला झाबुआ से। और ये पत्र भेजने वाले हैं शंकर सिंह चंद्रावत, आप वरिष्ठ कवि हैं, लेखक हैं, शिक्षक हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से शुभकामना संदेश आपको भेजा है, अभिनंदन पत्र भेजा है। और ये लिखते हैं कि श्रीमान राजेश पाठक साहब, विनम्रता की मूर्ति, सरल स्वभाव, अत्यंत सौम्य और सहृदय आत्मीय जनों के कारण सुमधुर मुस्कान के धनी हैं। और आकाशवाणी इंदौर के आपका पत्र कार्यक्रम को लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया है, आपकी छवि को द्विगुणित करते हैं कि आप हमारे इन कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ आते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और ये लिखते हैं कि आज हम सभी आपके परिवारजन, मित्रगण और आपके स्टाफ के आत्मीयजनों के साथ आपके आगामी वर्षों की हृदय से प्रशंसा करते हुए आपको विदाई संदेश दे रहे हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूं कि आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित आपका पत्र कार्यक्रम में आप लगातार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते रहे हैं और हम लगातार आपको सुनते आ रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपके लिए एक काव्यमय शुभकामनाएं संदेश प्रेषित कर रहा हूं। और उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी है, एक पंक्तियां हैं, लिखा है, सेवानिवृत्ति की शुभ वेला में मैं राजेश पाठक साहब आपका अभिनंदन है, मंगलमय भावी जीवन हित प्रभु से हमेशा शत शत वंदन है, शत आयु शरद शुभ जीवन हो, परिवार आपका स्वस्थ और सुखी बने, शेष जीवन में यश सौरभ से नित यहाँ के सुमन खिले, स्मित हास और मधुर मुस्कान, पाठक साहब यह खास पहचान, यही है शुभ आशीष हमारा, परमात्मा से मिले शुभ वरदान, निष्कलंक सेवा निवृत्ति पर बज रही है अंगना में शहनाई, आज आपका सम्मान है, आप खुश रहो सदा जीवन में प्रसन्न, आप स्वस्थ और खुशहाल रहो, आपका आज हम कर रहे हैं अभिनंदन।
1: आपको बहुत बहुत ढेर सारे आकाशवाणी परिवार की ओर से, हमारी ओर से अभिनंदन, आपने हमें लिखा। हम अपने श्रोताओं को बतला दें, 31 अगस्त 2026 को हम शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं
0: जी।
1: और यह जो है हम अंतिम हम आपसे रूबरू हो रहे हैं इस लाइव पत्र उत्तर में।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और देखिए, हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था
0: जी
1: खंडवा में, जब हमारी पोस्टिंग थी वहां में कार्यक्रम प्रमुख था, तो श्रोताओं के डिमांड पर श्रोताओं ने बोला कि हम श्रोताओं को बांधे रखने के लिए, रूबरू होने के लिए कुछ ऐसा काम करें
0: जी।
1: तो हमने ढेर सारे श्रोताओं से चर्चा की और 40 मिनट का जो पत्रोत्तर जो इंडिया के किसी भी केंद्र में नहीं होता,
0: बिल्कुल
1: हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अप्रूवल ली और वहां भी किया और यहां भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अप्रूवल ली और 40 मिनट का पत्रोत्तर के लिए हमने अपने श्रोताओं से दिल खोल कर बात करने के लिए जो है ये कार्यक्रम शुरू कर दिया और खंडवा में भी हुआ और यहाँ भी हुआ।
0: बिल्कुल, तो बधाई, संदेश का क्रम निरंतर बना हुआ है और अगला जो संदेश है वो आया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया का। लिखते हैं, आदरणीय पाठक सर, सादर नमस्कार। आज की अंतिम कार्यक्रम प्रस्तुति केवल एक कार्यक्रम का समापन नहीं बल्कि आपकी दीर्घ सेवा यात्रा के एक गौरवपूर्ण अध्याय का विराम है। आकाशवाणी के प्रति आपका समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। आगामी जीवन सुख, स्वास्थ्य, शांति और सार्थकता से परिपूर्ण हो। हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। जब हमारी पोस्टिंग खंडवा में थी तो हम संजय पंचोलिया से आत्मीय रूप से जुड़े हुए थे और मैंने देखा किशोर दा के संगीत को अगर ऊपर ले जा रहे हैं तो इनके यहाँ शाम में उनके गाए हुए संगीत का प्रैक्टिस किया जाता है। किशोर दा के काफी किशोर प्रेमी लोग आते हैं तो

0: उनके जो धरोहर है उनको इन्होंने संयोग कर रखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और देखिए इस प्रकार के ढेरे आ रहे हैं
1: जी,
0: मेल आ रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: पत्र आ रहे हैं।
1: हाँ जी।
0: तो हम तो शॉर्ट में यही कहेंगे
1: बिल्कुल
0: कि न जाने क्यों ये पल भारी हुए हैं, न जाने क्यों ये पल भारी हुए हैं, तमाम अपने हमसे जुदा हो रहे हैं। छोड़कर आंगन वो पुरानी यादें, आंखों के किनारों पे आंसू सजे हैं, हाथों में हाथ था जो कल तक, आज वो बस एक साया बने हैं। चलना अब नई डगर पर, मगर दिल के किसी कोने में हम वहीं ठहरे।
1: क्या बात है, आपने अपने मन के उद्गार इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचाए, और निश्चित तौर पर हम आपकी आंखों में एक अलग तरह का भाव देख रहे हैं। आज ऐसा लगता है थोड़ा सा श्रोताओं के प्रेम से आप डूबे लग रहे हैं और कुछ भावपूर्ण व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है।
0: देखिए और मुझे जो अदृश्य तरंगों के माध्यम से जो प्रेम जो होता है
1: जी जी,
0: उसकी अनुभूति अलग होती है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और आपने जो एक बात किया कि वास्तव में इस तरह का जो श्रोताओं से जो लगाव होता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये एक अलग तरह का होता है।
1: बिल्कुल।
0: और पंचोलिया जी ने जैसे इन्होंने लिखा है कि अखिल भारतीय रेडियो जो श्रोता सम्मेलन वर्ष 2026 19 और 20 अगस्त को भिलाई छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
1: हाँ।
0: इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है
1: जी।
0: और देखिये अखिल भारतीय श्रोता सम्मेलन का जो मंच होता है वास्तव में ध्वनि तरंगों के माध्यम से जुड़ते हैं, और एक बार जब रूबरू होते हैं तो उसकी अनुभूति अलग होती है। और इसके पहले भी पत्रोत्तर में हमने पूरा विवरण अपने श्रोताओं के समक्ष रखा था।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और पिछले कार्यक्रम में
0: उस के बारे में बतलाए कि इस बृहद सम्मेलन के इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार समेत अन्य प्रदेशों के लगभग 550 रेडियो श्रोताओं ने अपनी गरिमामय उपस्थिति के आयोजन में चार चांद लगा दिए। पहले दिन 19 अगस्त का कार्यक्रम अम्बेडकर भवन सेक्टर 6 में रखा गया था। यहाँ श्रोताओं के लिए नाश्ता, चाय, भोजन की व्यवस्था की गई और कार्यक्रम स्थल पर 6 किलोमीटर दूर था। वहाँ से कार्यक्रम स्थल जो था 6 किलोमीटर दूर था। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर हमें लेने के लिए कार्यक्रम के आयोजक भाई मुकेश शर्मा जी ने एसी वाहन का इंतजाम करके रखा था। और दूसरे दिन 20 अगस्त को 10:30 बजे के करीब रेडियो श्रोता रैली में श्रोता मित्र ढोलक, झांझ, मंजीरो की थाप पर खूब जमकर थिरके, सामूहिक ग्रुप फोटो हुआ। यह आयोजन कला मंदिर पर हुआ और कई श्रोता मित्र मुझे नाम से जानते थे, उनसे मिला, परिचय देने पर गले और खूब स्नेह दिया। देश के विभिन्न राज्यों के कोने कोने में यहां सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रोताओं ने 2 माह पूर्व रेल में सीट के लिए टिकट बुक कराई, और कुछ श्रोता जो हैं 2800 से 2900 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ बड़े आनंद और उत्साह के साथ गर्म जोशी से मंच पर अपना परिचय देते हुए नजर आ रहे थे। ये देखे श्रोताओं का क्या लगाव है मुकाम जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: वातानुकूलित करा मंदिर और ऑडिटोरियम सिविक सेंटर सेक्टर 5 में बेहतरीन साउंड, लाइट, बैठक व्यवस्था के साथ बड़ी LED स्क्रीन, आकर्षक रंग बिरंगी जो पार लाइट लगी थी, यहीं बाहर लॉन में चाय, नाश्ता, उत्तम भोजन की व्यवस्था भी आयोजक मंडल ने करके रखी थी। और अपने क्षेत्र के आकाशवाणी खंडवा एवं संभागीय स्तर के इंदौर आकाशवाणी केंद्र के लोकप्रिय प्रोग्राम और उनके प्रसारण समय, ईमेल, डाक पते आदि की जानकारी हमने दी, और कार्यक्रम में भाग लेकर सुनने और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया से केंद्र को अवगत कराने हेतु जागृत भी किया।
1: क्या बात है।
0: और संगीत दिशा के आयोजन में क्रॉकेट ट्रैक संगीत पर हरफन मौला कलाकार किशोर दा की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से मंच से संजय पंचोलिया, योगेश गुजराती, आनंद जोशी जी ने अपनी प्रभावी प्रस्तुतियां दी। आनंद जोशी जी ने भी इसी तरह का हमें भेजा है। और सम्मेलन में भाग लेने के लिए सुभाष खंडाले, राकेश सेन, योगेश गुजराती के अलावा दुर्गा प्रसाद सैनिक, रफीक पवार जी और अब्दुल गफार डाबर जी, और सनावा से दिलीप माराकार जी, शेख मूसा जी, सादिक खत्री जी, बरवा से प्रवीण श्रीमाली जी, रतलाम से बलवंत वर्मा जी उपस्थित थे। और स्थानीय कलाकारों ने छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा गायन, वादन, नृत्य, तीज त्यौहार के सुरूली झलक मंच पर बिखेरी और कार्यक्रम में विविध भारती मुंबई के सहायक निदेशक संतोष यादव जी भी शिरकत किए और ढेर सारे आपस में जो है इन्होंने
1: अपनी
0: प्रतिक्रिया दी और यहाँ लगभग 550 श्रोताओं की उपस्थिति में किसी के नामों का उल्लेख मेरे लिए संभव नहीं हो रहा है, पर सभी स्मृतियाँ मेरे मानस पटल पर अंकित हुई।
1: क्या बात है। संजय पंचोलिया जी ने जो रिस्पेज भेजा है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बनाकर भेजी है और चूंकि वो खुद वहाँ सम्मिलित हुए हैं तो देश भर के आपने कहा कि कुछ 2800-2900 किलोमीटर की यात्रा तय करके भिलाई पहुंचे तो वाकई में अद्भुत है। और रेडियो के प्रति इस तरह का लगाव तो हम आप सभी को नमन करते हैं, सलाम करते हैं। वाकई में आपने जिस प्रकार से आप इस सम्मेलन में आते हैं और जिस भाव के साथ रेडियो के प्रति जुड़ के जो आप आते हैं वो वाकई में हमारे लिए बहुत अद्भुत है।
0: बिल्कुल।
1: और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे हम हमारे सारे श्रोताओं को। और राजेश जी, लगातार ईमेल्स आ रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं वरना 20 मिनट कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा से ये पत्र आया है। दुर्गेश नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे का
0: जी।
1: और लिखते हैं, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हमें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें दिनांक 23 अगस्त 2026 का कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2026 चांद पर भारत चंद्रयान 3 की दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के 3 वर्ष विषय पर दी गई जानकारी और नन्हे मुन्ने बच्चों से की गई बातचीत बहुत ही लाभदायक लगी और सुषमा को उनकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा है।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हमारे जनता को अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर संबोधित किया और उन्होंने अपने भावनाएं शेयर किए। और देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारा भारत जो है, भारत का मस्तक काफी ऊंचा हो।
1: बिल्कुल, हमने जो 23 अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में IIT इंदौर के प्रोफेसर से जो हमारे मेहमान के कार्यक्रम से जानकारी दी, बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी
0: और काफी बिल्कुल सधे हुए शब्दों में इतनी अच्छी जानकारी मुकाम जी आपने जो हमारे श्रोताओं के लिए जो लेके आया, उनसे निवेदन किया कि श्रोता भी आपसे रूबरू होना चाहते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए, IIT के जो प्रोफेसर होते हैं उनके एक एक सेकंड कीमती होता है।
1: बिल्कुल।
0: और आपके लिए हमारे केंद्र पर आए और अपना विचार साझा किए, मुकाम जी आपने जो प्रयास किया वास्तव में सराहनीय है।
1: बिल्कुल राजेश जी, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, बहुत लंबे लंबे पत्र हैं और ढेर सारे पत्र हैं।
0: इसके अलावा देखिए, हमारे पास अशोक मेहता एवं समस्त परिवार,
1: हाँ जी हाँ,
0: इन्होंने लिखा है, जानकारी सुनकर मन बहुत खिन्न है, यह जानकर कि आप इस माह सेवानिवृत्त हो रहे
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: मन उदास है, बस यही शुभकामनाएं हैं, आप स्वस्थ रहें, चिरायु रहें और सदा हमारे श्रीमन में बसे रहें। आकाशवाणी में मैं आपकी सेवाएं सदा याद की जाएगी, रेडियो श्रोताओं में आपकी विशिष्ट पहचान रहेगी, अधिक नहीं लिख पाऊंगा, अलविदा पाठक जी।
1: क्या बात है।
0: वास्तव में देखिए, अशोक मेहता जी आप तो देश विदेश घूमते रहते हैं
1: जी, जी।
0: आज इन्होंने खरगोन से लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मेहता जी।
1: बिल्कुल। और अगला पत्र है, ये आया है सनावद से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, KPS चौहान, दीपक, सचिन कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्नव और प्रभा कटारिया का, और काफी लंबा पत्र है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ
0: जी।
1: आदरणीय दोनों पशुकर्ताओं जी को सादर प्रणाम। राजेश जी के लिए जिंदगी के किसी भी मोड़ पर बिछड़ कर फिर मिलोगे, हमें यकीन है कभी ना कभी
0: हम
1: तो फिर मुलाकात होगी आप पर, हमें पूरा यकीन है। 19 अगस्त का आपका पत्र कार्यक्रम सुना, इस कार्यक्रम में आदरणीय पाठक जी और मुकाम सिंह जी की प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रही, कम से कम 20 से 22 पत्रों का समावेश किया गया, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम 21 अगस्त को सुना, उज्जैन, महाकाल और ओंकारेश्वर ममलेश्वर के साथ साथ तीसरे सोमवार को मंदसौर जिले के पशुपतिनाथ जी के विषय में संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हुई और पत्रकार घनश्याम जी ने शिवना नदी पर स्थापित पशुपतिनाथ जी मंदिर के विषय में जो जानकारी और आंखों देखा हाल सुनाया और पालकी में पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा को बिठाकर नगर भ्रमण किया गया और ये सारी जानकारी हमें दी गई, ऐसा लग रहा था कि हम स्वयं भगवान पशुपतिनाथ जी की पालकी में सम्मिलित हो गए।
0: मोकाम जी, हमने कोशिश की
1: जी,
0: ओंकारेश्वर में भी हमने कवर किया,
1: बिल्कुल,
0: और उज्जैन में भी कवर किया, और पशुपतिनाथ के मंदिर में जो कार्यक्रम हुए सभी कवर करके हम अपने श्रोताओं तक,
1: बिल्कुल, हम लगातार
0: श्री माली जी हमें लिखे हैं अखिल भारतीय,
1: ये थोड़ा सा एक पाठक जी रुकी ये थोड़ा सा इनको आगे और पत्र है, अभी इनकी बात समाप्त नहीं हुई, बस छोटी सी बात और जल्दी बता देता हूँ। सुनहरे पल कार्यक्रम सुना, शालिनी जी की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, मौसम के अनुरूप एक से बढ़कर एक गीतों की जो प्रस्तुति की गई उसे हमको अच्छा लगा। 23 अगस्त को वसुंधरा कार्यक्रम सुना, पर्यावरण कथा भारत कुमार उपाध्याय जी ने ये जानकारी दी, अच्छी लगी, और रामायण के चित्र पर आधारित जो राम रंग कार्यक्रम प्रसारित किया गया उसके बारे में ये पत्र है,
0: असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस
1: डॉक्टर सीमा अलावा जी से राजेश जी की बात,
0: पूरी रामायण को उन्होंने पेंटिंग के जरिए जो,
1: बिल्कुल, तो आगे बता रहे हैं कि तुलसीदास रचित रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण द्वारा भजनों की प्रस्तुति और चित्रकार के विषय में विस्तृत जानकारी सीमाजी से सुनने को मिली, इसका आनंद हमने पूरे एक घंटे तक लिया, वास्तविक रूप से ऐसे आयोजन से पूरा वातावरण भक्ति में हो जाता है, इतने अच्छे आयोजन के लिए सीमा जी के साथ साथ राजेश जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, और उज्जैन के महाकाल बाबा के मंदिर के पुजारी पंडित जी से बहुत विस्तृत जानकारी सुनने को मिली, और MH हॉटलाइन कार्यक्रम भी हमें बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत इन्होंने पूरी सारगर्भित शब्दों में इन्होंने लिखा है, और वास्तव में ये काफ़ी अच्छा मैडम का प्रयास था। 50 मीटर लंबी वाल्मीकि रामायण चित्र कथा जो डॉक्टर सीमा अलावा ने जो प्रस्तुत की, वास्तव में ये अनूठा है, और मैडम को इस रचना के लिए आकाशवाणी का संपूर्ण परिवार उन्हें सैल्यूट करता है।
1: बिल्कुल,
0: आप
1: बिल्कुल।
0: पुलिस प्रशासन में रहते हुए आपकी जो इतनी जो लेखनी मजबूत है, और मैडम PhD भी है, मैं आपको ये बता दूं, और वास्तव में इनका कोई जवाब नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगला पत्र है पालदारा का, इंदौर के श्रोताओं का, हसीना भी मंसूरी और मोहम्मद रफी मंसूरी का, दिनांक 24 अगस्त का रात 10 बजे का बनभावन कार्यक्रम के क्या कहने, प्रोग्राम मन को भा गया, दिल में उतर गया, क्या शनिवार, क्या शानदार तरीके से तृप्ति जी ने प्रोग्राम को सजाया, बहुत ही उम्दा तरीके से श्रोताओं की पसंद के गीत उन तक पहुंचाए, और हमारी इसके लिए दिल से शुभकामनाएं। और ये लिखते हैं कि विज्ञान पत्रिका के अंतर्गत डॉक्टर संतोष जी से विज्ञान और चिप डिजाइनिंग पर दी गई जानकारी काफ़ी उपयोगी लगी, और खेती गृहस्थी कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक यूरिया और DAP से क्या नुकसान हो सकता है इस विषय में भी जानकारी प्राप्त हुई।
0: बिल्कुल, यूरिया और DAP का जो उपयोग है जी, जुडिशियस उपयोग करें, जुडिशियस का मतलब अपने मिट्टी का जांच करवा लें, और जांच करवाने में जो हमारे कृषि विभाग के अधिकारी जितना रिकमेंड डोज करें उतना ही दें। हमारे पास व्हाट्सएप संदेश का पूरी बरसात,
1: आपके लिए एक और शुभकामना संदेश प्राप्त हुआ है, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा और जयवीर सिंह ठाकुर का, और कालका से शुभचंद्र बजाज और बिट्टा बजाज का। ये लिखते हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।
0: क्या बात है, बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। और देखिए लाइबेरिया भैरू इंदौर से लिखने वाले हैं अनिल बामनिया, परमिला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम एवं समस्त बामनिया परिवार, आप लिखते हैं, आपका पत्र प्रस्तुतकर्ताओं को नमस्कार, और चॉइस टाइम कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, मुकाम जी ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया कोई जवाब नहीं है, और आगे इन्होंने लिखा है, हम जो लिखा है अधिक से अधिक श्रोताओं के पत्र शामिल करने का प्रयास आप लोग करते हैं, इसके लिए इन्होंने धन्यवाद दिया है।
1: बिल्कुल,
0: और इसके अलावा हमारे पास जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख भूसा मूसा भाई जान, भाई राजकुमार बोराना, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप जी लिखते हैं, सोमवार का गुड मॉर्निंग खंडवा बहुत मनोरंजक लगा, अच्छी अच्छी जानकारी दी गई, और इंदौर की गतिविधियां पर जो परिक्रमा प्रस्तुत किया गया वास्तव में इसका कोई जवाब नहीं, साहित्यिक कार्यक्रम में जसवंत सिंह राठौर का कविता पाठ बहुत पसंद आया, और पर्यावरण में जो जानकारी वसुंधरा में जो दी गई वास्तव में दिल की गहराई तक पहुंच गई। इसके अलावा हमारे और हमारे बीच एक लिखे हैं, ये मैं मान सिंह भोंदिया लिखे हैं, कबीर गायक हैं, ये ए ग्रेट कलाकार हैं, आकाशवाणी इंदौर के नियमित श्रोता हैं। इन्होंने लिखा है, जब भी समय मिलता है नियमित रूप से आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनता हूँ, खासकर मालवी लोक गायक होने के नाते मेरा लोक संगीत से विशेष जुड़ाव होता है। हमें याद है कि भोंदिया जी का सिलेक्शन जो है मैंने ही किया है।
1: अच्छा,
0: जब
1: अच्छा,
0: हम
1: जी।
0: पिछले बार इस केंद्र पर 2009 से 2021 तक थे।
1: बिल्कुल,
0: हम आपकी जो है और आगे आप बढ़ें इसके लिए शुभकामनाएं हैं।
1: बिल्कुल राजीव जी, अगला
0: 31 अगस्त को सेवानिवृत्त बधाई भी।
1: जी जी, बहुत बहुत बधाई। संदेश को लेकर अगला एक पत्र और है, और ये भैरूलाल वाकतरिया धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन से आया है, और लिखते हैं, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता सम्मानी राजेश जी और मुकाम सिंह जी को नमस्कार। 20 अगस्त को सुबह नागदा के डॉक्टर सुरेंद्र मीणा से राजेश जी की बातचीत सुनी। काव्य के अनुकूल, काव्य की अनुकांत विधा युवाओं के लिए, जी
0: कितना प्रासंगिक
1: है ना। यह कार्यक्रम हमें भिलाई छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन की उपस्थिति के दौरान सुना।
0: क्या बात है।
1: हाँ, आप दोनों का यह वार्तालाप बहुत ज्ञानवर्धक लगा। सम्मानीय राजेश जी पाठक 31 अगस्त को आकाशवाणी इंदौर में अपने सेवाकाल से निवृत्त हो रहे हैं। आपकी कमी आकाशवाणी में निश्चित रूप से खलेगी। आपने खासकर खेती किसानों के कार्यक्रमों को जो नए आयाम दिए, कई किसानों को आकाशवाणी पर अपनी बात और अनुभव रखने का जो मंच दिया, और हर बार कुछ नया करने का जुनून आप में रहा। आकाशवाणी खंडवा और आकाशवाणी इंदौर पर 40 मिनट का लाइव आपका पत्र कार्यक्रम आपके ही मार्गदर्शन में शुरू हुआ। मालवा और निमाड़ के किसानों से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करने में गहरी भूमिका निभाई। आकाशवाणी के प्रति आपका यह प्रेम श्रोताओं को हमेशा याद रहेगा। आपके आगामी गृहस्थ जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी आकाशवाणी परिवार की ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं। एक हमारे पे लिखे हैं कि आप तो जा रहे हैं, नया व्हाट्सएप नंबर क्या है? तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है, 9993290063।
1: बिल्कुल,
0: ये मेरा पर्सनल नंबर भी है, और मैंने ये नंबर अपने श्रोताओं के लिए खुला मैदान
1: बिल्कुल
0: में छोड़
1: बिल्कुल अब राजेश जी, प्रवीण श्रीमाली जी एक आप जिक्र कर रहे थे और उनके मेल का, लेकिन अब मैं आपको पढ़ने नहीं दिया, शायद ये मेल मैं पढ़ रहा हूं। और ये लिख रहे हैं प्रवीण श्रीमाली जी कि 23 अगस्त को वसुंधरा के अंतर्गत भरत कुमार उपाध्याय की कथा पर्यावरण संरक्षण पर रोचक लगी, और क्यों की पर्यावरण है तो हम है, ये लिखते हैं। इसी दिन सुबह 10 से 11 बजे के बीच विशेष भेंटवार्ता श्रवण की गई, जो कि वाल्मीकि रामायण का चित्रायन रामरंग सहायक पुलिस उपायुक्त श्रीमती सीमा अलावा के कार्यक्रम प्रमुख राजेश जी की भेंटवार्ता थी, और हमने पूरे एक घंटे इसको सुना। बहुत बहुत साधुवाद कहा है इन्होंने। और 24 अगस्त को गुड मॉर्निंग इंदौर के अंतर्गत आबादी का संतुलन उज्ज्वल भविष्य का मूल्य विषय पर सभी महानुभावों के विचार सटीक लगे, उम्दा पेशकश के लिए दुर्गेश जी को धन्यवाद। और इसी दिन प्रातः 8:30 बजे कंपेयर्ड फिल्म संगीत के अंतर्गत गायक संगीतकार सी रामचंद्र, हेमंत कुमार, एस जी बर्मन, किशोर कुमार और जगजीत सिंह बप्पी लहरी के गीतों को सुनकर आनंद आ गया, लाजवाब प्रस्तुति के लिए धन्यवाद कहा है
0: नर्मदे हर के साथ।
1: जी, जी।
0: और देखिए आगे इन्होंने लिखा है, व्हाट्सएप भी किया है, लिखे
1: जी।
0: हैं कि अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन भिलाई छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त 2026 को श्रोता दिवस पर श्री संतोष यादव जी जो डायरेक्टर हैं विविध भारती मुंबई ने स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र देकर श्रीमाली जी को सम्मानित किया, और इन्होंने बिल्कुल देखे ये फोटो भी भेजे हैं।
1: क्या बात।
0: और ढेर सारे श्रोताओं के इनके अलावा जो है सम्मानित किया गया। तो देखिए ये जो प्रेम है
1: जी
0: अद्भुत है।
1: बिल्कुल, आनंद जोशी जी
0: व्यक्त नहीं किया।
1: आनंद जोशी जी खंडवा वाले का तो पत्र आप पढ़ ही चुके हैं।
0: जी
1: बिल्कुल, वैसे ये लिखते हैं कि 23 अगस्त रविवार 8:30 बजे सुषमा जी कल के सितारे बच्चे हमारे कार्यक्रम अच्छा लगा। प्रखर मिश्रा, सरायु पांचाल, देवांश रथ और गर्व बर्वे की जो वार्ता थी अच्छी लगी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे
1: 21 अगस्त का साइबर क्राइम रहे सावधान, ये कार्यक्रम इन्होंने सुना, और इस कार्यक्रम में डीसीपी साहब सुनील मेहता जी और डीएसपी नरेंद्र सिंह रघुवंशी ने जो जानकारी दी गई वो इन्हें बहुत अच्छी लगी।
0: वास्तव में हमारे स्टूडियो में आए दोनों, और वास्तव में देखिए इतनी अच्छी जानकारी उन्होंने दी कि देखिए वर्तमान समय में साइबर क्राइम जो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और इसी उद्देश्य से वो हमारे स्टूडियो में आए, रूबरू हुए और हमारे श्रोताओं को जागृत किया। और देखिए हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश इसके चौहान जी का आया है, इन्होंने लिखा है, हम आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है
2: जी।
0: इसके अलावा हमारे पास एक और ये व्हाट्सएप संदेश आया है, ये लिखने वाले हैं बगड़ी से सावन लिखे हैं, सावन मास के चतुर्थ सोमवार को श्री नर्मदेश्वर मंदिर से बाबा नर्मदेश्वर ने नगर भ्रमण कर सभी ग्रामवासियों का दर्शन दिया, एक छोटी सी झलक इन्होंने भेजी है। और देखिए वास्तव में ये पालकी में हैं बाबा। और राजेश जी इन्होंने लिखा है कि आप अंतिम प्रस्तुति दे रहे हैं। देखिए ये तो हर एक का सेवा निवृत्ति होता है 60 साल की आयु पूर्ण करने के बाद जो शासकीय प्रक्रिया होता है उसके अनुसार इन्होंने लिखा है और इन्होंने लिखा है, मैं 31 अगस्त को विदाई में आने की कोशिश करूंगा, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: क्या बात।
0: और आगे इन्होंने लिखा है, ये डीसी सारस्वत 15 पटवारी कॉलोनी रतलाम से लिखे हैं, पाठक जी आपकी शानदार सेवा के लिए जो है हम आपकी कायल हैं और आगे भी हमें मार्गदर्शन जो है प्रदान करते रहें। इसी प्रकार हमारे पास और व्हाट्सएप संदेश आया है, ये लिखने वाले हैं चौखड़ा धाम कॉलोनी सनावत जिला खरगोन से कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी चौहान, नवोदित चौहान, वैभव पाल सिंह चौहान, ध्रुवी एवं प्रद्युम्न चौहान। ये लिखते हैं 19 अगस्त को आपका पत्र जो हम दोनों ने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। 21 अगस्त को चौहान साहब की इंदौर में परिक्रमा जो आपने इंदौर परिक्रमा जो प्रस्तुत की और खास करके बाबा भोले की सवारी जो है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और महाकाल की ज्योतिर्लिंग से जो प्रसारित किया गया जो कार्यक्रम सुनवाया गया।
1: बिल्कुल, इस बार राजेश जी हमने पहली बार जो है महाकाल मंदिर से सवारी यात्रा और ओंकारेश्वर से बाबा ओंकारनाथ की यात्रा और पशुपतिनाथ जी की सवारी यात्रा को हमने इंदौर परिक्रमा के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट
1: जी
0: डॉक्टर सूलिया जी हमें
1: जी,
0: लिखते हैं, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, ये भूतपूर्व हैं, खनवा में मैं इनके साथ काम भी किया हूँ, लिखा है कंग्रेचुलेशन पाठक जी, बिकॉज ऑफ यू आर ऑल इंडिया रेडियो रिले आई एम कंटिन्यूसली लिसनिंग 31 अगस्त 2026। और इन्होंने लिखा है आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और आगे हमारे बीच लिखे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं अस्मिता रेडियो फेसबुक लाइव शो ग्रुप भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी, अर्चना जोशी जी, हरमिंदर सिंह चावला जी, बानी चावला जी, लोकेश जोशी, पायल जोशी जी, अंकिता जोशी जी, लक्ष्मी दुर्ब, दीदी बैदेही जोशी जी, बेबी हंसिका जोशी जी, खंडवा मध्य प्रदेश, अब्दुल गफार डावर जी, जगदलपुर छत्तीसगढ़ से पूनम नायडू जी लिखते हैं, हम आपके नियमित श्रोता हैं और यहाँ से प्रसारित आपका पत्र मनभावन और जितने भी जो फरमाइशी गीत होते हैं हम सुनते भी हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं, पूरा ग्रुप सुनता है और बहुत अच्छा लगता है। लोकेंद्र वर्मा नानाखेरा बस स्टैंड उज्जैन से लिखे हैं, मुकाम जी और पाठक जी नमस्कार, और सारे प्रोग्राम तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, जब 10 वर्ष की उम्र थी आज 50 वर्ष से ज्यादा हो गई, तब भी आपके इंदौर कार्यक्रम और विविध भारती कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इमेज हेलो हॉटलाइन हेलो विविध भारती सभी प्रोग्राम फेवरेट लगते हैं और श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए इससे जागरूकता आई है, इस प्रकार के कार्यक्रम आते रहना चाहिए और हेलो विविध भारती एक एपिसोड बढ़ा दिया जाए जिसका समय रात को 9 से 10 बजे के बीच रखा जाए। हमने आपका सुझाव नोट कर लिया है।
1: बिल्कुल, एक पत्र है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार का, आपको हार्दिक नमस्कार, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम की प्रस्तुतिकरण के लिए हम आपसे बहुत खुश हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। ये लिख
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बलवंत कुमार वर्मा जी सहित जगदीश धाकर जी आलोट को भिगई भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ में मिला रेडियो श्रोता सम्मान, इन्होंने पेपर में आया, इन्होंने लिखा है और लिखा है आपका पत्र सुनने वाले सभी श्रोता मित्रों, आकाशवाणी इंदौर की पूरी टीम को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी है और मालवा रेडियो श्रोता संघ परमिलागंज आलोट जिला रतलाम, बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा। क्या बात है, हमारे श्रोता तो छा गए। चंद्रेश मंडलोई जी, इन्होंने लिखा है, श्राद्धे श्री राजेश पाठक साहब, आपका शानदार जानदार कार्यकाल हमने देखा काका स्वामी खंडवा में और इंदौर में देख रहे हैं। किसी भी शासकीय कर्मचारी की सेवानिवृत्ति शासकीय अभिलेख अनुसार अंतिम प्राप्त होती है, लेकिन जिस शख्सियत में जो जुनून और जज्बा होता है वह होता उम्र कभी रिटायर नहीं होता है। क्या बात है,
1: क्या बात है?
0: और मालवांचल में आपकी रेडियो में दी गई उत्कृष्ट सेवाओं और योगदान के लिए रेडियो शूटर हमेशा याद रखेंगे।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: आपकी सेवाएं वृद्धि और सुख सुखद मंगल में आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें, यही कामना है। आपका चंद्रेश मंडलोई, जिला विधिक सहायता अधिकारी, मंडलेश्वर, जिला खरगोन में। पहले ये खंडवा में थे
1: जी।
0: एक और हमें याद किया मंडलोई जी, बहुत बहुत
1: धन्यवाद। एक और पत्र है धर्मपुरी जिला धार के श्रोताओं का, शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान सुमेरा, कशी साहिमा, हसनैन और खुशी का। दिनांक 19 अगस्त को दिल ने फिर याद किया, कार्यक्रम सुना, बहुत पसंद आया। यह कार्यक्रम एक ऐसा एहसास बनकर उभरा जहां सुमधुर गीतों के साथ प्रस्तुतकर्ता पद्मश्री तपस्वी ने दिलकश शायरी के साथ माहौल को मोहब्बत और यादों के रंग से घोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कहा है इन्होंने।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर कोलनी खंडवा, आनंद जोशी, तनुजा जोशी जी लिखते हैं, आपका कार्यकाल हम सदा याद रखेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिंदा दिल्ली से कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आगे लिखने वाले हैं खरगोन से शिक्षक और ज्योतिषी पंडित प्रीतेश मिश्र, शिक्षिका श्रीमती दीपिका मिश्र और हरिम्ब रुचिता की ओर से इन्होंने लिखे हैं।
1: जी राजेश जी, बहुत जल्दी क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है।
0: और देखिए अब हम जो है चलते चलते हम अपने श्रोताओं से दो शब्द जो है कहना चाहेंगे
1: जी।
0: मुकाम जी,
1: जी
0: वो है, आज शब्द कम हैं, जज्बात गहरे हैं, हर याद में दोस्त ठहरे हैं, फेयरवेल बस एक बहाना है, ये रिश्ते तो जीवन का नजराना है, वक्त ने हमें मिलाया, वक्त ही आज जुदा कर रहा है, पर हर धड़कन ये कहती है ये रिश्ता रूप बदल रहा है, आज अलविदा कहते हुए मुझे डर लगता है, क्योंकि हर याद से दिल जुड़ा लगता है, मिलेंगे फिर किसी मोड़ पर, यही ख्वाब हमें जिंदा रखता है।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार दिल्ली से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। और ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देशभर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
4: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित

0: इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
1: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला

0: और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमरीका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमरीकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियाँ और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद ए मिलाद उन नबी की रौनक, केरलमवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिव्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 30,000 करोड़ रुपीज एट प्रगति मीटिंग। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेट्स 1 ईयर डेडलाइन फॉर 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agreed to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Milad-un-Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today, Keralites across the globe celebrating Tiruvonam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanan cruises into finals of Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Keimer. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at 53rd Pragati meeting in New Delhi yesterday. The Prime Minister has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. More from our correspondent.
4: The Prime Minister called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. The Prime Minister further emphasized that delays in infrastructure projects have consequences beyond cost escalation, as they also postpone the benefits intended for citizens, businesses and the economy. He said that infrastructure projects should be viewed and monitored as an integrated whole rather than isolated sections, stretches or packages. During the meeting, ministries and states were asked to adopt an end-to-end approach and address critical gaps that could delay the overall commissioning and delivery of benefits. Mr. Modi also called for fostering a proactive work culture across ministries and state governments with greater ownership at every level of project implementation. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
3: Home Minister Amit Shah has said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security. Addressing the concluding session of National Security Strategies Conference in New Delhi, Mr. Shah said the move will enable disposal of criminal cases up to the Supreme Court within 3 years and raise the conviction rate by 25%. More from our correspondent.
4: Mr. Shah said India must further strengthen its internal security to emerge as a leader in every sector. Home Minister said Prime Minister Narendra Modi has set the goal of a Viksit Bharat by 2047 and the primary prerequisite for a developed India is robust internal security. He said had the previous governments foreseen the issues of narcotics, nexalism and the challenges in the Northeast before they escalated into massive crisis, the country would not have had to bear their brunt for decades. The Home Minister said government has eliminated the formidable challenges across these three internal security hotspots and the entire credit for this goes to the state police forces, central agencies and the CAPFs. He said this NSSC forum should analyze trends for the next 15 to 20 years to identify potential emerging issues and devise strategies to preempt them. He said over the past 8 months, he visited all states sharing land borders and shared a document outlining a quadrilateral border security approach with them. With Anupam's report, Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi
3: government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month, a report.
5: The Delhi government has informed that more than 9,13,000 women have registered for the scheme so far and over 6,52,000 applications have been finally submitted. The government said that the financial assistance will be credited directly to women beneficiaries' bank account from 1st of next month. A provision of 5,110 crore rupees has been made for the scheme in 2026-27 Delhi budget. The objective of the scheme is to provide financial security to women and make them self-reliant. The Delhi government has also urged all eligible women to complete their online registration on time. Soumya Sharan for Akashvani News, Delhi.
3: Union Home Ministry has officially notified Keralam as the new name for the southern state of Kerala, which came into effect from yesterday, 25th of August. This notification follows the passage of the Kerala Alteration of Name Bill in the Lok Sabha on August 11th and the Rajya Sabha the next day. Earlier this month, President Draupadi Murmu gave assent to a bill to rename Kerala as Keralam, turning the legislation into a law. Keralites across the globe are celebrating Thiru Onam, most auspicious day of Onam. Our correspondent has filed this report.
6: Thiruvonam celebrations began with Onapukalam, the traditional floral carpet made to welcome the legendary king Mahabali. This harvest festival is celebrated by Keralites irrespective of caste and religion. Special pujas are being held at temples, including the hill shrine of Shabarimala, Aranmula and Guruvayur. Onasadhya, the traditional Kerala feast, is another major attraction of Thiruvonam. Thousands of cultural programs and traditional games will be held across Kerala this afternoon, including official celebrations. Heavy rushes being experienced at temples across the state despite the rain. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
3: Prime Minister Narendra Modi has extended greetings to the countrymen on the occasion of Onam. Sharing a social media post, the Prime Minister said that the vibrant festival is celebrated all over the world with great enthusiasm. Mr. Modi wished that this festival further empower the spirit of happiness, togetherness and prosperity. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India and China have agreed to continue their work in seeking a political settlement of the boundary question in the context of their overall and long-term interests. National Security Advisor Ajit Doval highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral ties between the two countries. Mr. Doval was co-chairing the 25th round of the Special Representative's talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing yesterday. In a statement, the External Affairs Ministry said that the two special representatives had a candid and in-depth exchange of views on the India-China boundary question. Canada has struck back at the United States with retaliatory tariffs on about $20 billion US dollar worth of American goods, including steel, dairy products, appliances and farm equipment, as the trade war between the two countries escalated sharply. A report.
7: The new tariffs extend well beyond industrial goods, hitting everyday purchases such as seafood, cheese, clothing, cosmetics and toilet paper. With some facing duties as high as 50%, the tariffs will be implemented from September 8, even as US tariffs already came into place on Saturday. Canada's finance minister said Ottawa's tariff will match US level. Canada's retaliation came after the Trump administration imposed 50% tariffs

0: The Statesman writes, Defense Minister Rajnath Singh clears transfer of DRDO missile tech to Indian defense industry. Hindustan Times headlines, 98% flu cases this season due to H1N1 swine flu, says ICMR. And finally, Times of India informs Dolly Parton, queen of country music, dies at 80. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at Pragati meeting. Union Home Minister Amit Shah sets 1-year deadline for 100% implementation of 3 new criminal laws. Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agree to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Milad-un-Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today. Keralites across the globe celebrating Thiruvanam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanan cruises into finals of Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Keimer. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से सुन रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। नमस्कार, आदाब। हमारे सभी सुनने वालों को ईद मिलाद उन नबी की दिली मुबारकबाद, इसके साथ ही ओणम की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज हम सब बात कर रहे हैं उस मुकद्दस दिन की जो पूरी दुनिया में मोहब्बत, रहमत और भाईचारे का पैगाम लेकर आता है। रबी उल अव्वल महीने की 12 तारीख यानी ईद मिलाद उन नबी वो मुबारक दिन है जब पैगंबर मोहम्मद साहब का इस दुनिया में जन्म हुआ था। अरबी भाषा में मिलाद का मतलब होता है जन्म, इसलिए इस दिन को पैगंबर साहब के जन्मोत्सव के रूप में बेहद अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब को रहमत उल आलमीन कहा गया है, यानी वो पूरी इंसानियत और कायनात के लिए रहमत बनकर आए। अल्लाह।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: पैगंबर साहब की जिंदगी सिर्फ एक धार्मिक मार्गदर्शक की नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक की मिसाल रही है। उन्होंने हर दौर में इंसानियत का अलख जगाया जब चारों तरफ भेदभाव और गैर बराबरी का अंधेरा था। उन्होंने हमेशा इन बातों पर जोर दिया, किसी के साथ नफरत न करना और हर इंसान से मोहब्बत से पेश आना, समाज में औरतों को बराबरी और समान का दर्जा देना, गरीबों, यतीमों और कमजोरों की मदद करना, यहाँ तक कि बेजुबान जानवरों पर भी दया करना।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

बुधवार की शाम आपकी पसंदीदा फिल्मों के नाम। जी हाँ, युववाणी कार्यक्रम में इस बुधवार एक ही फिल्म से में हम लेकर आए हैं आपके लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित फिल्म रक्षाबंधन।

0: तो इस बुधवार सुनना मत भूलिएगा ठीक शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी।
1: आज का ये दिन खुशी का दिन है, तो निश्चय ही मस्जिदों और घरों को रोशनी से सजाया गया है, मिलाद की महफिलें सज रही है, नाते शरीफ गाई जा रही है और लंगर का एहतराम हो रहा है, जहां हर मजहब के लोग एक साथ मिलकर खुशी बांट रहे हैं। यह दिन सिर्फ जश्न मनाने का नहीं, बल्कि पैगंबर साहब के बताए रास्ते, ईमानदारी, सच्चाई, सब्र और एक दूसरे की मदद करने के जज्बे को अपनी जिंदगी में ढालने का दिन है। आइए इस मुबारक मौके पर हम सब यह वादा करें कि अपने आसपास प्यार और भाईचारे की रोशनी फैलाएंगे।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आज पूरे देश में ओणम का त्योहार भी मनाया जा रहा है। ओणम केरला का सबसे प्रमुख सांस्कृतिक और फसल उत्सव है, जो मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में 10 दिनों तक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन दानवीर असुर राजा महाबली अपनी प्रजा को देखने के लिए पाताल लोक से धरती पर आते हैं। भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा भी इससे जुड़ी हुई है। घरों के आंगन में ताजे फूलों से बेहद खूबसूरत रंगोलियां सजाई जा रही हैं। केले के पत्ते पर 26 से अधिक तरह के पारंपरिक शाकाहारी व्यंजन परोसे जाते हैं। पंपा नदी में विशाल सर्प नौकाओं की प्रसिद्ध दौड़ भी इसी दिन होती है। पुलिकली, कथकली और थिरुवाथिरकली जैसे लोक नृत्य आयोजित किए जाते हैं। मित्रों, ओणम सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह प्रतीक है समृद्धि, समानता और आपसी भाईचारे का। मान्यता है कि आज ही के दिन केरल के दिल अजीज और प्रजावत्सल राजा महाबली पाताल लोक से अपनी प्रजा को देखने धरती पर आते हैं। उनके स्वागत के लिए घरों के आंगन ताजे फूलों से महक उठते हैं, जिन्हें कहा जाता है पुलकम, यानी फूलों की बेहद सुंदर रंगोली। ओणम की बात हो और ओण सद्या की बात न हो तो बात अधूरी है। केले के पत्ते पर परोसे जाने वाली 26 से अधिक लजीज पकवान, आह, पायसम की मिठास और अवियल का स्वाद इस दिन को और खास बना देता है। आइए केरल के इन खूबसूरत बैकवाटर्स, बोट रेस और जश्न के माहौल को महसूस करते हुए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, अब सुनिए लोक संगीत। और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर लाल धौलपुरिया और साथियों के गाए लोकगीत। आइए सुने कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत।

आप सुन रहे हैं लोक रचनाओं पर केंद्रित कार्यक्रम लोक संगीत, और लोक संगीत में कलाकार हैं शंकर लाल धौलपुरी, और साथ ही आइए सुने अगली लोक रचना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से कार्यक्रम लोक संगीत, और लोक संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर लाल धौलपुरी और साथियों के गाए लोकगीत। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए ये लोकगीत।

आप सुन रहे थे शंकर लाल धौलपुरिया और साथियों के गाए लोकगीत, और इसी के साथ लोक रंग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, अब आपको सुनवा रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अनुजा जोकरकर की गाई गजलें। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस गजल के साथ, कलाम आदम के हैं और संगीतकार हैं, वॉयलिन पर कमल कामले, तबले पर पवन सेन, कीबोर्ड पर पंकज बुधरानी। आइए सुने अनुजा जोखरकर की गाई ये गजल।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में कलाकार हैं अनुजा जोकरकर। अनुजा जोकरकर की गाई गजल आपने सुनी, एक और गजल हम आपको सुनवा रहे हैं, आवाज अनुजा जोकरकर की है, रचना सलीम इंदौरी की।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अनुजा जोकरकर की गाई गजलें। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, अब आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में सुनिए फारूक खान का सारंगी वादन राग बसंत मुखारी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, जिसमें आप सुन रहे थे फारूक लतीफ का सारंगी वादन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।
1: किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। सुबह के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है धार जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर दीपा सिंह। धार जिले में इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में अब तक लगभग 4.5 इंच वर्षा कम दर्ज हुई है, जबकि गत वर्ष इस समय तक 500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई थी। इसके बावजूद इस साल धार जिले में 5,14,665 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी हो चुकी है। इनमें सर्वाधिक 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, 1,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास और 84,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का की फसलें बोई गई हैं। शेष क्षेत्र में दलहन और अन्य उद्यानिकी फसलें आच्छादित की गई हैं। जिले में 2 रेल परियोजनाओं इंदौर दाहोदा और छोटा उदयपुर धार का तेजी से काम चल रहा है। यहां रेल सुरक्षा आयुक्त पश्चिम सर्किल मुंबई ई श्रीनिवास के निरीक्षण के दौरान रेलवे ट्रैक पर 127 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इंजन चलाकर परीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट रेलवे को सौंपी जाएगी। इसके बाद रेल मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद यात्री रेल सेवा शुरू करने की कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 850 करोड़ रुपए निवेश की 2 अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों इकाइयां उच्च तकनीक आधारित विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं को और मजबूत करेंगी। इन इकाइयों से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले में तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रप्रेम की अलग जगाई गई है। राष्ट्रप्रेम, एकता और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इन तिरंगा यात्राओं में बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लोगों, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों द्वारा आमजनों के साथ सहभागिता की गई। धार और बदनावर में निकाली गई तिरंगा यात्रा में धार महू सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री महिला बाल विकास सावित्री ठाकुर, विधायक नीना वर्मा सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जिले में स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह ध्वजारोहण के आयोजन हुए। जिला मुख्यालय स्थित किला मैदान पर आयोजित मुख्य समारोह में कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड की सलामी ली गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा भी साथ थे। यहां मीसाबंदी, लोकतंत्र सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिले के राजगढ़ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय जनसंवाद और समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। बदनावर में नगर परिषद द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में इंदौर संभाग आयुक्त भास्कर लक्षकार शामिल हुए। संभाग आयुक्त ने हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के अंतर्गत धार जिले के कुल 340 श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में सीधे सिंगल क्लिक के माध्यम से 7.58 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत कर उनके खातों में पहुंचाई गई है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन द्वारा धार में पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 217 से अधिक टीमों ने पंजीकरण कराया था। सभी टीमों के प्रथम सत्र में लिखित परीक्षा आयोजित की गई। द्वितीय सत्र में मल्टीमीडिया क्विज में 6 टीम के 3-3 बच्चों की टीम ने भाग लेकर 10 राउंड में मुकाबला किया। सावन के पवित्र माह में धार जिले में अनेक स्थानों पर कांवड़ निकालकर श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शंकर का पूजन अर्चन किया गया। माँ सरस्वती गौशाला की मुक्ति और उनके गौरवपूर्ण पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज उत्सव समिति द्वारा मां वाग्देवी मातृशक्ति महिला कावड़ यात्रा निकाली गई। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में धार में जिला स्तरीय सम्मेलन और समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ विधायक नीना वर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में संत शिरोमणि रविदास महाराज के जीवन दर्शन और मूल्यों पर आधारित विशेष व्याख्यान हुए। रक्षाबंधन पर्व को लेकर जिले भर में उत्साह का माहौल है, बाजार गुलजार हैं। रक्षाबंधन के पवित्र पर्व को ध्यान में रखते हुए धार डाक विभाग द्वारा बहनों और भाइयों के स्नेह को समय पर पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: हेलो हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार श्रोताओं, एमएच हॉटलाइन के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े उसके लिए हम टेलीफोन नंबर आपको बता दें, 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। और हमेशा की तरह निवेदन इसलिए हम कर रहे हैं श्रोताओं कि बहुत सारे श्रोता इस कार्यक्रम के बाद हमें कॉल करते हैं और मैसेज करते हैं या ईमेल लिखते हैं कि उनके कॉल पिछले कई दिनों तक या कई महीनों से शामिल नहीं हो पाते हैं। वे कोशिश तो करते हैं लेकिन एंगेज फोन मिलता है और बार बार कोशिश के बाद भी शामिल नहीं होते हैं, तो वो निराश से हो जाते हैं और उनका कहना है कि हमें भी मौका मिले तो हमें अच्छा लगेगा। इसलिए श्रोताओं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं जिनके कॉल बार बार लग जा रहे हैं, जो हर तीसरे दिन लगा लेते हैं या एक सप्ताह में लगा लेते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को नहीं लग पा रहे हैं, तो कृपया करके आप उन्हें मौका दें ताकि उनका भी त्यौहार मन सके। और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। आज मिलाद उन नबी है और ओणम है, उन दोनों त्यौहारों की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और अब जुड़ रहे हैं हमारे ये श्रोता और जानते हैं उनके मन की बात। हेलो एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
2: सर जी जय श्री महाकाल।
1: जय श्री महाकाल।
2: सर जी शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ, आपका नेम है श्रोता सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो नियमित तो आप हैं इस कार्यक्रम में भी, नियमित ही रहते हैं?
2: नहीं सर, नियमित तो नहीं है, गैप करके आते हैं सर जी, वो थोड़ा सा फेस्टिवल का समय है तो थोड़ा अच्छा। बहुत उलझुक हो गई होगी तो उसके लिए मैं आकाशवाणी
1: आज बिल्कुल क्योंकि मैंने निवेदन भी किया हमारे, और हम निवेदन ही कर रहे हैं, हम लोग आपसे फोर्सफुली तो नहीं कह सकते हैं लेकिन निवेदन कर सकते हैं, ताकि आप अपने जो मित्र हैं, बहुत सारे श्रोता मित्र हैं और श्रोता मित्र एक परिवार की तरह, अभी भिलाई में एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें 550 से ज़्यादा श्रोता मित्र शामिल हुए, और उनकी भी यही कहना था कि जब हम सभी जुड़ना चाहते हैं तो हम क्यों ना हम बारी बारी से जुड़े ताकि हम सभी शामिल हो जाएं, ऐसा उन लोगों का भी निवेदन है, इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं।
2: जी जी बिल्कुल सर, आपकी गाइडलाइन सर आंखों पे रहेगी सर।
1: बिल्कुल, तो रक्षाबंधन आ रहा है
2: जी सर।
1: और आज दो बड़े त्योहार भी मन रहे हैं
2: जी।
1: बिल्कुल, तो क्या कहना चाहते हैं आप?
2: मैं सभी लोगों को सर देखिए, मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा अपने माध्यम से आपको और आपकी पूरी टीम को
1: जी,
2: और आने वाले रक्षाबंधन की और सभी पर्वों की और मिलाप नबी की भी सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल, तो गीत कौन सा सुनेंगे?
2: सर जी एक गाना रहेगा आज का अर्जुन मूवी का, बहना ओ बहना।
1: कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज में ये गीत है
2: जी सर, और ये गाना मैं डेडिकेट करूंगा विक्रमगढ़ आलोट में मेरी सिस्टर है संगीता उडवाल।
1: अच्छा
2: जी, ये मनोहर उडवाल जी सांसद थे, अब स्वर्गीय हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं।
1: अच्छा,
2: उनकी बहू हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह
2: जी सर,
1: क्या बात है। तो इस रक्षाबंधन वो आ रही है घर?
2: जी सर वो बिल्कुल आ रही है, और सभी बहने आएंगी, सबको तोहफे हमको भी देना पड़ते हैं और उनसे भी तोहफे मिलते हैं सर।
1: और सबसे बड़ा तोहफा तो ये होता है कि जब बहन घर में आती है तो खुशियों की बहार आ जाती है।
2: बिल्कुल सर, और सारे जो दुख परेशानी है सब भूल जाते हैं सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हमारा बचपन ताजा हो गया, जब हम छोटे छोटे थे, भाई बहन थे, तब लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे और खूब सारा प्यार भी करते थे। तो बहन जब अब शादियों के बाद में अपने अपने परिवार हो जाते हैं और बहन भी अपने मायके ससुराल चली जाती हैं और एक लंबा अरसा बीत जाता है, लेकिन रक्षाबंधन पे वो ज़रूर आती हैं, और जब

0: लगती हैं तो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं।
1: बिल्कुल सर, रिमाइंड हो जाता है।
0: बिल्कुल, चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा, और आपकी पसंद का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो विविध भारती, ये कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन है। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: रुलो की तरह हंसो तो हम खुश है, मौसम की तरह मुस्कुराओ तो हम खुश है
0: जी।
1: नहीं कहते रोज मिला करो, बस याद कर लिया करो तो हम खुश है।
0: क्या बात है, संदीप भाई निसरपुर से जुड़ चुके हैं हमारे बीच।
1: मुकाम जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: कैसे हो सर?
0: हम अच्छे हैं। क्या हम सही कह रहे हैं, संदीप भाई जुड़ चुके हैं?
1: जी बिल्कुल सर, सही।
0: तो निसरपुर के क्या हाल है अभी?
1: सब बढ़िया है सर, फर्स्ट क्लास। उनाव का पानी चल रहा है सर नर्मदा में, घर से कुछ ही दूरी पर पानी है अभी। अगले मंथ तक ही 16 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन आएगा, तो हमारे घर के पास में बिल्कुल आ जाएगा सर पानी।
0: ऐसा क्या?
1: जी सर, हमारे घर से कुछ 30 फीट की दूरी पर रहता है पानी सर।
0: ओहो,
1: जी सर।
0: तो बिल्कुल एकदम जो है विशाल जल सागर है, वहाँ आप रहते हैं?
1: जी सर बिल्कुल। मैं अगर मोदी जी तक मेरी बात पहुंच जाए सर रेडियो के माध्यम से, तो मैं कहना चाहूंगा कि निसरपुर डूब क्षेत्र है सर, तो इनको इनका हक दिया जाए सर 5,80,000।
0: तो वो तो प्रशासनिक कार्य है, और हमेशा देखो जो है हमारी जो सरकारें हैं बहुत जन संवेदनशील होती है, और निश्चित तौर पे वो सबको हक दे रही है, ऐसा नहीं है, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को हक मिलते हैं, और हक का अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सरकारें सीमांकन करती, बहुत कुछ करती है, और जो कमिटियां बनती है उनके आधार पर सब कुछ मिलता है मुआवजा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको हक मिला होगा। फिलहाल आप तो बताइए, आपकी पसंद का गाना कौन सा सुनवाएं?
1: फिल्म का नाम है सर रक्षाबंधन, और गाने के बोले धागो से बांधा है सांस दिल का।
0: क्या बात है, तो कितनी तैयारी है रक्षाबंधन की?
1: जी सर बिल्कुल, तैयारियां तो बहुत सारी हो गई है सर। खुश हूँ सर रक्षाबंधन आ रहा है। तो आपको और सभी सुनने वालों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो बहना घर आ गई कि अब आने वाली हैं?
1: जी सर बिल्कुल आ गई है।
0: अरे वाह, अच्छा बहना तो आ गई है
1: जी,
0: लेकिन भाभी जी जाती है कि नहीं अपने भाई की राखी बांधने के लिए, कि पता चला बहना के आओ भगत में वो यहीं रुक गई?
1: नहीं सर, वो क्या है कि बहना अभी इस साल पूर्णिमा पे आ जाएगी सर, परसों के दिन राखी है, तो वो आज आ रही है बहन। तो मेरी वाइफ जाएगी सर अष्टमी पे सर, तो वो अष्टमी पे हर साल बांधती है। हमारे यहाँ क्या पहली राखी है कि नहीं, तो वो पहली राखी कल बंधाएगी सर, तो बहन आज आ रही है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व पूरा जो है अष्टमी तक चलता है, काफी लंबा।
1: जी बिल्कुल सर,
0: बिल्कुल श्रावणी यानी का जो है अभी रक्षाबंधन से लेके अष्टमी तक।
1: जी सर बिल्कुल। तो मैं फैमिली का नाम ले लूं जल्द से?
0: हाँ जल्द से लीजिए, और हम सुनवा देते हैं आपको जल्द से आपकी पसंद का गाना।
1: बिल्कुल सर, पापा है बाबूलाल प्रजापत, मम्मी है गंगा भाई प्रजापत, भाई है लखन प्रजापत, मैं हूँ संदीप प्रजापत, मेरी वाइफ है कला प्रजापत, मेरा लड़का है देवांश प्रजापत, और लड़की है खुशी प्रजापत, और पूरा परिवार मिलके आपका कार्यक्रम सुनते हैं सर।
0: चलिए ठीक है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
3: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
2: क्या, कैसे?
3: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
2: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
3: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
4: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
5: इतनी भी क्या जल्दी थी?
4: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
6: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
7: पर दादी आपके नाम?
8: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
4: शुभ शुभ बोलो।
8: क्या RBI कहता है?
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियाँ।
11: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
10: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
11: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
10: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
12: हेलो विविध भारती, MH हॉटलाइन कार्यक्रम। हेलो MH हॉटलाइन कार्यक्रम।
13: हाँ बोलिए महाराज जी।
12: जी अब आपका परिचय दीजिए।
13: अच्छा महाराज जी, मैं बोल रहा हूँ मूलचंद कुशवाहा, ग्राम चितैया, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से।
12: क्या बात है।
13: और मैं रहता हूँ राजस्थान में, रामायण पढ़ता हूँ। मेरे साथी हैं 4 यहाँ।
12: हाँ।
13: मनकारी से फूलचंद पाल और चितैया से ब्रजगोपाल पाल और श्रीनगर से रामकृष्ण कुशवाहा और ननौरा जिला महोबा से जालमदास कुशवाहा। यहाँ हम रामायण पढ़ते हैं मंदिर में, यहाँ राजस्थान में जयपुर में।
12: तो अभी आप राजस्थान में हैं?
13: हाँ जी राजस्थान में। मैंने आप, इतना आनंद आया मुझे आपसे बात करने। मैंने पहली बार, मेरी उम्र 63 साल की होने वाली, मैंने पहली बार आपसे फोन लगाया।
12: क्या बात है। ये
13: रेडियो सुना मैंने 23 साल लगातार आपका कार्यक्रम।
12: अच्छा,
13: लेकिन फोन आज तक कभी लगाया मैंने।
12: ओहो, तो आज का बहुत शुभ दिन है कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। हमें भी बहुत आनंद आ रहा है राजस्थान से आप जुड़े हुए हैं। और
13: जी हमको भी आनंद आ रहा है आपसे बात करने में।
12: जी तो
13: आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम सीताराम।
12: बिल्कुल राम राम सीताराम। और रक्षाबंधन पर्व के महत्व को थोड़ा सा आप प्रकाश डालें।
13: कैसा प्रकाश? हम समझ कम
12: इस पर्व का जो महत्व होता है।
13: महत्व महाराज जी, मैं पूरे दिन रेडियो मैंने 23 साल चलाया, तो मैं कुछ दिन सुनता हूँ कि तुम पूरे रोना आ जाता है मुझे। बहन भाई का गीत, इतना कोई गीत पसंद नहीं, इतना मुझे ये गीत पसंद रहता है।
12: क्या बात है, क्या बात है।
13: ये महत्व है और कुछ नहीं, मुझे भाई चंदा भाई का मेरे।
12: तो आप महोबा से वहाँ चले गए राजस्थान में?
13: हाँ जी।
12: तो फिर बहनें आती हैं वहाँ या फिर आप घर आ जाते हैं?
13: नहीं महाराज जी, मैं अभी घर पर हुआ है। मेरे साले की लड़की खत्म हो गई थी छतरपुर जिले में, तुम्हारे यहाँ
12: GMP में।
13: आप भाई आया, मैं यहाँ रामाल का 4-5 आदमी की अपनी ये है ना जिम्मेदारी है
12: जी,
13: अपनी
12: जी, हाँ।
13: तो यहाँ जरूरी है, तो घर पे मैं अपने इंतजाम कर आया।
12: तो रामायण पाठ आप अलग अलग जगह करते हैं, अलग अलग घरों में या आपके संस्थान में ही करते हैं?
13: नहीं, हम महाराज जी इकट्ठे 5 लोग हैं, इकट्ठे एक मंदिर में करते हैं।
12: अरे वाह, क्या बात है
13: भाई। दिन रात चलता है, 2-2 घंटे की ड्यूटी हमारी, 2 दिन में 2 रात में।
12: जी जी जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। और अब आपकी पसंद का गाना हो जाए।
13: अब महाराज जी मेरी पसंद का, मैंने बता तो दिया मैंने, जैसे छोटी बहन का, फिर जिस गीत में मुझे रोना आ जाए, बहन भाई का कितना प्यार, कितना अच्छा, मैं रो, ऐसा गीत सुना यार अपने हिसाब से।
12: बिल्कुल, तो छोटी बहन फिल्म का गाना ही हम आपको सुनवाते हैं और ये भावपूर्ण गीत हमको अंतर मन से आनंदित और भाव से भर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना?
13: हाँ जी।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हेलो
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राजू लाल मेहर।
0: राजू लाल जी, जी झालावाड़ से जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के कार्यक्रम में
1: जी।
0: तो कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैं अंधा कानून का सुनना चाहता हूँ। बहना ओ बहना मेरी बहना
0: जी।
1: हाँ
0: अंधा कानून फिल्म का गाना सुनेंगे।
1: हाँ
0: जी जी जी जी, और क्या कहना चाहेंगे? हेलो,
1: खेती बाड़ी कर रहे हैं सर।
0: अच्छा खेती बाड़ी करते हैं?
1: हाँ
0: क्या बात है, खेती बाड़ी करना तो बहुत अच्छा काम है।
1: हाँ मक्का बोई है अभी यहाँ सुअर में देख रहे हैं मक्का तोड़ रखी जो।
0: तो अच्छा वहाँ जंगली सुअर आ जाते होंगे वहाँ पे?
1: हाँ जंगली सुअर है बहुत।
0: ऐसा?
1: हाँ
0: फिर किस तरह से भगाते आप उन्हें?
1: सर हम ये जट का लाइन है ना, जट का मशीन।
0: अरे बाप रे, तो वो तो बहुत खतरनाक हो जाता होगा।
1: हाँ जट का लग के उसके
0: तो वो तो प्रतिबंधित भी है, वो प्रतिबंधित भी है, आप ऐसे कैसे कर सकते?
1: ये जट का मशीन नहीं है।
0: हैं?
1: जट का मशीन नहीं है।
0: तो उस वो कैसे करते हैं वो? उसमें
1: उसमें जट का लग के ना वो मरता नहीं है।
0: अरे नहीं नहीं लेकिन ये तो बहुत गलत है। हाँ ऐसा नहीं कर सकते आप, ये तो शायद मुझे ऐसा लगता है प्रतिबंधित भी है सरकार द्वारा, किसी भी प्रकार से ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे निवेदन है कि आप ऐसा ना करें। और आपकी पसंद का गाना बताइए।
1: ये अंधा कानून का है सर।
0: अंधा कानून फिल्म का कौन सा गाना? जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये फिल्म देखी है आपने?
1: हाँ देखी थी, बहुत साल हो गए।
0: हाँ तो कौन सी अभिनेत्री किसकी बहन होती है, किस अभिनेता की यहाँ पे फिल्म में?
1: रजनीकांत और हेमा मालिनी।
0: क्या बात है, मतलब याद है पूरी तरह से
1: जी। अमिताभ बच्चन
0: जी
1: और रजनीकांत
0: जी
1: और हेमा मालिनी, दो तीन ही भाई बहन रहते हैं।
0: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो अब हम आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गाना, है ना?
1: धन्यवाद
0: जी।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: एमएच हॉटलाइन से नमस्ते, अनिल कौशिक मक्ता नगर इंदौर।
0: जी अनिल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी आज बैंक की छुट्टी है तो फोन लगा लेते।
0: अच्छा आज बैंक बंद है?
1: आज अभी तो फोन लगाया जब
0: उठा। तो आप तो बैंक से भी तो लगा लेते हो।
1: कार लगाते थे
0: छुपके छुपके से फोन लगा के बात कर ली, किसमें क्या दिक्कत है?
1: कोशिश तो करते पर लगता नहीं
0: ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितने दिनों बाद लगा आपका फोन?
1: ये मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम में महीना भर हो गया है।
0: महीना भर हो गया? इतने दिन आप कैसे दूर रह लिए इस फोन इन प्रोग्राम से दूर?
1: नहीं हम क्या करें, बैंक के काम में बिजी रहते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता। फोन कभी इसलिए लग जाता है तो वो रिसीव नहीं हो पाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुछ आपकी परेशानी कुछ हमारी परेशानी।
1: हाँ जी, और
0: लेकिन लेकिन ये परेशानी भी बहुत अच्छी होती है जब आपने एक महीने बाद कम से कम मौका दिया दूसरे सुनने वालों को। नहीं तो वही बोल रहा हूँ ना, जब हम त्याग करेंगे तो बाकी को मौका मिलेगा, तो ये भी एक तरह से पुण्य का काम हुआ ना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हमको किसी से कोई शिकायत
0: नहीं। हाँ यही तो, ये अच्छी बात है और हमारे सुधीर श्रोता की निशानी भी है।
1: ये चाहती है कि आकाशवाणी के पे रोज अलग अलग श्रोता है तो उनको भी थोड़ा बात करने में
0: जी लगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से हम सहमत है और हम तो हमेशा ही इस कार्यक्रम के माध्यम से निवेदन करते हैं हमारे सुनने वालों को, है ना, तो अगर जो समझ सके वो समझ जाए और ना समझे तो हम कोई बात नहीं। नहीं नहीं, हम तो निवेदन कर सकते हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना, बिल्कुल बिल्कुल,
1: दूसरों को भी मौका मिले।
0: हाँ बस बस बस, हमारा यही रहता है कि जैसे मान लो अगर परिवार में 6 सदस्य हैं तो सबको पूरी भागीदारी का मौका मिलना चाहिए, तभी परिवार आगे बढ़ता है। और हमारा जो आकाशवाणी परिवार है वो तो लाखों करोड़ों श्रोताओं का परिवार है, तो निश्चय ही जो है भीड़ तो होगी ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और पूरे देश भर से लोग जुड़ना चाहते हैं, पूरे देश से।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज हमको ना काशी सिन्हा जी सुनवा दीजिए, मोहम्मद रफी सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। जब आती होगी याद मेरी तेरा दिल तो मचलता होगा।
0: बिल्कुल, तो सुन लिए ये गाना।

0: हेलो MH हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमां से सलाम भेजा है। हो मुबारक आपको रक्षाबंधन का ये भाई बहन का पावन पर्व। उदयपुर राजस्थान से दिलीप पाहुजा ने दिल से ही पैगाम भेजा है।
0: क्या बात है पाहुजा साहब, आपने पंक्ति माए ये जो शुभकामनाएं हमें प्रेषित की है वो बहुत अच्छी है और हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें काफी पसंद आई होगी।
1: धन्यवाद सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो रक्षा बंधन का ये जो पर्व है वो हम सभी को
1: के पावन और पवित्र त्योहार है सर
0: जी।
1: बड़ा ही आनंद आता है जब हम भी अपनी बहन के यहाँ जाते हैं
0: जी,
1: या हमारी बहन हमारे यहाँ आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है
0: जी। जी बिल्कुल,
1: समय घर एकदम खुशियों से भर जाता है।
0: बिल्कुल, और जब पूरे परिवार के सदस्य एक साथ हो जाते हैं तो आनंद की बात ही कुछ और होती है, डबल हो जाता है। और इस भागा दौड़ी के क्षण में एक तरह से यूं कहें कि हम वैसे तो बहुत कार्यों के पीछे कदर पीछे लगे रहते हैं और इतने व्यस्ततम रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पल ही है जो त्योहारों के, जिसमें हम एक तरह से उन सारी जो है भागा दौड़ी को छोड़कर कुछ क्षण के लिए आनंद में डूब जाते हैं।
1: बस यही है ना एक।
0: बिल्कुल, ये हमारी सनातन परंपरा है, भारतीय परंपरा है जो हमें आनंद से जोड़ती है, इसलिए त्योहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी सर।
0: बिल्कुल, तो कौन सा गीत सुनेंगे
1: सर? गाना सुनने से पहले दो लाइनें।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: दूर रहकर भी हमसे वास्ता रखना, मुलाकात न सही पर बातों का सिलसिला रखना। छोड़ो तुम आसमां को ये मेरी तमन्ना है, पर हम तक ये दौनी ताल की तरंगों का रास्ता याद रखना।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: तो सर आज मुझे एक दिनतमान और देवानंद साहब की मूवी है जो पहली भाई बहन के ऊपर बनी हुई फिल्म है
0: जी,
1: दोनों की।
0: हाँ।
1: उस फिल्म का एक गाना याद आ रहा है, फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा, और गाना की बोल है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है।
0: जी जी,
1: मेरे तीन प्रिय दोस्तों के साथ में डेलिकेट करना चाहूंगा।
0: बिल्कुल कीजिए।
1: सबसे पहले तो आप हैं। सेकंड नंबर पर हमारा हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप है
0: जी,
1: और तीसरे MH हॉटलाइन सुनने वाले सभी साथी भाई बहनों के।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत
1: धन्यवाद सर
0: जी, प्रसन्नदायक बात आपसे रही, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
3: नमस्कार सर, आपको
2: नमस्कार जी। हम किन से बात कर रहे हैं?
3: सर मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
2: यादव साहब स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद सर आपको।
2: तो बारिश कुछ ज्यादा हो रही है क्या वहाँ पर?
3: नहीं सर, बिल्कुल ज्यादा हो रही है, दो दिन से बारिश हो रही है।
2: अच्छा।
3: हाँ, एकदम बंद नहीं हो रही है,
2: लगातार हो रही है।
3: हाँ
2: अच्छा अच्छा, तो गंगा जी भी उफान पे होंगी फिर?
3: बिल्कुल बिल्कुल, गंगा जी तो सभी घाट डूब चुके हैं, मंदिर भी डूब चुका है।
2: जी जी जी, हमने अलग अलग माध्यमों से जाना कि वहाँ पर काफी जो है बाढ़ जैसी स्थिति आ रही है।
3: जी सर, बहुत पानी ज्यादा पड़ गया है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप लोग अपनी सुरक्षा किस तरह से करते हैं?
3: सर मेरा तो घर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा।
3: हाँ
2: जी जी जी बिल्कुल, तो आप लोगों को फिर भी बारिश में और बाढ़ की स्थिति में काफी सावधानी रखनी होती है।
3: जी सर,
2: पेयजल से लेके खाद्य सामग्री तक सारी जो चीजें हैं उसकी तकलीफें बढ़ जाती है।
3: हाँ हाँ, थोड़ा परेशानी तो होती ही है।
2: जी जी, तो यादव साहब कौन सा गाना सुनेंगे?
3: सर देखिए, अभी आगामी रक्षाबंधन आने वाला है
2: जी,
3: तो रक्षाबंधन पे एक गाना सुनना चाहूंगा
2: जी।
3: फिल्म रेशम की डोरी है और बोल उसके कि बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, ये सुनवाइएगा सर।
2: बिल्कुल, ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और इस पर्व को लेकर कुछ किस्से या कुछ ऐसी बातें आपको याद आ रही तो बता सकते हैं?
3: सर देखिए, ये तो बहुत भावनात्मक त्योहार है
2: जी,
3: भाई और बहन के संबंध का प्यार है
2: जी,
3: और ये बहुत ही भाव पर्व रहता है जब बहन भाई के कलाई में राखी बांधती है तो बहुत अच्छा लगता है
2: जी।
3: हाँ सर
2: बिल्कुल, चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी पसंद का गाना हम सुनवा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार सर जी।

0: जी सर, हम ग्राम पोस्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से सर मेहरबान सिंह नागल बोल रहे हैं सर जी।
1: मेहरबान सिंह जी, नागल साहब आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
0: जी सर धन्यवाद, नमस्कार सर
1: जी। नमस्कार, तो कौन सा गाना सुनेंगे
0: सर? आज फिल्म का नाम है 20 साल बाद और गीत के बोले मेरे सामने तू दिन रात रहे मेरे साथी तू हमेशा मेरे साथ रहे। सर जी बड़ी मेहनत से कौन लगती है, ट्राई करते करते थक जाते हैं, लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि सर आपसे बात हो गई हमारा।
1: तो कितने दिनों के प्रयास के बाद आप सफल रहे?
0: कम से कम नहीं, हमें होगा 5-6 महीने सर। हम ट्राई करते हैं लेकिन घंटी जाती है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता है कार्यक्रम में, लेकिन हम प्रतिदिन कार्यक्रम आपका सुनते हैं, कार्यक्रम शानदार जाता है
1: जी।
0: और आप लोग बड़े मेहनत से कार्यक्रम को देते हैं
1: जी,
0: हम
1: जी,
0: बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। और
0: एक बात कहना चाहेंगे, आकाशवाणी परिवार को हमारी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे रेडियो मित्र जितने भी अभी लाइव सुन रहे हैं सभी को हमारी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल, हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं सारे त्योहारों की
0: जी सर। और कौन सर बात कर रहे हैं सर जी?
1: मैं मुकाम सिंह चौहान बोल रहा हूँ
0: जी। सर आपका पत्र मिला कार्यक्रम में सर आते हैं, और जो कार्यक्रम बंद होगा वो आ रहा है सर जी।
1: आपका पत्र कार्यक्रम आज ही प्रसारित हुआ सुबह 7:20 पर से 8 बजे तक।
0: तो अभी शनिवार को आज तो नहीं सर जी?
1: नहीं नहीं, ये कार्यक्रम अब बुधवार को आता है और उसका समय रहता है सुबह 7:20 से 8 बजे तक, यानी पूरे 40 मिनट तक, और ये कार्यक्रम पूरी तरह से लाइव होता है।
0: धन्यवाद, वो बिल्कुल बड़ी मधुर आवाज में सर आप कार्यक्रम को देते हैं और हम बड़े ध्यानपूर्वक।
1: बिल्कुल, तो अगले अगले अगले बुधवार से फिर आप जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम से और आपकी प्रतिक्रियाएं हमें भेजिए
0: जी। बिल्कुल, तो व्हाट्सएप यही नंबर पे करा जाता है सर?
1: मेल है, मेल है आपका पत्र airindore@gmail.com एक मेल है, और उस मेल आईडी पे आप मेल करेंगे तो आप आपका जो है आपकी बातें हम तक पहुंच जाएगी। और फिलहाल हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना, क्योंकि अब समय अब हमारे पास नहीं है
0: जी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा और बड़ी बेहतरीन अच्छी मीठी आवाज में सर आप कार्यक्रम को दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। तकनीकी सहयोगी मनोज चौहान और देवेंद्र सिंह स्वर्णकार, और अब आपका मित्र मुकाम सिंह चौहान आपसे अनुमति लेता और कहता नमस्कार।
1: हेलो, यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए अब सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने।
2: श्रोताओं नमस्कार, आज के फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करती है आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका। कभी कभी सबसे मुश्किल सफर कहीं पहुंचने का नहीं होता, बल्कि उस जगह को छोड़ने का होता है जहां हम अभी हैं। पर शायद यही जिंदगी का इशारा होता है हमें अनजान रास्तों पर भरोसा करना सिखाने का। उस चलती नाव में कदम रखने का जब किनारा अब भी अपना सा लगता है, क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जब हम सुकून से ज्यादा हिम्मत को चुनते हैं और यकीन करते हैं कि आगे जो है वो हमारे लिए और भी खूबसूरत होगा। इन्हीं आशास्पद विचारों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हेलो
3: नमस्कार
2: जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
3: कहते हैं रोशनी की तरह आपकी जिंदगी में नूर हो
2: जी,
3: और आप और हम कभी भी आकाशवाणी मध्य प्रदेश से ना दूर हो। और दीदी जी, अगर बिछड़े भी तो इस वादे के साथ कि हमेशा आकाशवाणी के साथ जरूर हो, आकाशवाणी के साथ जरूर हो। नमस्कार बहन जी,
2: स्वागत है आपका हमारे आज के फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में।
3: जी दीदी जी, आपका नाम जानना चाहूंगा।
2: जी मैं आपकी रेडियो संगीनी प्रियंका बात कर रही हूँ आकाशवाणी मध्य प्रदेश से,
3: और मैं बात कर रहा हूँ राम की तपोभूम चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से।
2: जी
3: दिनकर सिंह
2: जी,
3: और दीदी जी को राम की तपोभूम से सत सत बार राम राम पहुंचा रहा हूं।
2: जी शुक्रिया बहुत बहुत। अब आपकी इतनी सुंदर सी बातें सुनके, इतनी प्यारी सी बातें सुनकर हमारा मन जो है बड़ा भाव विभोर हो गया है। तो दिनकर जी जल्दी से आप बताइए अब कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
3: पहले मैं रक्षाबंधन की जो है सभी भाई बहनों को जो है शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और आपको आपके चैनल वालों को भी जो रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।
2: जी हमारी ओर से भी सभी को शुभकामनाएं पहुँचे,
3: क्योंकि देश के जवान जो सोल्जर हैं वो देश की रक्षा करते हैं, और भाई बहन एक दूसरे की सामाजिक और आर्थिक रक्षा करते हैं। तो इस स्नेह और प्रेम के त्योहार को मैं सभी को जो है सप्रेम भेंट कर रहा हूँ कि ये स्नेह और प्रेम बना रहे रक्षाबंधन में भाई बहन का।
2: बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है कि भाई और बहन एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे, यही इस रक्षाबंधन पर्व की जो है पवित्रता है और इसका महत्व है। दिनकर जी गीत बताइए कौन सा सुनेंगे आप?
3: अंधा कानून फिल्म का गीत सुनना है।
2: जी
3: मेरी बहना दीवानी है पर वो समझती है सबसे वो सयानी है।
2: जी बिल्कुल, आपके लिए आपके रेडियो सेट पर आपकी तरफ से एक शुभकामना के रूप में ये गीत सुनिए।
3: दीदी जी मेरे साथ प्रेमदास बाबा जी हैं, उनके साथ सुनूंगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल जी, और अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी सुनिए और उन्हें भी कहिए कि हमसे जुड़े और अपनी फरमाइश स्वयं सुने। नमस्कार
3: दीदी जी।
2: नमस्कार जी।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: राखी बंधन की शुभकामनाएं आपको, मेरी बहना को, सबको।
0: जी। हमारी ओर से भी, आकाशवाणी परिवार की ओर से, आप सभी श्रोताओं को भी रक्षाबंधन की अग्रिम
1: रक्षाबंधन की
0: शुभकामनाएं।
1: आपका
0: इस बार
1: कहा।
0: उल्लास बहुत देखने को मिल रहा है। और बताइए, अब गीत
1: हाँ,
0: कौन सा सुनना चाहते हैं? अपना नाम और जगह का नाम भी बताइए पहले।
1: मैं तुलसीराम व्यास,
0: अच्छा, तुलसीराम जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: ये डिस्ट्रिक्ट जिला वाशिम मालेगांव।
0: तो आपको कैसा सुनाई देता है हमारा प्रसारण वाशिम में?
1: अरे महाराष्ट्र में सुना तो अच्छा देता है, जरी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल। और कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप हमारे यहाँ से?
1: मैं तो सुबह 6 बजे लगाता हूँ,
0: जी।
1: तो राम जी की कथा भी सुन लेता हूँ,
0: रामचरित
1: और
0: मानस गान।
1: उसके बाद में 3:30 बजे संगीत, साढ़े
0: जी
1: पांच बजे संगीत,
0: जी जी जी
1: 6:30 बजे संगीत।
0: अच्छा, यानी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आप विशेष रूप से सुनते हैं।
1: मुझे फिल्म संगीत बहुत पसंद, इतना है कि मेरे परिवार में सिर्फ मैं इस गाने सुनता हूँ, मेरी पत्नी को गाने अच्छे नहीं लगते।
0: अरे, फिर आप रेडियो सुनते हैं तो उन्हें परेशानी नहीं होती है, उलझन नहीं होती है?
1: परेशानी होती, वो मेरे कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते।
0: अच्छा, और लेकिन आप रेडियो का प्रेम नहीं छोड़ते हैं, है ना?
1: मैं तो कैसा छोड़ू, मैं

0: 1960 से लगा हूँ रेडियो पर,
1: जी
0: और मर्फी रेडियो है, बहुत पुराना है मर्फी का।
1: ओहो क्या बात है।
0: हाँ मर्फी का रेडियो है आज भी मेरे पास में, मेरे पिताजी ने दिया था मेरे को।
1: और वो बहुत अच्छी कंडीशन में चलता भी है।
0: हाँ वो क्या है कभी मैं बीमार नहीं रखता हूँ उस रेडियो
1: बस
0: को।
1: हम अभी यही कहने वाले थे कि आप उसका बहुत ख्याल रखते होंगे, समय समय पर उसकी सर्विसिंग करवाना और उसके लिए जो भी आवश्यक है उसके लिए आप उसका ध्यान रखते होंगे, तभी अभी तक चल
0: मेरे
1: रहा है वो।
0: मेरे स्वास्थ्य से उसका ख्याल ज्यादा रखता हूँ मैं।
1: बहुत बढ़िया, ये है आपका रेडियो के प्रति प्रेम।
0: आज
1: जी
0: मैं 80 साल का हो चुका हूँ
1: जी
0: बेटा।
1: जी जी जी तो बताइए आज के इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: आप सुना जो हमारी पत्नी की पसंद का गाना है, आप 80 साल में वो गाना गाती, क्या
1: कौन सा?
0: करूँ राम मुझे भुगता नहीं।
1: चलिए कोई बात नहीं, ये उम्र तो आज आई है ना, जब मिले थे तब थोड़ी ना ये उम्र थी आपकी।
0: लेकिन वो गाना उसको आज भी पसंद
1: हाँ, और उन्हें चूंकि फिल्म संगीत और रेडियो सुनना पसंद नहीं है तो क्या ये गीत सुनेंगे वो, उनकी अपनी पसंद जो वो
0: मैं
1: भेज रहे हैं वो?
0: कभी कभी बोलता हूँ कि आकाशवाणी पर 1 मिनट तो बात कर लो आप,
1: जी
0: नहीं
1: जी
0: करते। वो अब मेरे कमरे में है नहीं, वो दूसरे कमरे में चली गई। मोबाइल
1: अच्छा, तो आप मोबाइल से बात कर रहे हैं या लैंडलाइन से?
0: से बात कर
1: अरे
0: लो
1: तो
0: आप।
1: मोबाइल लेकर आप पहुंच सकते हैं पत्नी जी के पास कि
0: अरे
1: आपकी पसंद का
0: अरे
1: गीत
0: नहीं
1: हम
0: वो तो
1: सर
0: फिर काम बहुत वो उल्टा काम हो जाएगा फिर, वो
1: झगड़ा हो जाएगा।
0: मेरी क्लास लग जाएगी,
1: जी जी
0: मेरी क्लास लग जाएगी।
1: चलिए कोई बात नहीं, हम नहीं चाहते कि क्लास लगे, लेकिन अच्छी बातों की लगे, प्यार भरी बातों की लगे, हम यही चाहते हैं। तो तुलसीराम जी, आपकी पत्नी जी की पसंद पर आपके लिए, दोनों के लिए ये गीत। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: मैम।
0: नमस्कार। कार्यक्रम में फोन करें, गीत सुने, स्वागत करते हैं। अपना नाम और जगह का नाम बताइए।
1: हाँ, जितेंद्र झा बात कर रहे हैं, ग्राम गोरा कला, तहसील चंदेरी, अशोकनगर से।
0: अच्छा जी, जितेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी मैम।
0: कैसे हैं आप?
1: हाँ ठीक है मैम, बढ़िया है। बारिश हो
0: बढ़िया
1: रही है
0: है
1: बहुत।
0: जी। मौसम कैसा है अभी अशोकनगर का?
1: अरे बहुत बहुत बारिश हो रही है।
0: हाँ, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है? स्वास्थ्य ठीक है आपका इतनी बारिश में, और परिवार के अन्य
1: परेशानी क्या,
0: सदस्यों
1: लोग
0: का?
1: घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
0: चलिए, तो कोई बात नहीं, घर में रहकर अब बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनवा दे आपको।
1: हाँ मेरे लिए ये गीत सुनना है, गौर फिल्म का गीत सुनना है। हाँ,
0: कौन सा गीत इस फिल्म का?
1: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा।
0: जी चलिए, बहुत आपने मौके का गीत पसंद किया है
1: हाँ
0: ना?
1: जी मैम, बहुत अच्छा लगता है वो गीत।
0: जी जी बिल्कुल। चलिए जितेंद्र जी, शुक्रिया, नमस्कार, आपने हमें फोन किया।
1: नमस्कार मैम।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्ते जी। कार्यक्रम में फोन करें, गीत सुने।
1: हाँ दीदी, मैं राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ।
0: जी राजेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया दीदी,
0: अपनी पसंद
1: कार्यक्रम
0: का गीत
1: सुन
0: बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: गीत आज दीदी सुनवा दीजिए। देव कोहली साहब की पुण्यतिथि है आज,
0: हाँ
1: 26 अगस्त की, तो उनका ही गीत है, लाल पत्थर का गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ।
0: जी, बहुत
1: मैंने
0: पुरानी पसंद आपने। बाकी
1: या फिर मैंने प्यार किया का कोई सा भी सुनवा दीजिए, अगर ये नहीं मिले तो।
0: बिल्कुल दोनों गीत मिल जाएंगे।
1: हमारे
0: आपकी प्राथमिकता कौन से गीत की है?
1: हमारे पसंद लाल पत्थर पिक्चर का गीत है, पहले तो किशोर दा की आवाज में,
0: बिल्कुल, तो आपको
1: और
0: हम यही
1: हमारे
0: गीत
1: परिवार
0: सुनवाएंगे।
1: के लोग का नाम लेना चाहता हूँ, मुकेश महाजन है, शांति महाजन है
0: जी, बहुत बहुत
1: और
0: शुक्रिया।
1: राजेश महाजन है।
0: बिल्कुल, तो परिवार के साथ सुनिए आपकी पसंद। नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार,
0: नमस्कार, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं?
1: एमपी सीपरी गांव का नाम चंदनपुरा।
0: जी, स्वागत है
1: सुन
0: आपका।
1: रहे
0: कौन सा
1: थे?
0: गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: अरे गाना मैडम कराना रे, उनका सुनवा देना।
0: जी जी जी
1: हाँ
0: बिल्कुल,
1: प्यार का बंधन है।
0: तो शुक्रिया, नमस्कार।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते बहन
0: कैसे हैं आप?
1: जी। बहन मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, बिंदास हूँ।
0: चलिए, तो आपकी ये स्वस्थता और आपका ये जो बेस्टाइज है वो हमेशा बना रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अब अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं, जिनके
1: जी
0: लिए
1: बहन,
0: हम
1: मैं राजीव
0: शुभकामना भेज रहे
1: यादव,
0: हैं।
1: ग्राम उपरे काशी रामपुर डेरा सरीला राठ मुस्कुरा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश,
0: अच्छा जी,
1: राजू यादव।
0: और मौसम क्या कह रहा है
1: मौसम
0: बुंदेलखंड
1: तो
0: का?
1: बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं।
0: बराबर, बहुत अच्छी बात है, ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठाना चाहिए। आप चहलकदमी करते हैं या नहीं सुबह इतनी ठंडी और प्यारे सुहाने मौसम में?
1: हम तो कृषक हैं, कृषक के लिए तो बराबर हर समय मेहनत होती रहती है।
0: तो आपकी वैसे ही हो जाती है चहलकदमी, है ना, करने की
1: जी
0: ज़रूरत ही नहीं है।
1: जी जी
0: राजू जी, कौन सा गीत सुनेंगे आप बताइए।
1: बहना जी, हम गीत सुनेंगे, जिनका घर हुआ अयोध्या जैसा, जिनकी होत बड़ाई, आंगे आंगे राम चलत हैं, पीछे लक्ष्मण भाई, कौसल्या तोहरे अंगनवा।
0: बहुत खूबसूरत। अब सुनिए रेडियो सेट पर ये गीत। नमस्कार।

0: हेलो।
1: नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? कौन सा गीत सुनेंगे? और पे ये भी बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नाम अनोखे सिंह।
0: कौन सा गीत सुनेंगे अनोखे सिंह जी?
1: हमको सुनना तो क्रांति का ही चना चोर गरम।
0: अनोखे सिंह जी, आपने 2 दिन पहले ही शायद फोन लगाया था, है ना?
1: सर जी वो सुनाते ही नहीं, ऐसी बातचीत सब हो जाती है। अगले दिन हम 1 घंटा फिर रेडियो के पास अटके ले रहे थे।
0: आपने परसों फोन लगाया था, आज दोबारा अपनी
1: परसों
0: फरमाइश
1: लगाया
0: सुन
1: सर
0: रहे
1: जी तो
0: हैं।
1: वो अक्षर साहब ने हमारी रिकॉर्डिंग सुना ही नहीं।
0: अच्छा चलिए ठीक है, तब कल हम आपको गीत सुनवाएंगे ये जरूर। चलिए आपके रेडियो सेट पर अवश्य सुनिए ये गीत, और उसके बाद आप 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद फोन करके अपनी फरमाइश दीजिएगा। नमस्कार।
1: नमस्कार।

ये दुश्मन है खुदगर्जी का, मेरा चना है अपनी मर्जी का, ये दुश्मन।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी
1: हाँ,
0: नमस्ते
1: मैं कटनी से बोल रहा हूँ, सुनील गर्ग।
0: जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: जी, आज का काम ये फोन करें, गीत सुने।
0: बिल्कुल, आज कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने। कौन सा गीत आपने सोच कर रखा है सुनने के लिए?
1: हमें सुना दीजिए कश्मीर की कली का, ये दुनिया उसी की, ये जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो।
2: उसी की

0: हेलो
1: मैम नमस्ते।
0: नमस्ते
1: मैम ग्राम नेगई सिनोड़ी तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी से बोल रहा हूँ मैम
0: जी, कटनी से कौन बात कर रहे हैं?
1: जी। परमलाल साहू बोल रहा हूँ मैम
0: परमलाल जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में
1: जी। मैम
0: जी। कैसे हैं आप
1: बहुत अच्छे हैं मैम।
0: जी? कौन सा
1: मैं
0: गीत
1: पानी
0: आप
1: जी
0: सुनना चाह
1: जी
0: रहे हैं?
1: फिल्म रेशम की डोरी
0: हाँ
1: बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है।

0: मत ढूंढो कि दुनिया में खूबसूरत कौन है, ढूंढना है तो उसे ढूंढो जिसके होने से आपकी दुनिया खूबसूरत है। अगली मुलाकात तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नेक गतिविधियों में व्यस्त रहिए। फिर किसी नई उम्मीद और नई किरण के साथ आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ओणम के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कामना की है कि त्यौहार लोगों में खुशी, एकता और समृद्धि की भावना को और मजबूत करेगा। ओणम नई फसल और प्रकृति के प्रति आभार का पर्व है। ये भारत की समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी सांस्कृतिक विरासत और अन्नदाताओं की समृद्धि का उत्साह ओणम के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की चौथी विनिर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे। 450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित इस इकाई से 2000 से अधिक नए अवसर सृजित होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के द्वितीय अतिरिक्त चरण की तिथियां बढ़ा दी हैं। विद्यार्थी 30 अगस्त तक पंजीयन और आवेदन कर सकेंगे, जबकि सीट आवंटन के बाद प्रवेश शुल्क 8 सितंबर तक जमा किया जा सकेगा। राजधानी में मंत्रालय सहित विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था शुरू की जा रही है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जाएगी। और मौसम विभाग ने आज विंध्यतिया सागर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन तक भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, आज हम लेकर आए हैं बहुत प्यारे प्यारे से गीत आप सभी की पसंद पर। तो फिर क्यों ना शुरू करें आज का ये कारवां, फिल्मी फरमाइशी गीतों का कारवां कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है फिल्म कुदरत से। स्वर है किशोर कुमार के, शब्द रचना है मजरूह की और संगीत है आरडी बर्मन का। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने सेक्टर 67 मोबाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और इनका पूरा परिवार इस गीत को पसंद किया है। बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी ने, डुमराव बिहार से डॉक्टर डल्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सारीमपुर बक्सर से राज एसटी अंसारी और आसमा खातून अंसारी ने, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने, आप सभी ने सुनना चाहा है ये बहुत खूबसूरत संगीत।

मौसम से। सुमधुर आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीत लिखा है नंद बख्शी ने और संगीत है आरडी बर्मन का। पसंद करने वाले श्रोता हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, शायमा खान, और पोत्रा से मुश्तबा खान, पोत्री अफिया खान। आप सभी श्रोता हैं गांधीबाग अकोला से। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष, इसी गीत को पसंद किया है। थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

से आर डी बर्मन का इस गीत को सुनना चाहे आप सभी ने, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और इनका पूरा डागला परिवार इसी बहुत खूबसूरत से गीत को सुनना चाहे गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित ने इसी फिल्म के लिए हमारे अगले श्रोता हैं जिन्होंने फरमाइश लिख भेजी है। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म घर से और आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत

आते हैं श्रोताओं की पसंद पर। ये बहुत प्यारा सा गीत, इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, गीत लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का। और अपनी पसंद हम तक लिख भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे और प्रज्वल डेरे ने इसी गीत को पसंद किया है। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने यही गीत सुनना चाहा है। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन डोमने और धीरज सब्बा सेरे ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति जिसे हमने लिया है फिल्म मेरे जीवन साथी से, स्वर हैं किशोर कुमार के, गीत लिखा है मजरू ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

इस गीत को पसंद किया है साहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन, रोशनी और स्वीटी बेबी प्रियांशी ने। इसी गीत को सुना चाहे मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र, अभिजीत गवाड़, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता और अर्जुन ने। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश और सुमित ने। आप सभी की पसंद पर सुनिए कार्यक्रम का ये गीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त सरिता को। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: बड़ी बहू,
3: ये तुम्हारे नाम।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
3: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
2: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी, आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: बड़े अच्छे लगते हैं
8: क्या
7: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
8: और
9: आकाशवाणी इंदौर। सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
10: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
11: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
10: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
12: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
8: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
12: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
13: आकाशवाणी इंदौर।
8: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
14: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
15: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
14: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
15: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
14: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

0: अभी तक आप सुन चुके हैं कि जमुनिया अपने पति रतन के साथ मेहनत से कमा खा रही थी। रतन मेहनती था और ईमानदार भी। गांव के दीवान से मिलकर करण यानी रतन के भाई ने 10,000 रुपए का कर्ज दिलाया, जिसे कागजों में छल पूर्वक 25,000 बना दिया गया। जब रतन को ये बात मालूम हुई, वो स्तब्ध हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। बाद में करण ने अपनी भाभी जमुनिया को घर से निकाल दिया, उसकी दुधमुही बच्ची के साथ। उन्हें पास के गांव के छुल्लन बाबा ने आश्रय दिया, जहां बांस के डलिए और पंखे बनाना सीखकर जमुनिया गुजर बसर करने लगी। यहीं उसने पढ़ने की इच्छा जताई। गुरुजी ने उसे शिक्षा देना शुरू किया, अक्षर अंक के साथ वाक्य बनाना और जोड़ना घटाना भी सिखाया, और बताते रहे भारत के इतिहास और आज के भारत की गाथा। अब आगे।
1: अरे वाह, आज तो बहुत सारे डलिया पंखे बन रहे हैं। हाथ थोड़ा जल्दी चले जाते हैं, हो सकता है बिक जाए।
2: हाँ, एक काम करो बिटिया।
1: जी।
2: हाथ आज मैं चला जाता हूँ, हैं? ये सामान भी बेच आऊंगा और कुछ बांस भी लेता आऊंगा। आज तुम और चिरैया घर पर रहो, पढ़ो पढ़ाओ, डलिया पंखे बनाओ।
1: मैं भी साथ चलती हूँ बाबा, तुमको अकेले परेशानी होगी।
2: अरे बिटिया, काहे की परेशानी है? कुछ मुझे भी करने दिया कर, नहीं तो अला लिया जाएगी मेरे को।
1: तो फिर ठीक है, आज ज्ञान का नया पाठ पढ़ेंगे।
3: मैं चलूं बाबा हाट में?
2: है? चल, अच्छा आजा आजा आजा, चल थोड़ा तू भी घूम आएगी।
1: बाबा
2: हाँ।
1: तो फिर इसमें थोड़ा चबेना है, थोड़ा बहुत भूख मारने के लिए अच्छा रहेगा।
2: अरे बिटिया, कहीं बाहर निकलो तो एक पोटली या कुछ पकड़ा ही देती हो तुम, हैं? अन्नपूर्णा हो बिटिया तुम।
1: क्या अन्नपूर्णा?
3: बाबा, अन्नपूर्णा क्या होता है?
2: आज शाम को हाट से लौट कर आएंगे, तब अपनी माई से पूछना। हाँ, वो ही बताएगी तेरे को।
3: ठीक है माई, शाम को बताना, तब तक सोच कर रखना।
1: अच्छा भाई, अच्छा, अब चलो जाओ। प्रणाम गुरुजी।
4: प्रणाम प्रणाम। आओ आओ जमुनिया, आओ, खुश रहो बेटा।

0: ये क्या सुन रहे थे गुरुजी?
1: अरे बस जरा रेडियो पर शास्त्रीय संगीत सुन रहा था।
0: ये क्या होता है?
1: अरे भाई वो जैसे अपने गांव में तुम लोग गाते बजाते हो ना, उसी लोक संगीत कहते हैं।
0: अच्छा।
1: उसी प्रकार संगीत की लंबी साधना और उसे स्थायी रूप देने के लिए शास्त्रीय संगीत होता है।
0: कठिन काम होगा, है ना?
1: देखो जमुनिया, ये पढ़ाई लिखाई ज्ञान ध्यान की बातें बहुत गहरी हैं। इसे सीखने के लिए पूरा एक जीवन भी कम पड़ता है। अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, यहीं से रास्ता खुलता है।
0: ठीक है गुरुजी, एक ही दिन में सब कुछ सीखना होने वाला नहीं है। आज क्या पढ़ेंगे गुरुजी?
1: भाई आज तुम बहुत जरा जल्दी आ गई हो ना, लगता है घर का काम धाम सब निपटा कर आई हो यहाँ पर है?
0: जी।
1: और मैं अभी बाहर से आया हूँ, थोड़ा सा जरा आराम करूँगा।
0: तो फिर मैं वापस चली जाऊँ?
1: अरे नहीं नहीं नहीं भाई, ये मैंने थोड़ी कहा कि तुम वापस चली जाओ है। तुम जरा यहीं पर आराम से बैठो, मैं अभी आता हूँ और तुम वो

0: पिछले पाठों का अभ्यास करो तब तक है, फिर बाद में तुम्हें आराम से पढ़ाऊंगा।
1: ठीक है गुरुजी। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छे, राम घर चल, कमल लोटा ला, सच सच कह। इतनी हड़बड़ी मत मचा, जमुनिया पहले अपना नाम लिखना सीख, फिर दूसरे का नाम पढ़ना, हाँ फिर हिसाब किताब। ये जाने क्या तो शास्त्रीय गीत है, अपना तो कजरी होरी गारी ये ही भला है। ओ गुरुजी आ गए।
0: हाँ भाई जमुनिया, सुना भाई क्या कर रही हो? अब मैंने तो आराम कर लिया, थकान जाती रही सारी। चलो अब आगे पढ़ते हैं
1: जी।
0: लाओ जरा देखें क्या क्या लिखा है तुमने। भाई वाह वाह जमुनिया वाह, अरे ये क्या लिखा है तुमने?
1: अपना नाम लिख रहे थे गुरुजी।
0: अरे पर इसमें मात्राएं तो सारी गायब हैं
1: जी।
0: ये तुमने जम नहीं लिखा है। चलो तुम्हारा नाम सही सही लिख देता हूं मैं, अभ्यास करके लिखना सीखो
1: जी।
0: देखो ये है जा, जा माँ
1: जी,
0: माँ पर छोटे ऊ की मात्रा है, और ये ना है
1: जी,
0: ना पर छोटे छोटे ई की मात्रा, नी, और ये आ, आ की मात्रा, और या। हाँ देखो अब ये सब मिलकर बन गए ना जमुनिया, समझी कुछ?
1: बिल्कुल सही गुरुजी, कल लिख कर आऊंगी 100 बार।
0: अच्छा 100 कितना होता है?
1: हम भूले नहीं है गुरुजी, 10 बार 10 मिलकर 100 होते
0: अरे
1: हैं।
0: माशा पाश। चलो तो भाई आज तुम्हें एक दूसरा नाटक सुनवाते हैं
1: जी।
0: उससे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि अगर आज देश के गांव की हालत खराब है तो कहीं तक हो, उसकी नींव उस खुदगर्ज और जालिम अंग्रेजी साम्राज्य में ही है। अंग्रेजों को हराने की हमने कई कोशिशें की, पर हर बार हम कभी हमारी आपसी फूट तो कभी उनकी चालाकी और ताकत से हार जाते थे। हमारी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। पूरी खेती होने के बावजूद भी हमारे किसान भूखों मरने लगे।
1: बाप रे,
0: बहुत जुल्म किए उन्होंने।
2: अब दूसरे के लिए कपड़ा नहीं भरेंगे वाले।
3: नो नो नो, हम तुमको उस लायक नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी उंगली ही तोड़ेगा। यस गेट दैट, यस। हम तुमको एक बार फिर बोलता है, तुम लोग सिर्फ हमारा वास्ते काम करने का और किसी का वास्ते नहीं।
2: काम दोगे तो हम दूसरों को कपड़ा तो भेजेंगे वाले।
3: काम हम तुमको ठीक समझेगा वही देगा, जो इनकार करेगा उसका यही हाल करेगा हम। ऐ इसका कपड़ा जला दो।
2: अरे
3: फायर
2: है,
3: फायर है, गो। ओके, यू सी टू इट, I'll break your karga, bloody karga, I'll break it. Yes, go.
4: मामा, अब हम क्या करेंगे मामा?
2: करेंगे क्या बेटा? अपने भाग को रोएंगे और क्या? अभी ये पालने के लिए कहीं मजूरी करेंगे? अब तक बुनकर थे, हम मजूर कहलाएंगे, मजूर कहलाएंगे।

0: देखा बेटा, ऐसे जुल्म और ज्यादतियों के दौर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, आम इंसान को उसका हक दिलाने के उद्देश्य से 1885 में कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ।
1: गुरुजी, काहे का जन्म हुआ?
0: अरे भाई, भारत के लोगों ने एक पार्टी बनाई, कांग्रेस।
1: अच्छा अच्छा, समझ गई, चुनाव वाली है ना।
0: चलो अच्छा अच्छा, यही समझ लो, फिर बाद में समझाऊंगा, तब बात और साफ हो जाएगी। तो हमारी लड़ाई अलग अलग तरीके से चलती रही, कहीं जुल्म का मुकाबला बंदूक से करने वाले क्रांतिकारी थे, तो कहीं अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाले गांधी जी और उनके अनुयायी। आखिर सैकड़ों सालों के बाद, सैकड़ों साल गुलाम रहने के बाद, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया।
1: ओह गुरुजी, आपने तो गांधी जी के साथ क्या कहा, उनके क्या?
0: वो अनुयायी।
1: अच्छा, इसका मतलब?
0: हाँ हाँ, अरे इसका मतलब है उनके साथ काम करने वाले, उनको अपना नेता मानने वाले।
1: अच्छा हाँ।
0: अच्छा, तो तुम्हें अपने आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाज सुनवाते हैं?
1: जी जी।
2: कितने बरस हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी, अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें।

0: अरे बाबा, तुम लोगों ने तो बड़ी देर लगा दी।
1: जमुनिया, अरे देख तो इधर,
0: क्या?
1: आज हम सारी डलियां और पंखा बेचकर आए हैं।
0: अरे वाह।
1: हाँ, तुम्हारे लिए चाक लाए हैं, चाक
0: अच्छा,
1: और थोड़ी सी रबड़ी भी बेटा, सब मिलकर चाय का बदल लेंगे, हैं?
0: जीभ चटोर हो तुम भी बाबा।
1: अरे कुछ भी कहो, पर रबड़ी तो रबड़ी है बेटा।
2: सच्ची माई, बहुत ही बढ़िया है। हलवाई ने तो थोड़ी सी वैसे मुझे दे दी खाली।
0: हाँ, अच्छा, चलो हाथ मुंह धो लो, गरम गरम रोटियां बना रही हूँ, खा लो।
2: काहू माई, ये बार बार हाथ धोने को क्यों कहती हो?
0: ताकि हाथ की गंदगी धुल जाए, साफ हो जाए और तुम बीमार ना पड़ो, है ना?
1: हाँ चिरैया बेटा, समझी?
2: हाँ, समझ
1: तो
2: गई।
1: तुम्हारी माई बड़ी ज्ञानी हो गई है। हाँ
0: बाबा, आज
1: हाँ
0: हमने जवाहरलाल नेहरू की आवाज सुनी, समझ में उतना तो नहीं आया, पर अच्छा बहुत लगा।
1: कहाँ सुन लिया रे चाचा नेहरू की आवाज? पता है बेटा,
0: क्या?
1: बच्चे उनको चाचा कहते थे। हाँ, वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे।
0: बाबा, वो
1: हाँ
0: गुरुजी ने रेडियो पर आज भी उन्होंने एक नाटक सुनवाया।
1: अच्छा,
0: बड़े जालिम थे ये अंग्रेज।
1: हाँ बेटा, बहुत ही बेरहम थे वो लोग। चल अब रोटी सेक बेटा।
0: अभी लो बाबा।
1: हाँ
0: गुरुजी प्रणाम।
3: प्रसन्न रहो बेटा, अब तुम्हारा उच्चारण भी ठीक हो रहा है। अच्छा लग रहा है तुम्हें?
0: क्या ठीक हो गया गुरुजी?
3: अरे भाई, जिस तरह शब्द को बोलना चाहिए वैसे ही बोल रही हो तुम। शब्द को बोलना ही उसका उच्चारण होता है।
0: ओ
3: शब्द और अंग

0: ज्ञान के साथ साथ जोड़ना घटाना भी करती रहो और शब्दों को मिलाकर वाक्य भी बनाओ। ये काम घर पर भी कर सकती हो तुम। यहां तुम्हें अपने देश की आजादी की कहानी सुनाऊंगा
1: जी,
0: अपने देश के बारे में बताऊंगा।
1: बहुत अच्छा गुरुजी।
0: तो बिटिया
1: जी,
0: कहीं एक तरफ आजादी की खुशी थी, कहीं देश अपने मुल्क के बंटवारे से जूझ रहा था। देश की एक बड़ी आबादी गांव में रहती थी। वे भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन की समस्याओं से ग्रस्त थी। एक मंजिल तो मिल गई थी, पर अभी कई मंजिलें पाना बाकी था। सच्ची आजादी पाने के लिए, देश को सुदृढ़ बनाने के लिए और मुल्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे देश के नेताओं ने बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में 26 जनवरी 1950 को भारत को एक नया संविधान दिया। इसमें हमारे देश के विकास के हर पहलू की बुनियाद है।
1: गुरुजी, देश का बंटवारा क्यों हुआ, किसने किया?
0: अब ये बात मैं तुम्हें कभी विस्तार से बताऊंगा
1: जी।
0: अभी तो ये समझ लो कि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति पर चल रहे थे और जाते जाते हिंदुस्तान पाकिस्तान बना गए, ताकि हम आपस में लड़ते रहें और आगे ना बढ़ें।
1: जाते जाते भी उन्होंने आपसी फूट का बीज बो दिया है ना।
0: हाँ बेटा, अब तुम्हें हम एक गाना सुनवाते हैं
1: जी गुरुजी।

0: कैसा लगा बेटा?
1: अब बहुत अच्छा लगा गुरुजी।
0: पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो बता देना
1: जी।
0: कहानी बड़ी है, धीरे से कहानी को सुनना पड़ेगा
1: जी,
0: तब समझ में आएगी
1: जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सुनाइए, मैं नहीं थकने वाली। हाँ आप थक जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है?
2: अरे थोड़ी सांस लेने दो बेचारी को। बेटी ये गुरुजी पढ़ाने के मामले में एक बार शुरू हो गए ना तो फिर थकने का नाम नहीं लेते। लो बिटिया पानी पी लो।
1: सच्ची गुरुजी?
0: अरे भाई तुम भी किसकी बातों में लग गई।
2: लो भाई हम तो चले, आप दोनों पढ़ो पढ़ाओ
1: जी।
0: हाँ तो आगे शुरू करें जमनिया
1: जी। गुरुजी
0: तो एक बार देश गणतंत्र बना तो फिर देश के विकास की योजनाएं एक के पीछे एक चल पड़ी। हर योजना देश को कुछ नया कुछ बेहतर देती रही, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री, चाहे इंदिरा गांधी। आजादी के शुरू के वर्षों में देश ने गजब की तरक्की की।
1: अरे वाह,
0: बड़े बड़े बांध बने, खेतों में सिंचाई के लिए पानी लाया गया, नहरें बनी, घर घर बिजली पहुंची, फैक्ट्री कारखाने बड़े बड़े

0: योग बने।
1: अच्छा,
0: आम आदमी की जरूरत की सभी चीजें अपने देश में ही बनने लगी। देश ने तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में भी दुनिया में बड़ा नाम कमाया। रेडियो, टेलीविजन, ये सब देश के कोने कोने में पहुंचने लगे। पर यह विकास बड़ी आसानी से हमारी छोली में नहीं आया। इसमें कई मुश्किलें सामने आई।
1: वो तो होता ही है, अच्छे काम में मुश्किलें तो होती हैं। क्या मुश्किलें आई गुरुजी?
0: देश में भयानक अकाल भी पड़ा। सूखा पड़ने से खेतों में अनाज नहीं था, लोग भूखों मरने लगे। तभी अपनी सूझबूझ से खेती पर ध्यान देते हुए हरित क्रांति आई। देश के अकाल को हमारे किसानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। खेत खलिहान लहलहा उठे। जो कदम चल चुके थे अब वो रुकने वाले नहीं थे। अब हमें खाने के लिए किसी की ओर हाथ नहीं फैलाना था। ये एक खुशहाल दौर था।
1: वाह गुरुजी, अब बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। उसी ने हमें, जिनके पास जमीन नहीं है, बंजर जमीन दी खेती करने के लिए। ये भी सोचा होगा सरकार ने, है ना?
0: सरकार ने तो अच्छा ही सोचा था बेटा। खैर चलो छोड़ो, मैं सोचता हूं आज के लिए बस इतना ही काफी है, हैं? क्यों?
1: ठीक है गुरुजी, फिर कल।
0: हाँ हाँ ठीक है।
1: प्रणाम गुरुजी।
0: प्रणाम प्रणाम, खुश रहो बेटिया।

0: ले चिरैया ले, अब देख तेरी माँ आ गई। हाँ
1: आज तो माई जल्दी आ गई।
2: पर आज बहुत सारा पढ़ाया गुरुजी ने।
1: अच्छा माई, क्या क्या पढ़ाया गुरुजी ने?
0: अरे तू नहीं पूछेगी तो भी वो बताएगी। पढ़ के आती है फिर हमें पढ़ाने लगती है।
2: चलो नहीं बताती, ठीक?
0: लगता है बिटिया रूठ गई।
2: तुम भी ना बाबा, आज उन्होंने बताया देश कैसे आजाद हुआ, आजादी के बाद कैसे देश की तरक्की हुई। शुरू में तो हालत बहुत खराब थी।
0: हाँ बिटिया, चल अब खाना खाते हैं, फिर तुम कहानी सुनाना हमें।
2: चलो बाबा ठीक है, पहले खाना ही खाते हैं।
0: हाँ। चल।
2: ओ बाबा, आज दिन भर डलिया और पंखे ही बनाएंगे।
0: ए ले, मैं भी कुछ मदद करता हूं। आज हाट भी नहीं है, चिड़िया नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक सो रही है क्या वो?
2: अरे हाँ, देखो तो बाबा अंदर।
0: देखता हूं बेटा। अरे चिड़िया बिटिया, आज इतनी देर तक कैसे सो रही है? उठो उठो बेटा उठो। अरे देखो तो कितना दिन निकल आया है।
1: नहीं हमको नहीं उठना बाबा।
0: उठो बेटा उठो, दातुन करके कुछ खा लो बेटा।
1: सिर पिर रहा है बाबा।
0: हैं? अरे दिखा तो मेरे को। अरे देह गरम है इसकी तो, माथा भी गरम है। अरे अरे बुखार लग रहा है इसको।
2: का हुआ बाबा, किसको बुखार है?
0: अरे बिटिया चिरैया को।
2: देखूं तो हाँ लगता तो है बुखार है, मैं सिर दबा देती हूँ। हाँ बाबा
0: हाँ,
2: तुम देखो कोई दवाई मिल जाए तो।
0: हाँ जी ठीक है, मैं वैद्य जी के पास जाता हूँ।
2: जी
0: राम राम वैद्य जी।
3: अरे अरे झुलन, अरे राम राम भाई, आओ आओ आओ, इधर कैसे आए?
0: अरे वैद्य जी, प्यासा ही कुएं के पास जाता है। हमारी चिरैया बिटिया को बुखार आ गया है, सिर भी बहुत दुख रहा है उसका, कोनो अच्छा। दवा हो तो दे दो।
3: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम जरा बैठो।
0: अच्छा
3: बैठो, ये लो ये लो, ये चार पुड़िया हैं। हाँ इन्हें उबाल कर एक एक पुड़िया गुड़ मिलाकर छान कर पिला देना।
0: अच्छा
3: समझ गए, ये हाँ। काढ़ा है, काढ़ा बहुत असरदार होता है। हाँ
0: वैद्य जी हाँ। कितने पैसे दे दूं?
3: अरे भाई देखो, ये काढ़ा तो मैं यहीं के पौधे तोड़कर बनाता हूँ। हाँ इस तो इसके तो पैसे लगते नहीं। हाँ कभी मन हो तो एक आध डलिए पंखा दे जाना।
0: जी क्यों नहीं जी।
3: अच्छा अभी तो जाओ जल्दी से जाकर उबालो, अच्छे से उबालना।
0: हाँ
3: 10-15 मिनट।
0: हाँ
3: फिर गुड़ मिलाना।
0: अच्छा
3: हल्का गरम गरम पिला देना।
0: हाँ
3: ईश्वर ने चाहा तो बिटिया जल्दी ठीक हो जाएगी।
0: हाँ
3: सुबह शाम 2 बार पिलाना।
0: हाँ हाँ बेटे जी, बड़ी कृपा है आपकी।
3: अरे कृपा तो ऊपर वाले की है भाई, मेहनत हमारी है।
0: वो तो बेटे जी है ये, प्रणाम करता
3: हूँ। चलो प्रणाम प्रणाम।
0: चल रहा हूँ।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जमुनिया का 8वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित खेलो इंडिया संवाद का उद्देश्य युवाओं को देश की खेल यात्रा से जोड़ना, उनकी आकांक्षाओं को साझा करना और एक सशक्त युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के लिए विचार प्रस्तुत करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ओणम के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ओणम नई फसल और प्रकृति के प्रति आभार का पर्व है। यह भारत की समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना को भी दर्शाता है। इधर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी सांस्कृतिक विरासत और अन्नदाताओं की समृद्धि के उत्सव ओणम के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत न्यूयॉर्क में शनिवार को आयोजित होने वाले हिंदू समुदाय सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमरीका पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य एकता, नागरिक जिम्मेदारी और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देना है। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के द्वितीय अतिरिक्त चरण की तिथियां बढ़ा दी हैं। विद्यार्थी 30 अगस्त तक पंजीयन और आवेदन कर सकेंगे, जबकि सीट आवंटन के बाद प्रवेश शुल्क 8 सितंबर तक जमा किया जा सकेगा। और मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया और सागर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन तक भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। योगदान है आकाशवाणी ग्वालियर का।

महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी सखियों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी सखी निरंजना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों कैसी हैं आप? मुझे मालूम है आप सभी बारिश की फुहारों और भोले बाबा की भक्ति और आराधना के साथ सावन का आनंद ले रही हैं, साथ ही तैयारी कर रही होंगी भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार यानी रक्षाबंधन की। सखियों त्योहारों के सिलसिले में आज है हमारे मुस्लिम भाई बहनों के भाईचारे का त्यौहार मिलादुन्नबी। मिलादुन्नबी इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाने वाला एक पवित्र त्यौहार है, जिसे अमन, प्रेम, एकता और भाईचारे के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसमें लोग पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को याद करते हैं, जो मानवता, दया और मेल मिलाप का संदेश देती हैं। इस अवसर पर कई जगहों पर शांतिपूर्ण जुलूस निकाले जाते हैं, जिनमें आपसी भाईचारे का संदेश दिया जाता है। मस्जिदों और घरों में विशेष प्रार्थनाएं होती है, कुरान की तिलावत की जाती है और गरीबों को दान दिया जाता है। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन, उनकी शिक्षाओं और आध्यात्मिक विरासत को याद किया जाता है। सखियों मुस्लिम समुदाय के लिए ये दिन केवल उत्सव का नहीं बल्कि आत्मचिंतन और इबादत का प्रतीक है।

0: नेत्रदान महादान। डॉक्टर निखिल जैन से बातचीत कर रही हैं धमित्रा, तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: नेत्रदान महादान, इस विषय पर विस्तृत बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर निखिल जैन को, जो नेत्र रोग एवं कॉर्निया विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैम।
1: सर, ये नेत्रदान क्या है, इस पर थोड़ा सा बताइए आप।
2: जैसा आपने बताया, नेत्रदान पखवाड़ा जो कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलता है, उसमें हम नेत्रदान यानी कि एक व्यक्ति जब मृत हो जाता है तब अपनी आँखें दान करता है, जिसको हम नेत्रदान कहते हैं। इस चीज़ को समझने के में बहुत सारे लोगों में काफ़ी सारी शंकाएं हैं और उससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इसको थोड़ा सा कम करती हैं, लोगों के अंदर एक भ्रांति पैदा करती हैं। आपके माध्यम से अपने लिसनर्स को यही बताना चाहूँगा कि एक्चुअली होता क्या है। देखिए, नेत्रदान ऐसा होता है, जो हमारी आँखें हैं, एक इंसान की दो आँखें होती हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तब वो इंसान की आँखें 6 घंटे के अंदर अगर हम उसके शरीर से निकाल लें प्रॉपर तरीके से, तो हम उन आँखों का उपयोग कर सकते हैं उन मरीजों के लिए जिनको कि नेत्रदान पुतली के उपचार की आवश्यकता है।
1: सर, नेत्रदान में क्या पूरी आँखों को निकाला जाता है या सिर्फ कुछ पार्ट को उसमें निकालते हैं?
2: जी देखिए, ज़्यादातर केसेस में हम पूरी आँख ही निकालते हैं
1: जी,
2: क्योंकि कुछ जगहों पे या कुछ स्पेशल सिचुएशन में एक पार्ट निकाला जा सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में हम पूरी आँख निकालते हैं, दोनों आँखें निकालते हैं।
1: एक व्यक्ति के नेत्रदान से कितने लोगों को लाभ मिल सकता है?
2: जी, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। एक इंसान अपनी दो आँखें जो दान करता है उससे करीबन 4 से 5 लोगों के उपचार का प्रबंध हो जाता है
1: जी।
2: जैसे कि आप पूछेंगे दो आँखों से कैसे, देखिए ऐसा होता है जब पूरी आँख निकाली जाती है तो एक बहुत कॉमन लोगों में कन्फ्यूजन भी है कि हम वो पूरी आँख लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम निकालते पूरी आँख है, लेकिन आँख के अलग अलग पोर्शंस होते हैं, जैसे कि काली पुतली, सफ़ेद पुतली। तो जिस इंसान को, जैसे किसी मरीज की सफ़ेद काली पुतली में धब्बा आ गया है या वो किसी इन्फेक्शन के कारण सफ़ेद पड़ गई है, तो हमें सिर्फ उसकी काली पुतली बदलनी होती, पूरी आँख नहीं बदली जाती है। तो अब उस दान की हुई आँख का हम सिर्फ काली पुतली निकाल के उस मरीज को हम प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो ऐसे 2 काली पुतली लग गई, फिर जो सफ़ेद पुतली बचती है वो भी कई रोगों में जैसे गल जाती है या फट गई है, तो हम उस सफ़ेद पुतली को 2 से 3 लोगों में आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे एक इंसान की दी हुई दो आँखें करीबन 4 से 5 लोगों को हितकारी होती हैं।
1: नहीं, बहुत अच्छा बताया कि उससे कम से कम 4 से 5 लोगों को हम लाभ पहुंचा सकते हैं, वो इस खूबसूरत दुनिया को वो देख सकते हैं। ये भी होता है कि क्या चश्मा लगाने वाला व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है, क्योंकि अमूमन आजकल तो हर कोई चश्मा लगा रहा है, तो ये भी एक
2: जी बिल्कुल आपने सही किया और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें तो चश्मा लग गया, क्या हम नेत्रदान कर सकते हैं? तो मैं यही बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जी हाँ, बिल्कुल जिनको चश्मा लगाया है वो लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदान के लिए कोई भी इंसान जो कि नेचुरल कॉजेज से जिसकी डेथ हुई है, चाहे वो किसी भी एज का हो, वो नेत्रदान कर सकता है।
1: नेत्रदान करने की किसी व्यक्ति की इच्छा है तो उस व्यक्ति को कहाँ जाना चाहिए और इसका आगे का क्या प्रोसेस होता है, कोई रजिस्ट्रेशन होता है?
2: जी मैम, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर ये बहुत अच्छी भावना आई है कि जब अभी मैं जीवित हूँ लेकिन मैं मृत्यु उपरांत अपनी दोनों आँखें दान करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल उनके लिए एक तरीका है। जैसे जिस किसी के मन में ये आए तो कई सारे तरीकों से वो अपना ये संदेश तक पहुँचा सकता है या अपनी जहाँ पे वो रहते हैं। तो सबसे पहले जिस भी एरिया में वो रहते हैं वहाँ अगर कोई मेडिकल कॉलेज है तो वो मेडिकल कॉलेज में जो कि नेत्र रोग डिपार्टमेंट होता है वहाँ जाके अपनी शिक्षा को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी कंसर्न डॉक्टर्स होंगे वो आपको एक फॉर्म देंगे जिसको आपको भर के देना होता है, जिसको कि प्लेज फॉर्म कहते हैं। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और उस हिसाब से आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो ऐसे केस में जब भी कभी आपकी ऐसी मृत्यु होती है तो आपके परिजनों को बस उस डिपार्टमेंट में एक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, बाकी सारी चीज़ें डिपार्टमेंट द्वारा मैनेज कर ली जाती हैं। और आजकल तो खैर इंटरनेट का ज़माना है, तो जैसा कि अगर आप नहीं जान सकते या असमर्थ हैं, आपके आसपास मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो हमारी भारत सरकार की एक वेबसाइट है pledge.mygov.in। इस वेबसाइट

0: पर जाके भी आप अपनी आँख नेत्रदान का प्लेज कर सकते हैं। वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा जिससे कि मृत्यु उपरांत इन सब चीज़ों में कोई परेशानी नहीं आती है।
1: डॉक्टर साहब ये बताइए कि मृत्यु के कितने समय के अंदर नेत्रदान कराया जा सकता है?
0: देखिए मृत्यु उपरांत 6 घंटे के अंदर हमें मृत व्यक्ति के शरीर से नेत्र निकालने पड़ते हैं, तब तक ही वो वैलिड रहते हैं। उसके बाद उन आँखों को एक प्रिजर्वेटिव में रख के स्टोर किया जाता है और तुरंत ही उसको ज़रूरत है वहाँ भेज दिया जाता है।
1: जी सर, कई बार ये भी होता है कि व्यक्ति ने नेत्रदान का संकल्प ले लिया और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या इसमें परिवार के लोगों की भी अनुमति की आवश्यकता होती है या उसकी अनुमति के बगैर भी नेत्रदान किया जा सकता है?
0: परिवार की सहमति, अगर किसी इंसान ने पहले अपनी ऐसी इच्छा प्रस्तुत की है या उसने ऐसा कोई प्लेज फॉर्म भर रखा है
1: जी,
0: तो उस केस में जो परिवार वाले हैं उनको मात्र सूचना प्रेषित करनी होती है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। अगर किसी ने पहले ऐसा प्लेज फॉर्म नहीं भरा है उस और मृत्यु से पहले उसने अपने परिवारजनों को सिर्फ इस इच्छा के बारे में बताया है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो परिवार वाले हैं वो अपनी आपसी सहमति से भी उनका नेत्रदान करवा सकते हैं।
1: सर मान लीजिए किसी बेटे ने अपने पिता की आंखों का दान करवाया है, तो क्या वो बाद में पता कर सकता है कि भाई हमारे पिताजी की आंख किसको लगी है?
0: मैम एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। देखिए नेत्रदान करना बहुत अच्छी बहुत पुण्य का काम है
1: जी जी,
0: लेकिन ये एक प्रोफेशनल सीक्रेसी एक पेशेंट सीक्रेसी की बात होती है कि ये चीज़ें कभी भी बाहर डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं।
1: सर नेत्रदान बहुत ही पुण्य का काम है, लेकिन फिर भी आप मुझे बेहतर बता सकते हैं कि ये कितने लोग नेत्रदान करने के लिए आगे आते हैं?
0: मैम देखिए यही हमारी थोड़ी सी स्थिति हमें बताती है दर्शाती है कि जिन लोगों को एक नई पुतली की आवश्यकता है उनका नंबर बहुत ज़्यादा है लेकिन दान करने वाले बेहद कम हैं
1: जी।
0: और इसका कहीं ना कहीं मैं कारण मानता हूँ इसके लिए जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है
1: जी।
0: इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नेत्रदान पखवाड़ा शुरू किया गया है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस आपके माध्यम और सभी माध्यमों से उन तक ये बात पहुंचा सकें कि जो भी भ्रांतियां चल रही हैं नेत्रदान से संबंधित उनको हम ख़त्म कर सकें या कम कर सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएं और नेत्रदान करें, जिससे जो हमारे मरीज जिनको की आवश्यकता है नेत्रों की उनको हम उपचार कर पाएं जिनका।
1: सर आपने भ्रांतियों की बात की, तो किस तरीके की भ्रांतियाँ अमूमन सुनने में आती हैं इसमें?
0: देखिए भ्रांतियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन कुछ जो कॉमनली लोग कहते हैं यही कि जैसे अगर किसी इंसान ने मृत्यु उपरांत अपनी आँखें दान करी हैं तो उसको अगले जन्म में आँखें मिलेंगी ही नहीं, वो अंधा पैदा होगा
1: जी, जी, जी।
0: लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि नेत्रदान एक बहुत ही पुण्य का काम है
1: जी, जी।
0: और पुण्य वाले व्यक्ति को भगवान ऐसा कभी नहीं करेगा तो ये एक पूरी भ्रांति है। और उसमें एक जैसा ये होता है कुछ लोगों को लगता है कि अगर हमने नेत्रदान कराया है तो कोई उनसे मिलने आएगा तो आंखें बहुत ही अजीब सी दिखेंगी या वो लोग डर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब नेत्रदान करवाया जाता है उसके बाद आपका शरीर बिल्कुल वैसा ही दिखता है, आंखें बंद ही होती हैं और ऐसा कोई भी नहीं होता कि वो कोई इंसान डर जाए ऐसा देख के। और जब नेत्रदान कराया जाता है तो बिल्कुल ट्रेंड स्टाफ होता है उसके माध्यम से कराया जाता है।
1: सर नेत्रदान के लिए लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: नेत्रदान से संबंधित संदेश से पहले मैं कुछ आपके साथ हमारे फिगर्स में कुछ साझा करना चाहूँगा जिससे आपको उसकी गंभीरता का थोड़ा सा एहसास होगा
1: जी।
0: जैसा कि अभी कुछ स्टडीज़ ने पाया है कि हमारे देश भारत में करीबन 1 मिलियन से 1.2 मिलियन लोगों को कॉर्नियल ट्रांसप्लांट यानी कि पुतली प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, मतलब इतने सारे मरीज हैं जो इंतज़ार में हैं और उसका सिर्फ 25-30% तक ही लोगों का ऑपरेशन हो पा रहा है, यानी कि 65-70% मरीजों को पुतली मिल ही नहीं पा रही है। क्योंकि जो आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उनके अनुसार करीबन 45,000 से 50,000 तक ही कॉर्निया यानी कि जो नेत्रदान होते हैं जिनमें से कि सिर्फ 30,000 तक जो अच्छे कॉर्निया होते हैं वो ही यूज़ किए जा पाते हैं, बाकी 15,000 कॉर्निया वेस्ट हो जाते हैं या वो लगाने लायक नहीं होते हैं। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि आवश्यकता कितनी ज़्यादा है और नेत्रदान कितने कम हो रहे
1: कम
0: हैं।
1: हो रहे
0: तो
1: हैं।
0: इसलिए मेरा आपके माध्यम से ये सब हमारे सारे श्रोतागण से अनुरोध है कि कोई भी भ्रांति को ना सुनते हुए आप अपने आसपास किसी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ से या किसी कॉर्निया स्पेशलिस्ट से जाके अपनी कोई भी डाउट या भ्रांति को क्लियर करके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर नेत्रदान का प्लेज करें, जिससे कि हमारे जो देश में जिन लोगों को ज़रूरत है हम उनको के उपचार में हम सहायता कर पाएँ, ताकि जब उन लोगों को नेत्र मिले तो वो भी हमारी तरह इस खूबसूरत दुनिया को देख सकें।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जितने कॉर्निया की आवश्यकता है उतने लोग दान नहीं कर रहे हैं कॉर्निया को, लेकिन जो दान हो भी रहे हैं उनमें से भी कई प्रत्यारोपित नहीं हो पाते हैं, तो इसका क्या कारण है?
0: कई सारे कारणों से, जैसे अगर थोड़ा सा विलंब हो जाए नेत्र दान कराने में,
1: जी
0: या फिर जो कॉर्निया की कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो कुछ कॉर्निया ऐसे कॉर्नियाज बच जाते हैं जो कि हम प्रत्यारोपित नहीं कर पाते हैं।
1: जी
0: तो ऐसे कॉर्नियाज हैं उनका भी हम उपयोग करते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी रिसर्च के लिए और अपनी टीचिंग के लिए, जिससे कि आगे हमें और उसके एडवांस टेक्निक्स का हम परीक्षण कर सकते हैं। मैं अपने श्रोतागणों से यही कहना चाहूँगा कि नेत्रदान एक महादान है, एक बहुत ही पुण्य का काम है। आपके द्वारा किया गया नेत्रदान कईयों की ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकता है और वो आपकी दान की हुई आँखों से इस सुंदर दुनिया को दोबारा देख सकते हैं। तो आगे बढ़िए मेरे दोस्तों और नेत्रदान का संकल्प करें।
1: डॉक्टर साहब, आपने नेत्रदान महादान के विषय में इतनी अच्छी जानकारी दी, पूरी उम्मीद है कि इस जानकारी का हमारे जो श्रोता हैं वो जरूर इस पर अमल करेंगे, नेत्रदान करने के लिए वो आगे आएंगे, और इतनी अच्छी जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: सखियों, अभी आपने भेंटवार्ता सुनी नेत्रदान महादान। डॉक्टर निखिल जैन से बातचीत कर रही थी धमित्रा। अब सखियों, हम चर्चा करेंगे कृषकों का त्योहार ओणम पर। हर साल जब केरल में मानसूनी हवाएं चलने लगती हैं, तो वातावरण में एक जादुई एहसास जाग उठता है। गलियां ताजे फूलों की खुशबू से महक उठती हैं, घर लाइटों से जगमगा जाते हैं। इसी बीच परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होकर केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम मनाते हैं। सखियों, ये केरल का 10 दिनों तक चलने वाला फसल उत्सव है, जो मलयाली कैलेंडर के चिंगम महीने यानी अगस्त सितंबर के दौरान मनाया जाता है। ये त्योहार महान असुर राजा महाबली के स्वागत और उनकी न्यायप्रियता की याद में मनाया जाता है। सखियों, ओणम की मुख्य परंपराओं में सबसे पहले आता है पुक्कलम, जिसमें घरों के सामने फूलों से सुंदर रंगोली बनाई जाती है। फिर आता है ओण सग्या, जिसमें शाकाहारी और पारंपरिक भोज केले के पत्ते पर परोसा जाता है। इसमें लगभग 26 से अधिक पकवान होते हैं, और ये केवल भोजन नहीं समानता का प्रतीक है, जिसमें सभी लोग जमीन पर बैठकर एक साथ भोजन करते हैं। इसके बाद वल्लम कली यानी स्नेक बोट्स, जो कि प्रसिद्ध और रोमांचक सर्प नाव दौड़ होती है। फिर थिरुवथिरावली, जिसमें महिलाएं सफेद और सुनहरी केरल की साड़ियों में सजी लयबद्ध समूह नृत्य करते। इसके बाद आता है पुली कली द टाइगर डांस, जिसमें कलाकार अपने शरीर को बाघ और तेंदुओं की तरह रंगते हैं और गलियों में नृत्य करते हैं। सखियों, ओणम मलयाली नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और यह समाज में प्रेम, भाईचारे और समरसता का संदेश देता है।

सखियों, अब हम बात करेंगे मानवता, करुणा और निस्वार्थ सेवा की मूरत मदर टेरेसा के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, असहायों और बीमारों की सेवा में लगा दिया। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। उन्होंने कोलकाता में रहकर पूरी दुनिया को प्रेम और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कम उम्र में नन बनकर 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की नींव रखी। उन्होंने अनाथों, कुष्ठ रोगियों, लाबारिस लोगों के लिए निर्मल हृदय नामक आश्रय गृह बनाया। मानवता की सेवा के लिए उन्हें 1979 में विश्व प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार मिला। सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया और फिर उन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। सखियों, मदर टेरेसा का जीवन हमें सच्चा धर्म और मानवता की सेवा करना सिखाता है। उनका काम आज पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वो जरूर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचारों को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सिस्टर्स आज भी जीवित रखे हुए हैं। सखियों, आपसे चर्चा करते करते अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो आप सभी

0: अपना अपने परिवार का ध्यान रखते हुए त्योहारों का आनंद लीजिए, खुश रहिए और अपनी सखी निरंजना को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
4: बड़े अच्छे लगते हैं
5: क्या
4: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
5: और
6: आकाशवाणी इंदौर। सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
7: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
8: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
9: आकाशवाणी इंदौर।
8: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाते हैं जहान सिंह कुशवाहा के गाए लोक भजन। योगदान है आकाशवाणी ग्वालियर का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में जहान सिंह कुशवाहा के गाए लोकगीत। योगदान था आकाशवाणी ग्वालियर का। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: श्रोताओं, FM 101.6 MHz पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती के इंदौर केंद्र से प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से सुनिए साइबर जागरूकता पर केंद्रित सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस कार्यक्रम में IT विशेषज्ञ, स्टेट साइबर सेल इंदौर के आला अधिकारी, साइबर ठगी से जागरूक कर रहे संस्थान के विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित होते हैं। तो आप भी सीधे हमारे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो जुड़िए हमारे कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान से और अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान जानिए। सुनते रहिए विविध भारती का इंदौर केंद्र FM 101.6 MHz पर और कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से 12:00 तक।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल तो पागल है से। ये गीत गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है उत्तम सिंह का।

कार्यक्रम के अंतिम पेशकश फिल्म मैंने प्यार किया से सुमधुर आवाज लता मंगेशकर की, गीत रचना है असद भोपाली की और संगीत है राम लक्ष्मण का।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेज के युवाओं की भागीदारी रहेगी। ये संवाद खेल, युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। ये संवाद खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा सहित 5 विषयों पर केंद्रित होगा। खेलो इंडिया संवाद का मुख्य उद्देश्य युवाओं को देश की खेल यात्रा से जोड़ना, उनकी आकांक्षाओं को साझा करना और एक सशक्त युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के लिए विचार प्रस्तुत करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 4थी विनिर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे। 450 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से स्थापित इस इकाई के जरिए 2000 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नई इकाई में आधुनिक स्वचालित पैकेजिंग प्रणाली और 10 मीट्रिक टन प्रति घंटे क्षमता वाला सेपोनिफिकेशन संयंत्र स्थापित किया गया है। इसके विस्तार के बाद राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 185 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जीएसटी राजस्व मिलने का अनुमान है। नई फसल और प्रकृति के प्रति आभार का पर्व ओणम आज देशभर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व भारत की समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओणम के अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि खुशियों और उल्लास का ये त्यौहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। श्री मोदी ने कामना की कि ये त्यौहार लोगों में खुशी, एकता और समृद्धि की भावना को और मजबूत करेगा। पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ

जा रहा है। इस अवसर पर आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, साथ ही मिलाद जुलूस भी इस दौरान निकाले जा रहे हैं। राज्य के छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों से भी ईद मिलादुन्नबी के मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। ई श्रम पोर्टल के शुभारंभ के आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में अगले 2 दिन भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में तेज बारिश का दौर रहने की संभावना है। मौसम केंद्र भोपाल ने आज भिंड, दतिया और सागर जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम और शहडोल संभाग के कुछ जिलों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हो सकती है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता कार्यक्रम के अंतर्गत खरगोन जिले में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान आमजन को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। शिवपुरी जिले में खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। अगर मालवा में कल मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा महर्षि अरविंद जयंती पर जिला स्तरीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। झाबुआ में कल जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के सिकल सेल कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम और आयुष्मान भारत कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। और नीमच में समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान सहित विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया, 2500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
2: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
2: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
1: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
3: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
4: हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश के प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
4: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सुलिन, क्लूवेंटलेट और सेफिक्साइमिम जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिर दर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEPG और AICE PhD 2026 परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम

0: परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दासगुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरनमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलाग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित है। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक

0: औद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुध ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने 0 से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आन मिलो सजना से। सुमधुर आवाज थी लता मंगेशकर की, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस मधुर से गीत को पसंद करने वाले श्रोता थे घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। इसी गीत को सुनना चाहा था पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। इसी गीत को पसंद किया था दतरेंगी छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा ने, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी ने, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू ने। तो आप सभी ने इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुना कार्यक्रम का ये गीत। और अब अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म आनंद से, और आवाज़ है मुकेश की, शब्द रचना है गुलजार की और संगीत है शैल चौधरी का।

अगली पेशकश फिल्म धरती से, सुमधुर आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। पसंद करने वाले श्रोता हैं कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। इसी गीत को पसंद किया है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म गीत से। स्वर हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर के। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और इस गीत को संगीत में बनाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को पसंद किया है सभी श्रोताओं ने। सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश चौहान, शिव प्रकाश चौहान और वेद प्रकाश चौहान ने। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, एलपी, रोहित, लल्लूराम, पूरन, रोहित, छोटू, गुड्डन और इनका समस्त परिवार। आप सभी की पसंद पर सुनते ये प्यारा सा गीत।

हीर रांझा, आइए अब हम आपको सुनाते हैं इस फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में शब्द रचना है कैफी आजमी की और संगीत है मदन मोहन का। ये गीत पसंद किया है आप सभी ने। जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मीन और प्रयागराज भट्ट ने इसी गीत को सुनने वाले श्रोता हैं ग्राम खकल तहसील कोच जिला जालौन से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और इनका पूरा परिवार। आइए सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म है जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। शब्द रचना है मजरूह की और संगीत में बनाया है इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका और नूपुर ने।

0: इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों के युवाओं की भागीदारी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 4थी विनिर्माण इकाई का शुभारंभ कर रहे हैं। 450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित इस इकाई के जरिए 2000 से अधिक नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ई श्रम पोर्टल की शुरुआत के आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडरों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ई के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। हालांकि IMA ने यह भी कहा है कि अधिकतर संक्रमण हल्के हुआ करते हैं और अपने आप ठीक हो जाया करते हैं, इसलिए ज्यादा घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। और प्रदेश में अगले 2-3 दिन भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभागों में तेज बारिश होने का दौर रहने की संभावना है। मौसम केंद्र भोपाल ने आज भिंड, दतिया और सागर जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी भोपाल है। श्रोताओं, अब हम आपको बता दें आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 5:02 पर आप सुनेगा युवाओं का कार्यक्रम युवाणी, योगदान रहेगा आकाशवाणी ग्वालियर का। फिल्म संगीत आप सुनेगा 5:33 पर शाम 6:30 और 8:15 पर। शाम 6:00 आप सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। शाम 7:21 पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम। रात 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में। रात्रि 9:30 कार्यक्रम चर्चा का विषय है। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10:00 आप सुनेगा नाटक जेब कतरा। इस नाटक के लेखक हैं सादत हसन मंटो और प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ढोंडियाल। रात 10:30 आप सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज आप सुनेंगे श्रुति अधिकारी का संतूर वादन, राग होगा बसंत मुखर्जी। श्रोताओं, ये थे आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:02 हो चुके हैं। मीडियम वेव पर अब ये सभा संपन्न होती है। शाम 5:02 पर इसी मीटर पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इसी बीच हमारा प्रसारण डीटीएच के ऑडियो चैनल पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं, अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं को आकाशवाणी परिवार की ओर से ईद मिलादुन्नबी और ओणम पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए श्रोताओं, सभा की शुरुआत कर रहे हैं युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी से।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त माधवी।
0: तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज ढेर सारे त्यौहार मनाए जा रहे हैं और त्यौहारों के अलावा भी आज के दिन में ना बहुत सारी खास चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम आपसे बातचीत करेंगे। और साथ ही दोस्तों, आज का जो स्पेशल सेगमेंट होता है हमारा एक ही फिल्म से, वो भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। और जो त्यौहार आने वाला है हमारा, एक उससे रिलेटेड ये फिल्म है। तो आप ज़रा सोच कर रखिए कि हम किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माधवी हमारे आज के दो प्रश्नों के साथ।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे दो प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर आपको कार्यक्रम के अंत में देते हैं। तो आज के हमारे जो दो प्रश्न हैं वो है, ये है कि ओणम मुख्य रूप से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है।
0: और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है कि ओणम किस राज्य की स्मृति में बनाया जाता है। दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ के रखिए, कार्यक्रम के अंत में हम इनके उत्तर आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज 26 अगस्त है और ये दिन खास इसलिए है क्योंकि आज है मदर टेरेसा जयंती।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, आज ही के दिन यानी कि आज का ये जो बहुत पावन दिन है, उसी दिन शहर में एक बच्ची का जन्म हुआ था। और वो शहर का नाम क्या था श्रद्धा?
0: ये शहर का नाम था स्कोपजे।
1: इस शहर में एक बच्ची का जन्म हुआ जो आगे चल के पूरे दुनिया के लिए क्या बन गई श्रद्धा?
0: मदर टेरेसा। माधवी को ना मुझसे सवाल पूछने की बड़ी आदत है टीचर जैसे। तो बहुत कम लोगों को पता है ये माधवी कि उनका असली नाम मदर टेरेसा नहीं था, उनका जन्म ना अलग नाम से हुआ था। उनका नाम था एग्नेस गोंजा बियाजियू।
1: सही कहा तुमने, और अच्छा है कि उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया क्योंकि ये नाम हम कभी याद नहीं रख पाते। वो हर जगह जहाँ वो पैदा हुई थी वहाँ पर मैसेडोनिया में है, वो जगह जहाँ पे वो पैदा हुई थी वो जगह मैसेडोनिया में स्थित है ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो। लेकिन उनकी असली कहानी जहाँ शुरू हुई उस जगह का नाम भारत है।
0: हाँ, और तुम्हें ये बात पता है कि बहुत छोटी उम्र में उन्होंने ये ठान लिया था कि उन्हें एक नन बनना है और लोगों की सेवा करनी है। और फिर 1929 में वो भारत आ गई।
1: भारत आकर उन्होंने कलकत्ता यानी आज का कोलकाता को अपना घर बना लिया। वहाँ उन्होंने पहले एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया।
0: लेकिन माधवी, असली मोड़ तो तब आया जब उन्होंने कलकत्ता की गलियों में गरीबी, बीमारी और भूख से जूझते लोगों को देखा अपनी आंखों से।
1: और उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि वो सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सीधे उन लोगों की सेवा करेगी जिनकी तरफ शायद ही किसी का ध्यान कभी जाता है।
0: और यहीं से शुरू हुई एक नई यात्रा। 1950 में उन्होंने बनाई मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की एक संस्था।
1: ये संस्था आज भी दुनिया भर में काम करती है, गरीबों को खाना देती है, बीमारों की देखभाल करती है, अनाथ बच्चों को सहारा देती है और जिनका कोई नहीं होता उनका सहारा बनती है।
0: और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है दोस्तों? मदर टेरेसा किसी धर्म, जाति या देश को नहीं देखती थी, उनके लिए हर इंसान बराबर था।
1: बिल्कुल सही कह रही हो, वो कहती थी कि हर इंसान में भगवान का रूप है और हर किसी की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है।
0: और शायद इसीलिए उनका नाम मदर टेरेसा रखा गया, उन्हें इस नाम से पॉपुलैरिटी मिली। क्यों?
1: बिल्कुल सही कह रही हो।
0: और उनकी सेवा और त्याग को देखकर ना 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है।
1: और सबसे प्यारी बात ये रही कि उन्होंने पुरस्कार समारोह की पार्टी पर होने वाला खर्च भी बचाकर गरीबों की सेवा में लगा दिया था।
0: सोचो कितना बड़ा दिल रहा होगा उनका, पैसे या शोहरत की कोई चाहत नहीं, बस सेवा और प्यार।
1: और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया उन्हें गरीबों की माँ या मदर टेरेसा कहकर याद रखती है।
0: भारत सरकार ने भी उन्हें 1980 में देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न देकर सम्मानित किया था।
1: और जब उनका निधन हुआ तो पूरी दुनिया ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनका काम आज भी जारी है, उनकी संस्था आज भी जारी है।
0: दोस्तों, मदर टेरेसा एक बहुत मशहूर कथन है, उन्होंने ये बात कही थी, हम सब बड़े काम नहीं कर सकते लेकिन छोटे छोटे काम अगर हम एक साथ मिलकर करें और बहुत प्यार से करें तो वो बहुत बड़े बन सकते हैं।
1: कितनी सच्ची बात है ये श्रद्धा, हमें दुनिया बदलने के लिए कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस अपने आसपास किसी की थोड़ी मदद कर देना, उसकी ज़रूरत के समय पे उसके काम आ जाना, यही सबसे बड़ा काम होता है।
0: तो दोस्तों, आज मदर टेरेसा जयंती के मौके पर हम सभी एक छोटा सा वादा कर सकते हैं अपने आप से कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करें और किसी के मुस्कुराने की वजह बन जाए।
1: क्योंकि सेवा के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है, बस दिल बड़ा होना चाहिए।
0: तो दोस्तों, आज के दिन मदर टेरेसा को श्रद्धांजलि देते हुए हम उनकी सेवा भावना को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420-2233 पर कॉल करें।
5: दोस्तों, मैंने कहा था ना कि त्योहारों का जो मौसम होता है वो शुरू हो गया है, और केरल में इन दिनों माहौल बिल्कुल अलग ही रंग में रंगा हुआ है, क्योंकि आज है ओणम का त्योहार।
6: बिल्कुल सही कह रही हो तुम श्रद्धा, सबको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हम ज़्यादा ओणम सेलिब्रेट होते हुए देखते नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे एक फेस्टिविटी नहीं हो वहाँ के लोगों को इसके बारे में पता ना हो।
5: बिल्कुल सही कहा।
6: तो ओनम केरल का सबसे बड़ा और सबसे खास त्यौहार माना जाता है। ये करीब 10 दिन तक चलता है और पूरे राज्य में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
5: और माधवी, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ओनम असल में एक फसल का उत्सव है। ये मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में मनाया जाता है, जो अगस्त सितंबर के आसपास आता है,
6: और इसके पीछे एक बहुत सुंदर पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि ओनम राजा महाबली की याद में मनाया जाता है।
5: राजा महाबली की कहानी बहुत दिलचस्प है, और शायद आप सब लोगों ने बचपन में कभी ना कभी सुनी ही होगी। तो कहानी ऐसी है कि वो एक बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे, जिनके राज में हर कोई खुश और समृद्ध था।
6: लेकिन देवताओं को लगा कि राजा महाबली की शक्ति बहुत बढ़ गई है, तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और महाबली से 3 पग भूमि मांगी।
5: और महाबली ने बिना सोचे समझे 3 पग भूमि देने का वादा कर दिया। अब पहले पग में वामन भगवान ने पूरी पृथ्वी नाप ली। आप सोच रहे होंगे कैसी, क्योंकि वो छोटे से बौने से जो वामन भगवान थे, उन्होंने अपना कद इतना ऊँचा कर लिया की पूरी पृथ्वी उनके पैर के नीचे आ गई। तो पहले पैर में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे में आकाश, और तीसरे पग के लिए महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया।
6: इस त्याग और विनम्रता से खुश होकर भगवान विष्णु ने महाबली को हर साल अपनी प्रजा से मिलने आने का वरदान दिया, और यही दिन है ओणम का, जो मनाया जाता है इस खुशी में कि राजा महाबली अपने राज्य केरल लौटते हैं।
5: इसीलिए केरल के लोग बड़े प्यार से अपने घरों को सजाते हैं, ताकि अपने राजा का स्वागत कर सकें।
6: और इस सजावट का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है पूकलम, यानी फूलों से बनी हुई रंग बिरंगी रंगोलियां, जो हर घर आंगन में बनाई जाती है। अब देखो, इसमें टर्म अलग है श्रद्धा, लेकिन बात सेम है। हर जगह रंगोली होती है, चाहे हम गुजरात की बात करें, पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश या केरल।
5: बिल्कुल।

0: एकदम अलग है, लेकिन रंगोली के बिना हर त्योहार अधूरा है।
1: बिल्कुल सही कहा, मतलब ये हमारे इंडिया का कल्चर है, ओवरऑल कल्चर। और पुक्कलम की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर एक खास चीज़ ये है कि पुक्कलम ना डे वन से बनाना शुरू करते हैं और उसमें रोज़ रोज़ कुछ डिज़ाइंस ऐड करते जाते हैं, और ओणम के आखिरी दिन तक ये बहुत बड़ा और भव्य रूप ले लेता है।
0: इसके अलावा ओणम की शान है ओणम साध्या, यानी एक बहुत बड़ी सी पारंपरिक दावत जो केले के पत्ते पर परोसी जाती है।
1: इस दावत में करीब 20 से 30 तरह के पकवान होते हैं, चावल, सांभर, अवियल, पायसम जैसी कई स्वादिष्ट चीज़ें एक साथ परोसी जाती है।
0: ये सब सुनकर मेरा मन हो रहा है कि एक बार हमें केरल चलना चाहिए, जिसमें हम ओणम का डे वन से डे टेन तक सारा एन्जॉयमेंट ले सके और उस चीज़ को एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सके कि वो ये फेस्टिवल को कैसे मनाते हैं।
1: तुमने तो मन की बात छीन ली, और वैसे भी फेस्टिवल्स में तो बहुत खूबसूरत हो जाता है केरल, लेकिन उसके अलावा भी बहुत खूबसूरत जगह है केरल।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और त्योहारों के दौरान होने वाली जो नाव दौड़ होती है,
1: हाँ,
0: वो कितनी मशहूर है। मैंने बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म में देखी है वो
1: मैंने भी,
0: जिसे वल्लम काली कहते हैं। तो लंबी लंबी सजी हुई नावों में लोग मिलकर दौड़ लगाते हैं, दौड़ यानी कि रेस लगती है कि कौन सी नाव पहले पहुंचेगी, और देखने वालों की भारी मात्रा में भीड़ जुटती है।
1: और इसके साथ ही ओणम पर पारंपरिक नृत्य भी होते हैं, जैसे कथकली, जिसमें महिलाएं गोल घेरे में तालियां बजाते हुए नाचती है।
0: सच में ओणम सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एकता, प्यार और अपनेपन का प्रतीक है। इस दौरान अमीर गरीब हर धर्म के लोग मिलकर इसको साथ में मनाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा माधवी, यही तो खासियत है भारत की, जहाँ हर त्योहार सबको साथ लेकर चलता है।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि केरल के सबसे बड़े त्योहार को, जो कि ओणम है, उसको कैसे मनाया जाता है, इसकी कहानी, इसकी परंपराएं और इसकी खूबसूरती। और ये सब सुन के मेरा एक बार इस ही टाइम पे केरल जाकर इस चीज़ को लाइव एक्सपीरियंस करने का बहुत मन है।
1: तो चलिए दोस्तों, इस ओणम के मौके पर हम सब भी थोड़ी सी खुशियाँ, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी मिठास अपने आसपास के लोगों में बांटें।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: दोस्तों, त्योहारों की बात चल रही थी और अभी अभी हमने ओणम की बात की है, तो उसके साथ ही आज एक और बहुत खास त्यौहार है। आज इस्लाम धर्म का एक बहुत ही पवित्र और खास त्यौहार है, जिसका नाम है ईद मिलाद उन नबी। और ये दिन मनाया जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के तौर पर। इसे मिलाद उन नबी या सिर्फ मिलाद शरीफ भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल की 12 तारीख को मनाया जाता है।
3: और चूंकि इस्लामिक कैलेंडर चांद पर आधारित होता है, इसलिए हर साल अंग्रेजी कैलेंडर में इसकी तारीख थोड़ी बदल जाती है।
2: दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का शहर में हुआ था, जो आज सऊदी अरब में है। और उनका जन्म ऐसे समय पर हुआ जब समाज में बहुत ज्यादा असमानता और अन्याय था।
3: उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को प्रेम, भाईचारा, सच्चाई और इंसानियत का रास्ता सिखाने, दिखाने और इसका पालन करने में लगा दी।
2: बिल्कुल। और उन्होंने हमेशा ये चीज सिखाई कि सारे इंसान ना बराबर होते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या नस्ल के हों।
3: और उन्होंने ये भी सिखाया था कि सबसे बड़ी इबादत है दूसरों की मदद करना, गरीबों का ख्याल रखना और सच बोलना।
2: इसीलिए इस दिन दुनिया भर में मुसलमान भाई बहन बहुत ही श्रद्धा और खुशी के साथ इस दिन को मनाते हैं।
3: लोग इस दिन मस्जिदों को खूबसूरती से सजाते हैं, रोशनी करते हैं और घरों को भी सजाया जाता है।
2: कई जगहों पर तो बड़ी बड़ी जुलूस निकाली जाती है, जिन्हें जुलूस मोहम्मदी भी कहा जाता है। और इसमें लोग मिलकर पैगम्बर साहब की शिक्षाओं को याद करते हैं।
3: तो चलिए इस ईद पर हम सब मिलकर दुआ करें कि दुनिया में प्यार, भाईचारा और इंसानियत हमेशा बनी रहे। सर

0: दोस्तों, त्योहारों की लड़ी लगी है। दो त्योहारों की अभी अभी हमने बात की और अब तीसरे त्योहार के ऊपर आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट जो है एक ही फिल्म से वो बेस्ड है। तो उम्मीद है आपने गेस कर लिया होगा कि जो फेस्टिवल आने वाला है उसका नाम है रक्षाबंधन, जो कि कुछ ही दिनों दूर है और इसी शुक्रवार 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। तो ये जो दिन है ना, एक भाई बहन की कलाई पर राखी बंधवाता है, अपनी कलाई पर भाई अपनी बहन से, और उस राखी के साथ साथ वहां पर प्यार होता है, विश्वास होता है और अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ होती है।
1: कुछ ही दिन नहीं, श्रद्धा बस 2 दिन दूर है। और कितनी खुशी होती होगी बहनों को इस अवसर पर, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज मेरा भाई आया है और मुझे पता नहीं था कि वो आने वाला है, तो उसने मुझे सरप्राइज़ दिया है।
0: ओहो
1: तो आज सुबह का दिन मेरा इतना अच्छा गया है, मतलब सुबह से मैं इतनी बढ़िया चल रही हूँ, थू थू थू। पर हाँ, रक्षाबंधन वाकई बहुत प्यारा सा त्योहार है। सारा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है,
0: बिल्कुल
1: वो
0: सही
1: भाई
0: कहा
1: बहन जो साल भर लड़ाई करते हैं, तू तू मैं, इधर उधर मारा पीटी, वो इस दिन इतने प्यारे लगते हैं साथ में जिसकी कोई हद नहीं। और बदले में भाई भी सिर्फ तोहफा नहीं देता है, बल्कि एक ऐसा वादा करता है कि जिंदगी चाहे कैसी भी हो, कितनी भी बदल जाए, बहन का साथ और उसकी चिंता कभी कम नहीं होगी।
0: थोड़ी सी डांट होती है सामने पर चिंता जरूर होती है पीछे। और तुमने जो अपने भाई के बारे में बताया ना, उससे मुझे हमारे बचपन के वो रिश्ते याद आ गए जब हम छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करते थे। खैर, लड़ाइयाँ तो अभी भी होती है एक दूसरे की शिकायत मम्मी से जाकर, पापा से जाकर करते हैं, चीजें छीन लेते थे कि ये मेरी चीज है, मैं ही
1: रिमोट
0: इस्तेमाल
1: के लिए लड़ाई,
0: करूंगी
1: बाप रे। मतलब आजकल के बच्चे नेटफ्लिक्स वाले ये बात समझ नहीं पाएंगे,
0: बिल्कुल
1: पर वो
0: नहीं
1: बीच बीच में ब्रेक में जाना, जब भी कुछ काम हो
0: और वो
1: वॉशरूम के
0: रिमोट
1: लिए
0: छोड़ने
1: भागना,
0: का
1: रिमोट छोड़ने का खौफ, ओ माय गॉड।
0: बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हमें ये चीज भी समझ आती है कि जिसके साथ हम सबसे ज्यादा लड़ते थे, वही इंसान हमारी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो तुम। आज मुझे वाकई ऐसा लगता है कि एक स्टैंडिंग पिलर अपने पास होना ही चाहिए,
0: बिल्कुल
1: और वो इंसान अपने भाई बहन से ज़्यादा कोई और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके साथ हम बड़े हुए हैं, वो हमें
0: बिल्कुल
1: जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते
0: और
1: हैं।
0: उन्हें मार कूट भी लो, उसके बाद भी वो आपका साथ कभी नहीं
1: हाँ,
0: छोड़ेंगे।
1: सही बात है। तो रक्षाबंधन शायद इसी रिश्ते को महसूस करने का दिन है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार भी होता है, नोक झोंक लड़ाई झगड़ा भी होता है, दोस्ती भी होती है ढेर सारी, और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए खड़े रहने का आंख बंद करने वाला भरोसा भी होता है।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, इसी भाई बहन के अनकहे अनमोल रिश्ते पर बनी फिल्म जो आज की हमारी स्पेशल फिल्म है वो है रक्षाबंधन। ये फिल्म सिर्फ एक भाई की कहानी नहीं है बल्कि उस जिम्मेदारी की कहानी है जो कभी कभी एक भाई अपने पूरे परिवार के लिए अपने कंधों पर उठा लेता है, और कई बार बहनें भी।
1: सही बात कर रही हो। ये फिल्म आज जब आई थी तब इसकी कहानी बहुत सारी अलग अलग जगहों पर घूमती है। एक भाई की आसपास स्पेसिफिकली है ये मूवी, कि एक भाई अपनी 4 बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इतना कि वो अपनी खुशियाँ तक पीछे छोड़ देता है अपनी बहनों की खुशियों के लिए।
0: बिल्कुल। तो चलो इसकी कहानी के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। पुरानी दिल्ली में लाला केदारनाथ अग्रवाल यानी अक्षय कुमार अपने दादाजी की बनाई हुई एक चाट की दुकान चलाते हैं जिसका नाम है प्रेमलता चाट भंडार। उनके साथ काम करता है उनका वफादार साथी गफ्फार।
1: लाला की 4 छोटी बहनें होती हैं, गायत्री, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। इन सब की परवरिश लाला ने ही की होती है, क्योंकि उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहते हैं। सोचिए माधवी, कि मतलब मेरा तो यही कहना है कि एक भाई जो खुद बचपन में माँ बाप का साया खो चुका हो, वो अपनी बहनों को अपनी माँ बाप का प्यार कैसे दे पाया होगा। और यही क्वेश्चन तुमने मुझसे पूछा था, तो ये क्वेश्चन मैं अपने दोस्तों से, अपने लिसनर्स से पूछना चाहती हूँ कि मतलब ये कितना अनरियलिस्टिक है कि आपको जो प्यार नहीं मिला आप वो प्यार कैसे
0: किसी
1: दोगे।
0: और से दे सकते हैं, राइट। तो अपनी माँ के आखिरी वक्त में लाला ने ये वादा किया था कि वो अपनी चारों बहनों की शादी अच्छे घरों में करवाएंगे और उसके बाद खुश शादी करेंगे, यानी कि उनकी शादी से पहले वो खुश शादी नहीं करेंगे। और ये कोई मामूली वादा नहीं था, ये उस भाई की आत्मा में बस गया था। उसके लिए एक फर्ज था जिसे वो अपनी जान से भी बढ़कर मानता था।
1: यही वादा आगे चलकर लाला की पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। कितना खूबसूरत सा काम है ना कि एक भाई अपनी खुशियां, अपना प्यार, अपना सुख, चैन, सब कुछ अपनी बहनों की मुस्कान के लिए न्योछावर कर देता है।
0: लाला की एक बचपन की दोस्त भी होती है और मंगेतर भी। उसका नाम है सपना गुप्ता, जिसका किरदार निभाया है भूमि पेडनेकर ने। सपना कनाडा में रहती है और वो लाला से शादी करना चाहती है।
1: ऐसा क्यों भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन सपना के पिता हरिशंकर बार बार उस पर दबाव डालते हैं कि वो जल्दी शादी कर ले, क्योंकि लाला की शादी की कोई तय तारीख नहीं है। सपना भी हर बार इंतजार करती है, क्योंकि वो जानती है कि लाला के लिए उसकी बहनें कितना मायने रखती हैं।
0: और माधवी, तुम्हें ये पता है कि इस फिल्म का निर्देशन किया है आनंद एल राय ने, जो पहले भी तनु वेड्स, मनु रिटर्न्स और रांझना जैसी फिल्में बना चुके हैं। और उनकी खासियत यही रही है कि वो छोटे छोटे शहरों और आम परिवारों की कहानियों को बहुत अपनेपन से पर्दे पर उतारते हैं।
1: फिल्म की कहानी भी तो ऐसी ही है। फिल्म की कहानी लिखी है हिमांशु शर्मा ने, और इसका मूल जो विचार है वो ये है कि दहेज प्रथा पर एक सीधा और भावुक संदेश देना। एक भाई की नजर से आप दहेज प्रथा को कैसे देखोगे, ये बताया गया है इस मूवी में। यानी फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दे को भी सामने रखती है, और वो भी घर परिवार के लिए भावुक किस्से के जरिए।
0: बिल्कुल। और जब लाला अपनी बहनों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करता है ना, लेकिन उसे हर जगह से मुश्किलें मिलनी शुरू हो जाती है। लक्ष्मी के रंग को लेकर, दुर्गा के वजन को लेकर,
1: और सरस्वती का मर्दाना अंदाज हो, या रिश्ते वाले परिवार वालों को बार बार इनकार करने वाले की प्रॉब्लम्स हो, हर इनकार लाला के दिल पर एक चोट की तरह लगता है। लेकिन वो अपनी बहनों के सामने कभी भी अपनी तकलीफ

0: तारीफ जाहिर नहीं होने देता।
1: यही तो बात है। और साथ ही ना लाला इन सब बातों से टूटता नहीं है, बल्कि हर बार नई कोशिश करता है, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। आखिरकार लाला किसी तरह गायत्री के लिए 18 लाख रुपए का इंतजाम करता है, जो लड़के वालों ने दहेज के तौर पर मांगे थे, और गायत्री की शादी हो जाती है।
0: जिस दिन गायत्री की विदाई होती है, लाला की आंखों में जो आंसू होते हैं वो सिर्फ बिछड़ने का गम नहीं होते, बल्कि एक भाई की गर्व और प्यार की बातों के सारी मिसालों के साथ वाले आंसू होते हैं।
1: और शादी के बाद एक बहुत बड़ा राज भी खुलता है। पता चलता है कि लाला असल में इन बहनों के सगे भाई है ही नहीं। उनकी माँ ने उन्हें बरसों साल पहले गोद लिया था, जब उनकी असली माँ का मंदिर के पास देहांत हो गया था।
0: यही तो इस फिल्म की सबसे बड़ी सीख है, रिश्ता खून का हो या ना हो, प्यार और फर्ज भी असली रिश्ता ही बनाते हैं। लाला का बहनों के प्रति जो प्यार था, जो जिम्मेदारी थी, वो जरा भी कम नहीं होती, बल्कि और गहरी हो जाती है।

0: दोस्तों, एक ही फिल्म से में हम बात कर रहे थे, रक्षाबंधन फिल्म की। तो कहानी आगे बढ़ती है और लाला को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब शादी के बाद भी गायत्री के ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान करते हैं और गायत्री भाई को परेशान न करने के लिए अपना दर्द छुपाती रहती है।
1: और यही तो इस रिश्ते की खूबसूरती है ना? बहन भाई की खुशी के लिए अपना दर्द छुपाती है और भाई बहन की खुशी के लिए अपनी तकलीफें छुपाता है।
0: लेकिन दहेज के दबाव और मानसिक तकलीफ के चलते गायत्री की जान चली जाती है और यहीं से लाला की सोच बदल जाती है। अब वो सिर्फ बहनों की शादी ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का फैसला करता है।
1: और यही फिल्म का सबसे मजबूत संदेश है। असली रक्षा सिर्फ बहन की शादी करवाना नहीं होता, बल्कि उसे इतना सक्षम बनाना होता है कि उसे किसी के भी सामने झुकना ना पड़े।
0: इसी दौरान लाला अपने प्यार सपना से भी दूरी बना लेता है, क्योंकि उसके लिए बहनों का भविष्य सबसे पहले है। लेकिन आखिरकार सपना को भी एहसास होता है कि लाला ने अपने प्यार से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी को चुना है।
1: आगे चलकर दुर्गा वकील बनती है, गायत्री के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ती है, सरस्वती पुलिस ऑफिसर बनती है और लक्ष्मी भी अपनी जिंदगी का फैसला खुद करती है।
0: और आखिर में अपनी माँ से किया वादा पूरा करने के बाद लाला 60 साल की उम्र में सपना से शादी करता है। यानी एक भाई का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ 60 साल की उम्र में।
1: लेकिन तुम प्यार भी तो देखो कि सपना ने 60 साल तक इंतजार किया,
0: बिल्कुल।
1: कितनी बड़ी बात है। अगर फिल्म की बात करें तो अक्षय कुमार ने लाला का किरदार में एक बहुत साधारण लेकिन मेहनती और भावुक भाई के किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। भूमि पेडनेकर के साथ चारों बहनों की एक्टिंग भी काफी अच्छी थी।
0: फिल्म 11 अगस्त 2022 को रिलीज हुई थी और उसी दिन आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा भी आई थी, पता है। और उन दोनों में बड़ी टक्कर हुई, लेकिन वहां पर भी 61 करोड़ रुपए की कमाई की थी इस फिल्म ने।
1: क्रिटिक्स की राय भी मिली जुली रही, किसी ने भावुक कहानी कहा, किसी ने एक्टिंग की तारीफ करी, तो किसी ने कहानी को थोड़ा पुराना कहा, लेकिन संदेश एक बहुत अच्छा दिया।
0: बिल्कुल। और फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया और गाने इरशाद कामिल ने लिखे। तेरे साथ हूँ मैं, धागों से बांधा, कंगन रूबी और रक्षाबंधन जैसे गानों ने फिल्म की भावनाओं को और ज्यादा मजबूत किया।
1: मेरी सोच तो ये है श्रद्धा कि फिल्म सबसे खूबसूरत और कितनी अच्छी है ये बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं बताते, बल्कि उसका रिश्ता बताता है। एक ऐसा भाई जो अपनी बहन की खुशी के लिए बार बार खुद को पीछे करता रहा, वो फिल्म अगर ऐसा संदेश दे रही है तो बॉक्स ऑफिस के नंबर्स कहाँ ही लगते हैं।
0: तो दोस्तों, चाहे राखी का धागा हो या इस फिल्म की कहानी, दोनों एक ही बात कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि प्यार, भरोसे और साथ का रिश्ता होता है।

0: तो दोस्तों अब वक्त है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और जो आज के त्योहार है उन सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, मुबारकबाद। और
1: उम्मीद करते हैं कि आपको जो हमारा एक ही फिल्म से वाला सेगमेंट है वो भी अच्छा लगा होगा,
0: हाँ
1: और जिस तरह हम राखी का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे लगता है सारी बहनें उसी प्यार, उल्लास और उत्सुकता के साथ अपने भाई का इंतज़ार कर रही होंगी।
0: यहाँ तक कि माधवी कई सारी बहनें तो अपने भाई के घर जाने के लिए निकल भी चुकी हैं।
1: बिल्कुल, एक्चुअली है ये एक दिन का त्योहार, लेकिन जो एक्साइटमेंट लेके आता है, जो प्यार लेके आता है, जो सबका साथ लेके आता है, वो एक दिन का नहीं
0: बिल्कुल
1: होता।
0: सही कहा।
1: तो अब ये जब त्योहारों की लड़ी लग ही गई है, तो आप सबको बधाइयाँ, आप सब तैयार होएं, खूब खुश रहें, परिवार के साथ समय स्पेंड करें। और अब समय आ गया है हमारे सवालों का। तो हमने शुरू में आपसे ओणम से रिलेटेड दो सवाल पूछे थे। जो हमारा पहला सवाल था वो ये था कि ओणम मुख्य रूप से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो इसका उत्तर है केरल।
0: और आज का दूसरा प्रश्न था कि ओणम किस राज्य की स्मृति, किस राजा की स्मृति में मनाया जाता है, जिसका उत्तर हम ऑलरेडी दे चुके हैं वैसे, पर इसका सही उत्तर है महाबली।
1: तो उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। मैं हूं माधवी।
0: और मैं श्रद्धा।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।
2: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
5: श्रोताओं, फिल्म संगीत में अब आपको सुनवा रहे हैं रॉक स्टार फिल्म से AR रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाज़ों में इरशाद कामिल की ये रचना। संगीत AR रहमान का है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
3: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
3: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जानिए में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
3: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने न जा सकें, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह सर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
2: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं, और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
3: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
2: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
3: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गाँव है लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ न शोर है, न ऊंची ऊंची इमारतें और न शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
2: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गाँव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
3: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
2: अजीत जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गाँवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है, यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
3: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ विशेषकर हनले गाँव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है।
2: जी,
3: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
2: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
3: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब हनले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
2: जी जी जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हनले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हनले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
3: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
2: श्रोताओ, जैसा कि हमने बताया, हनले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
3: जी हाँ श्रोताओ, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
2: जी,
3: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
2: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं वे कहते हैं, हनले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों जी जी, अब समापन किया जाए?
3: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं।
2: जी,
3: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं, लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
2: जी,
3: हनले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है, बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
2: श्रोता, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हनले को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
3: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
3: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
2: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है, तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
3: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
2: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।

0: तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
2: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
2: वाह, क्या बात है
4: मैम।
2: हाँ बेटी,
4: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
2: बिल्कुल कहा।
4: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
2: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
4: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
2: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
2: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
2: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
2: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
5: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
2: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
2: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
2: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
5: जी मैम,
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
2: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
2: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
2: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
2: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, जानना चाहोगे ना?
5: जी मैम।
4: यस मैम।
2: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी

0: पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि बिल्कुल सही है, अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
2: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
3: जी।
1: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
4: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
4: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
5: धन्यवाद मैम।
6: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
3: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
6: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीष शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी। शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी

0: कुआं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
1: माँ माँ, पानी धोना बहुत प्यास लगी है।
2: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
3: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
2: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
3: अच्छा, ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
0: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
3: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
4: जी हाँ।
3: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
5: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
4: हाँ, उपाय बताइए।
3: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
6: ग्राम सभा?
5: ठीक है।
6: हाँ हाँ, ठीक है ठीक है,
3: समझे। और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
4: हाँ हाँ, हम तैयार है, ठीक है।
3: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
7: जी हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
8: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
3: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे और रामू, तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
9: वो कैसे?
10: क्या गड्ढा बनाना है?
11: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है,
5: फिर इसकी क्या जरूरत है?
9: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
3: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
5: नया तरीका? कौन सा तरीका, बताओ बताओ।
11: हाँ हाँ, हमें भी बताओ।
10: हमें भी बताओ।
3: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा।
5: सिंचाई टैंक?
11: सिंचाई टैंक,
3: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े, इससे पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
10: अच्छा, सुझाव तो बड़ा अच्छा है।
4: हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा।
0: तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के लिए काम करना शुरू किया और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी, जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी, कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर

संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, कैसे लगे आपको हमारे आज के कार्यक्रम और हमारी आज की जानकारी, जरूर लिखिएगा। तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज आप सुनेंगे अनुजा झोकरकर की प्रस्तुत की गई कुछ गजल। सबसे पहले सुनिए कुछ दूर हमारे साथ चलो, इब्राहिम अश्क का ये कलाम। पेश कर रही हैं अनुजा झोकरकर।

आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। अगली गजल सुनिए, ये कलाम है अहमद फराज का, पेश कर रही हैं अनुजा जोकरकर।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी अनुजा जोगरकर की पेश की गई कुछ गजलें। सुगम संगीत अब समाप्त होता है। श्रोताओं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे लोक संगीत, लेकिन पहले एक सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 27 अगस्त 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है सर्दी, खांसी, वायरल बुखार और जोड़ों का दर्द तथा बारिश के दिनों में होने वाली बीमारियां और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर ए के द्विवेदी होम्योपैथी विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। तो दिन और समय नोट करें, गुरुवार यानी कल 27 अगस्त 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटी कोड है 0731। तो फ़ोन करना मत भूलिएगा कल 10:32 से लेकर 11:02 तक। और श्रोताओं, अब सुनिए लोक संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शंकरलाल धौलपुरिया और साथियों की आवाज़ों में कुछ लोकगीत।

0: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। अगला लोकगीत शंकर लाल धोलपुरिया और साथियों की आवाज में।
1: ए जी, हमारी कोट

0: लोक संगीत में आज आपने सुने शंकरलाल धोलपुरिया और साथियों की आवाज़ों में कुछ लोकगीत। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुआ क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरूआती आंकड़े हैं और अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इसमें पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग हेल्पलाइन नंबर 9779851316807 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया कि वह बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी बाल्मीकि जाऊंगा।
1: इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रूपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त बना ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और कल के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें। आज शाम 7:20 पर सुनिएगा ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के बारे में जानकारी के साथ ही समसामयिक कृषि पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे प्रगतिशील कृषक जगन्नाथ पटेल। कार्यक्रम में होंगे कुछ घरेलू नुस्खे, घरेलू व्यंजन और कुछ लोकगीत। सुर्खियों में ये न्यूज रील आप सुन सकते हैं रात्रि 8 बजे। इसे हम रिले करेंगे भोपाल केंद्र से। दिल ने फिर याद किया, ये प्रोग्राम सुनना ना भूले रात्रि 8:15 से। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत प्रसारित होगा रात 9:15 पर और रात 9:30 पर हम दिल्ली से रिले करेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। महाकवि कालिदास ओम जोशी का लिखा ये रूपक आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे। प्रस्तुतकर्ता हैं उदित तिवारी। रात्रि 10:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत। आज हमारे श्रोता आनंद ले सकते हैं उस्ताद आमिर खां के शास्त्रीय गायन का। राग होगा रागेश्री। श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको कल के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें। कल सवेरे 7:20 पर आप सुनेंगे संस्कृत कार्यक्रम दिव्य धारा। 7:35 पर होगा कार्यक्रम सुनहरे पल वतन का राग। ये प्रायोजित कार्यक्रम हम रिले करेंगे भोपाल केंद्र से कल सवेरे 8:30 पर। बाबूलाल चंपालाल मंसारे और साथियों के गाए लोकगीत सुनिएगा लोक संगीत में कल सवेरे 9 बजे और शाम 6:45 पर। कल सुबह 9:15 पर और शाम 6:30 का समय रहेगा सुगम संगीत का। कलाकार होंगी शीला वर्मा। कल सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुन सकते हैं GS सचदेव का बांसुरी वादन। राग होगा अहिल्या बिलावत। कल सुबह 10 बजे भोपाल से प्रसारित होगी जिले की चिट्ठी। दस बजकर 5 मिनट से सुनिएगा कार्यक्रम मन भावन। 11 बजे भोपाल से प्रसारित होगा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। दिन में 1 बजे सुनना ना भूलें महिला कार्यक्रम। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम से। कल का आकर्षण है गीतों भरी कहानी। कल शाम 5:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 6 बजे प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हम रिले करेंगे भोपाल केंद्र से कल शाम 7:30 पर। 8 बजे भोपाल से ही सुनिएगा सुर्खियों में दिल ने फिर याद किया ये कार्यक्रम सुनना ना भूलें कल रात्रि 8:15 से। चित्रगीत आप सुन सकते हैं कल रात्रि 9:15 पर और मन भावन का समय रहेगा कल रात 9:30 से। कल शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत श्रोताओं को सुनवाया जाएगा सुलभा चौरसिया सराफ का शास्त्रीय गायन। राग होगा बिहाग। श्रोताओं, ये थी कल के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रतिशत यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र में एक विनिर्माण इकाई का शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव से देश और राजनीतिक दलों का चुनाव खर्च बचेगा। और मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों के युवाओं की भागीदारी रहेगी। ये संवाद खेल, युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। ये संवाद खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा सहित 5 विषयों पर केंद्रित होगा। खेलो इंडिया संवाद का उद्देश्य युवाओं को देश की खेल यात्रा से जोड़ना, उनकी आकांक्षाओं को साझा करना और एक सशक्त युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के लिए विचार प्रस्तुत करना है। इस अवसर पर कल इंदौर में भी खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की विनिर्माण इकाई का शुभारंभ किया। 450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित इस इकाई से 2000 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 महीने से भी कम समय में मध्यप्रदेश में तीसरी बड़ी औद्योगिक इकाई की स्थापना हुई है। पहले गुना और शिवपुरी और अब मालनपुर में एशिया की सबसे बड़ी साबुन फैक्ट्री का शुभारंभ हुआ है।
3: के 2 महीने से भी कम समय में हमारे ये तीसरा यूनिट है। गुना सीमेंट प्लांट 1500 करोड़ का, फिर हमारा दूसरा प्लांट शिवपुरी में लगभग 3500 करोड़ का, जो रक्षा उत्पाद से जुड़ा हुआ था। आज की जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में भी पूरे एशिया की सबसे बड़ी साबुन फैक्ट्री। इस उत्पादन की अगर बात करें तो प्रति मिनट 4000 साबुन की टिकियां यहाँ बनाई जाएगी।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल पवित्र नगरी ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में भव्य पंचायतन मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 6 बजे मानधाता पर्वत पर आयोजित होगा, जिसमें देशभर के पूज्य संत, धर्माचार्य और विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और संत समाज तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा 45 पवित्र शिलाओं का पूजन कर मंदिर निर्माण का शुभारंभ किया जाएगा। पंचायतन मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित समन्वयवादी परंपरा को साकार करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मंदिर के केंद्र में भगवान शिव का मुख्य देवालय होगा, जबकि चारों दिशाओं में भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, भगवान गणेश और भगवती शक्ति के उप देवालय स्थापित किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों में दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर संविदा पदों पर दी गई नियुक्तियों को नियमित करने की कार्यवाही की गई है। इस प्रक्रिया के तहत मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 43 अनुकंपा संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की है। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक

0: समाचारों में स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित कृषि विश्वविद्यालयों के 36वें वार्षिक सम्मेलन में आज कहा कि हम गांवों को खेती के हिसाब से इनोवेशन का सेंटर बना सकते हैं।
1: अब अगर हम 100 की सीमा में आ जाते तो हमारे आनंद का ठिकाना नहीं रहता। ये हमको कोशिश करनी पड़ेगी, हमारी यूनिवर्सिटी स्टेट की हो, सेंट्रल हो, हमारे संस्थान कैसे दुनिया में सम्मान के साथ अपना स्थान बना। रैंकिंग ग्रेडिंग हम दुनिया के हिसाब से भी करें, लेकिन विद इन जो हमारी यूनिवर्सिटी है 86 उनमें से सबसे अच्छी कौन, नंबर वन कौन, नंबर टू कौन, नंबर थ्री कौन, कुछ पैरामीटर्स बना के हमको रैंकिंग करनी चाहिए और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए कि आगे कौन निकलता है।
0: वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव पर प्रेस से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे देश और राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च बचेगा, साथ ही आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में आने वाली रुकावटें भी कम होंगी।
2: मैं यही प्रार्थना करूंगा अंत में कि एक राष्ट्र एक चुनाव, इसका हम संकल्प है, इसके लिए प्रचार करें, जनमानस बनाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे और वातावरण ऐसा बन जाएगा कि कोई राजनीतिक दल इसका विरोध करने का साहस ना कर पाए।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास के रेलवे अंडरपास में जलभराव के कारण बैरिकेड्स हटाकर स्कूल वैन निकालने और विद्यार्थियों की जान जोखिम में डालने की घटना को अत्यंत गंभीरता के साथ लिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के मद्देनजर जिला और पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए लापरवाह मैजिक चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, साथ ही स्कूल संचालक के विरुद्ध भी वैधानिक प्रकरण दर्ज किया गया है। रक्षाबंधन, बलराम जयंती और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्कूल, उच्च शिक्षा, संस्कृति, कृषि विकास और अन्य विभागों सहित कमिश्नर और कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र अनुसार रक्षाबंधन पर्व 28 अगस्त को छात्रों के लिए स्कूलों में प्रकृति की रक्षा के लिए कहानी तथा पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जबकि बलराम जयंती 2 सितंबर के अवसर पर बलराम कृषि महोत्सव के तहत कृषि संबंधित पारंपरिक कला रूपों की विशेष प्रस्तुतियों के साथ साथ आधुनिक कृषि उपकरण एवं बीज और प्राकृतिक खेती केंद्रित प्रदर्शनी तथा सह संवाद जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसी क्रम में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर को प्रदेश भर में भव्य स्तर पर मनाई जाएगी और इस अवसर पर प्रत्येक जिले में कृष्ण मंदिरों, मठों और देवालयों का विशेष श्रृंगार, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान और मटकी सज्जा प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। नई फसल और प्रकृति के प्रति आभार का पर्व ओणम आज उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये भारत की समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओणम के अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन्नबी आज प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए गए। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में अगले 2 दिन भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में तेज बारिश का दौर रहने की संभावना है। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के भिंड, दतिया, राजगढ़, ग्वालियर, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, सागर और रीवा संभागों के जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में आयोजित बैठक में रीवा शहर की बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने आज जिला जेल में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। आगरमालवा जिला जेल में रक्षाबंधन पर्व पर बंदियों की बहनों को राखी बांधने के लिए प्रत्यक्ष मुलाकात की विशेष सुविधा रहेगी। मंडला जिले के ग्राम चाबी में स्व सहायता समूह की बैठक में महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और साइबर सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी गई। और त्योहारों के मद्देनजर नर्मदापुरम जिले में दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान निरंतर जारी है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। अभी इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

0: ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली सगली बेड़ना का प्रियंका की राम राम। भाई बेड़ना, हमारा गांव की खुशहाली हमारा घर की महिलाना की सेहत से जुड़ी है, और जब एक माँ स्वस्थ रहेगी तभी तो हमारा आने वालों कल यानी हमारी जो बालक बालिकाना है वे तंदुरुस्त रहेगा। और इन्हीं सोच का साथ ही हमारी सरकार ली नहीं है एक बेहद ही कल्याणकारी योजना, जिको नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। भाई बहना, अक्सर हमारा गरीब और श्रमिक परिवार में गर्भावस्था का दौरान जो भाई बहना है उनका मजदूरी करनी पड़ा, और आराम नहीं मिलने का कारण और पोषण की कमी का कारण माँ और बच्चा दो ही की सेहत पर बुरा असर पड़ा। और इन्हीं समस्या का दूर करने के लिए इन योजना का तहत जो हमारे गर्भवती श्रमिक महिला ना है बेड़ना है उनका 16,000 रुपया की आर्थिक सहायता दी जाए है। तो अब या भी हूँ बता दूँ कि भाई या जो राशि है वह तुम्हारा कब और कैसे मिलेगी, तो इसकी जो पहली किस्त है वह गर्भावस्था का आखिरी 4 महीना में डॉक्टर या फिर ANM द्वारा कम से कम 4 प्रसव पूर्व जाँच कराने पर मिला, और दूसरी जो किस्त है 12,000 रुपया की वह शासकीय अस्पताल में जो अपना सरकारी अस्पताल है उसमें सुरक्षित प्रसव होना और नवजात शिशु को संस्थागत जन्म पंजीकरण कराने का साथ ही बच्चा का BCG OPV और हेपेटाइटिस बी को पेलो टीको लगाना पर मिली जाए। तो है नहीं यह कमाल की योजना, यानी बेना अब तुम्हारा पैसा की चिंता का बिना अपनी जो गर्भवती बेड़ना है भी आराम भी कर सकेगी और अच्छो खान पान भी री सकेगी। पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि भाई इन्हीं योजना को लाभ कौन ले सकते है, तो इनकी जो पात्रता है वह बहुत ही सरल है। जो गर्भवती महिला की आयु है वह 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, बहन या फिर उनको पति असंगठित कर्मकार मंडल या संबल कार्ड का तहत उनको वैध पंजीकरण होना बहुत जरूरी है। यो लाभ केवल महिला का अधिकतम पहला 2 जीवित बच्चा ना का प्रसव पर ही मिला है, और इका आवेदन करना भी बड़ो ही आसान है। तो इका सरो तुम्हारा प्रसव का 6 सप्ताह पहला या फिर प्रसव का बाद भी तुम अपना जो नजदीकी शासकीय अस्पताल या फिर ANM बेन या आशा कार्यकर्ता बेन का करना जैन तुम फॉर्म भरी सकता हो। याद रखना है कि यह जो राशि है वह सीधा हितग्राही का बैंक खाता में ही जमा करी जाए है, और इकाले अपनों जो बैंक खातों है वो आधार से लिंक करवाना बहुत ही जरूरी है। तो देर की नहीं बात की, आज ही अपना गांव के अगर कोई और गर्भवती बहन है उनका अगर इन योजना का बारे में नहीं मालूम है तो उनका जागरूक करना भी हमारी एक जिम्मेदारी है। माँ और बच्चा की मुस्कान यही तो है अपनी ग्राम लक्ष्मी की पहचान। तो अपन बात अभी और भी करांगा, पण उका पहला अपन सुनांगा यो संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: भाई बेंडा, अब यो तो हूँ तुम्हारो मन में समझी गई कि तुम अब इंतजार कहीं को करी रहा हो कि प्रियंका बहन बात तो नरी करी रही है अन राखी को त्योहार आई गयो है कनन एक भी लोकगीत नहीं सुनाया है। तो चलो फिर देर की नहीं बात की शुरू करा अपन सुना यो लोकगीत जिक गायो है भाई बालकृष्ण धनगढ़ और साथी नाना।

0: भाई बेना अभी अपन ने भाई बाल कृष्ण धनगर और साथीना को गायो प्यारो सो लोकगीत सुनियो। कार्यक्रम में अपन अभी और भी खेतीबाड़ी की बातचीत भी करांगा, पण उनका पहला अपन सुनांगा ई संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: भाई बहना इना टेम अगर अपन देखा तो काम कहाँ को भी होए, चाहे नौकरी को होए या फिर खेती बाड़ी को, मेहनत तो हर कोई करी रहो है, क्योंकि सब का अब आगे बढ़ना है और मेहनत से कोई पीछे भी नहीं रहे। और क्योंकि वो विज्ञान को युग है, तकनीकी युग है, तो उपमा भी हमारा जो किसान भाई बहना है वे खेती बाड़ी का काम काज का साथ साथ इनको भी सहारो ली रहा है। तो असामा हमारा जो प्रगतिशील कृषक भाई बहना है वे भी कई तकनीक ना का अपनेन और अपना खेती बाड़ी का काम काज में खूब अच्छो फसल को उत्पादन भी ली रहा है। तो और ऐसा कई कई काम कर जो कृषक भैना जो प्रगतिशील है और अलग से मेहनत तो करी रहा है, मौसम को भी ध्यान रखी रहा है, तो उनसे अपन जुड़ी एक जानकारी सुना कि भाई हमारा प्रगतिशील कृषक जगन्नाथ पटेल जी कैसा अपना खेती बाड़ी को कामकाज करी रहा है। तो इनसे बात करी रही है बहन सुनीता पंडित, तो सुना उनकी यह चर्चा।
3: किसान भाइयों ने आज अपने साथ मुझे जगन्नाथ पटेल भाई, आप मोर्टे का माफी जिला खंडवा से अपना बीच में छे और अपन इनका से आज इनका खेती बाड़ी का अनुभव कही रहा वो अपनी चौपाल से साझा करांगा। पर चौपाल पर सबसे पहला करा उनको स्वागत न कवा राम राम भाई।
4: राम राम सभी किसान भाइयों को।
3: हम शुरुआत यहाँ से कराए कि अपना खेत में आपने कई चौपेलो छे।
4: मेरी प्रमुख फसल है मतलब कपास और मिर्ची सोयाबीन, ये मैं गर्मी, मेरे पास सिंचाई के साधन है तो मैं गर्मी में ही इन चीजों को लगाता हूँ।
3: अच्छा।
4: और गर्मी में लगाने के बाद में उत्पादन में बड़ी अच्छे तरीके से लेता हूँ और समय समय पर इसकी देखरेख भी करता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा एक कृषक हूँ।
3: बिल्कुल।
4: वैसे मेरी पढ़ाई एम काम है पर मेरा बचपन से ही एक शौक था खेती करने का कि मैं पढ़ लिख कर खेती ही करूंगा और खेती में मुझे कुछ पुरस्कार भी मिले हैं और मुझे मेरी योग्यता के अनुसार मैंने खेती भी की है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि खेती में कुछ नहीं होता,
3: लाभ को धंधो नहीं रहेगा।
4: हाँ, पर मैं अपने सभी किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि अगर खेती को मन लगाकर करेंगे तो आपको वो हमेशा सफलता दिलाएगी।
3: बिल्कुल सही कहो कि सही तरीका से सही समय पर।
4: बिल्कुल।
3: जैसे आपने कहो कि उंधाड़ा में आप पढ़ना कपास को कर,
4: तो
3: किना तरीका से आपने कपास को चोपियो?
4: पहले तो अगर मैं गर्मी में कपास लगाऊं तो मेरे पास सिंचाई के साधन पर्याप्त है, क्योंकि मेरे पास कुएं भी है और माँ नर्मदा की देन है जो मेरे दादा दादी ने नर्मदा लाइन करवा के दी है और उसी से मेरे खेत में सिंचाई होती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे निमाड़ क्षेत्र में गर्मी का कपास बहुत अधिक मात्रा में लगता है। तो कपास की बात करो तो पहले क्या है कि बेल चलित जो रहते थे कृषि यंत्र, तो उसमें हमको दूरी की दूरी कम रखना पड़ती थी। अब क्या है कि अब समय परिवर्तन हो गया, जो काम दिन भर में होना था वो घंटों में होने का मंगता है, तभी तो किसान तरक्की करेगा। तो अभी क्या है कि हमारे पास ट्रैक्टर चलित वाहन है तो हम उसमें क्या है कि क्यारी से क्यारी की दूरी मतलब कम से कम 4 या 5 फीट की रखते हैं और उसके बाद में पौधे से पौधे की दूरी 1.5 या 2 फीट की रखते हैं ताकि उसका उत्पादन हमें अच्छा मिल जाए। और यही स्थिति मतलब मिर्ची में भी रहती है, तो मिर्ची का भी यही हाल है। तो वैसे गर्मी का कपास लगाते हैं तो उसका उत्पादन जल्दी मिल जाएगा तो हमको मार्केट में उसका भाव भी मिल जाएगा। मिर्ची है तो मिर्ची में जैसे हम गर्मी में मिर्ची लगाते हैं तो वो पहले हमारी बेच देते हैं, क्योंकि मिर्ची जब ज्यादा लगती है तो हम उसको सुखा नहीं पाते बारिश में, तो हम उसको हरी बेचते हैं। तो हरी भी अभी उसका भाव मतलब 50 से 60 रुपए या 70 रुपए किलो है, तो हम उसमें भी मिर्ची 1 एकड़ में कम से कम 1 से 1.25 लाख की हम मिर्ची बेच देते थे, ये किसानों के लिए साइड इनकम हो जाती है।
3: बिल्कुल सही कर। अगर हम मिरी की बात करा तो अपनो जो निमाड़ को जिलो छी
4: जी
3: खरगोन जिलो,
4: बिल्कुल
3: वो एक एशिया की दूसरा नंबर की एक मंडी को,
4: बिल्कुल
3: तो किसान न कोई कम बहुत बड़ो योगदान छे।
4: हाँ।
3: आपने कपास की बात करी तो जाति ने को भी ध्यान रखो माटी का हिसाब से।
4: बिल्कुल, जाति का तो
3: माटी परीक्षण
4: हम क्या करते हैं कि वैसे तो मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं हर तीसरे वर्ष मतलब मिट्टी की जांच करवाता हूँ। तो मिट्टी की जांच से ये पता चलता है कि अपने खेत में कौन से खाद की कमी है। अगर उसके हिसाब से अगर हम खेती करेंगे तो हम व्यर्थ का खाद नहीं डालेंगे, जो चीज की जरूरत है वही खाद डालेंगे, तो इससे हमारी एक प्रकार की बचत भी हो जाएगी और पौधा भी स्वस्थ रहेगा। अगर देखा देखी खेती करेंगे, भाई ने एक भाई ने तीन बोरी डाला है, मैं चार बोरी डाल दू अधिक उत्पादन के लिए, तो हम ये देखा देखी में अपनी जो जमीन है मिट्टी उसको बंजर कर बना रहे हैं। तो मिट्टी बंजर ना हो इसलिए मतलब मिट्टी परीक्षण बहुत जरूरी है, और मिट्टी परीक्षण जरूरी है तो मतलब पौधा जितना चाहिए उतना ही मिलेगा, तो वो बिल्कुल स्वस्थ भी रहेगा और अधिक उत्पादन भी देगा।
3: तो आपने कपास की कौन सी ऐसी जाति न खरीदी?
4: मैंने कपास की बीटी काटन हमारे यहाँ चलता है, बोलगार्ड बीटी काटन, तो उसमें जय है, उसमें बहुत सी ऐसी वेरायटी है, पर मैं जय को ज्यादा पसंद करता हूँ।
3: तो आपन ने एक प्रजाति अपना खेत में लिए ली कि दो तीन तरह?
4: वैसे दो तीन प्रजाति है, तो जैसे एक बोलगार्ड है, एक आशा वन है, ऐसे दो तीन वेरायटियां हैं, और ऐसे नई नई भी हर साल निकलती है, पर मैं तो जो अपने खेत में जो पैदा हो वही वेरायटी अगर लगाते हैं तो अपन को उसका फायदा भी मिल जाता है और अपन को पता भी चल जाता है कि भाई इसका उत्पादन कितना मिल सकता है। तो किसान भाई ने ये विशेष ध्यान रखना है, और जमीन के आधार पर ही जैसे काली मिट्टी है तो उसमें वो जो उत्पादन देते वही लगाए तो फायदा वाली बात है।
3: पूरा खेत में खाली कपास ने मेरी शो पहले?
4: वैसे दीदी मैं अंतर्वर्ती फसल भी लेता हूँ।
3: अच्छा।
4: और ये अंतर्वर्ती फसल इसलिए लेता हूँ कि इसमें जैसे अभी गर्मी में हमने कपास लगा ड्रिप सिस्टम से, तो उसमें जो एक ड्रिप बच जाता है उसमें हम क्या है कि टिंडी लगा देते हैं, टेंसी जिसको बोलते हैं, या इसके बाद में हम गुटका ककड़ी लगा देते हैं, तो ये भी हमारी एक प्रकार की इनकम है। ये डेढ़ दो महीने की फसल होती है, इसके बाद में वो खाली खेत हो जाता है, उसका जो अवशेष रहता है उसको एक जगह इकट्ठा करो तो वो जैविक के रूप में काम में आ जाता है,
3: हरी खाद
4: में। तो ये भी मतलब इससे भी हमको एक एकड़ में 40 से 50 हजार रुपए का मतलब बेनिफिट मिल जाता है। तो ये पैसा जो है हम अपने आगामी फसलों में काम लेते हैं ताकि किसान का बैलेंस बना रहे।
3: जो एक समझदारी को काम छे कि आप नगद फसल नगद कालीन बीज फसल न लेता रहो, ताकि अपने मुख्य फसल जब आवग समय आवग तब पकग न कटग एक बीच में अपन अपनो पैसो हाथ में आवतो रहे।
4: बिल्कुल,
3: बहुत अच्छा तरीको छे। आपको आपने बताया कि आपकी कपास की फसल में कोई को भी फसल लेवांगा कीड़ा कुड़कुट तो लगत
4: के? बिल्कुल।
3: तो ओका लेन आप का तरीको अपना?
4: क्या है कि हर किसान को खेत में जाना जरूरी है, खेत में भ्रमण करना जरूरी है। अगर अपन खेत में जाएंगे तो पता चलेगा कि कौन सी बीमारी लगी हुई है। वैसे कपास पे देखा जाए तो सबसे पहले अटैक होता है मोहा तेलिया का, इसके बाद में जैसे अगर बारिश नहीं होती है तो उसमें मिली बीमारी का भी अटैक होता है। तो ये जो चीजों का अगर हमने नियंत्रण कर लिया समय पे तो बिल्कुल अपना कपास का उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और मतलब फसल भी अच्छी रहेगी और उसका जो बढ़वाड़ है वो भी नहीं रुकेगा। तो ये प्रकार के विशेष ध्यान हम रखते हैं तभी जाके हम अच्छा उत्पादन ले लेते हैं।
3: अच्छा, एक साथ जैविक खाद की बात कर ले, तो अपना जैविक खाद भी अपना काम करोच का आप?
4: हाँ, मैं एक बात यहाँ बताना चाहूंगा कि मैं पशुपालन भी करता हूँ और मेरे पास पशु भी है और पशुधन ही कृषि का मुख्य उद्देश्य है। मतलब कृषि धन से हम एक तो खाद प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ दूध उत्पादन भी ले सकते हैं। अगर बायोगैस में रहे, बायोगैस भी है तो बायोगैस के लिए उसका जो गोबर होता है वो भी, यहाँ तक कि उस जो गाय भैंस है उनका जो मलमूत्र होता है वो भी हम छिड़काव के रूप में काम में लेते हैं। साथ ही साथ जैसे हमारे यहाँ छाछ रहता है तो छाछ को हम सड़ा लेते हैं, उसका भी स्प्रे करते हैं। हरी मिर्ची का अर्घ बनाकर हम उसको भी छिड़काव करते हैं, तो उससे भी इल्ली कंट्रोल होती है। तो कुल मिलाकर हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई अपन को रासायनिक खेती के बजाय जैविक पे अगर जाते हैं तो दुनिया भी स्वस्थ रहेगी, पौधा भी स्वस्थ रहेगा, अपनी मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी और अपन भी स्वस्थ रहेंगे। तो ये विशेष बातें हर किसान को रखना चाहिए और मैं तो रखता हूँ दीदी।
3: एक यहाँ बहुत से किसान भाई बहन डर रहे भय रहो या भ्रांति कहवांगा कि हम जैविक खेती करांगा तो हम जब रासायनिक खाद डालें या रासायनिक कीड़ा कुड़कुट निकाले इस्तेमाल करें तो वो जल्दी असर करी जाए और रासायनिक खाद को उपयोग कराएं तो हमारी पकत अच्छी आवे। तो हम आपसे यो जानना चाहें या हमारा सुनने वाला किसान भाई बहन को बताओ कि रासायनिक खाद और जैविक खाद को उपयोग करने से कई पकत में बहुत ज्यादा अंतर बैठे?
4: यहाँ पे एक बात ये जरूर कहूंगा कि जो रासायनिक खाद है वो तत्काल लग जाता है फसल को, तो किसान इसमें क्या होता है, अरे यार ये तो बहुत जल्दी हरा भरा हो गया, पर उसका जो अवसर है मतलब उसका जो अंश है वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। और जो जैविक होता है तो जैविक धीरे से ही काम करता है, बाकी वो फायदेमंद रहता है। तो धीरे से काम करने में जैसे अपन धीरे चलेंगे तो थकेंगे नहीं, और तेजी से दौड़ेंगे तो थक जाएंगे तो अपन बैठना पड़ेगा, ऐसा ही मतलब ये खादों का भी है। जैविक अपने हिसाब से काम करेगा और रासायनिक अपने हिसाब से, तो मैं तो यहाँ पे जैविक को ज्यादा महत्व देता हूँ और वैसे मैं जैविक करता हूँ, अलग एक खेत में मैं जैविक ही करता हूँ।
3: बिल्कुल सही कहे, और आपने एक खेत में जैविक की बात करी
4: जी,
3: मतलब यो छे हम सुनने वाला न कहेंगे कि एक कदम तो आगे बढ़ाओ, आप खुद अपना यहाँ अगर खेत बड़ो छे तो थोड़ो सो भाग जैविक खाद ओकामा डालो,
4: बिल्कुल
3: जैविक निदान करो, और अगर नहीं हुई रही तो रासायनिक को भी उपयोग करो, पर जब तक हो जब तक जैविक खाद और जैविक नियंत्रण न अपनावांगा तो अपन का धीरे धीरे अपन एकासे हटता चला जावांगा और अपनी निर्भरता कम होती चली जाएगी रासायनिक।
4: बिल्कुल, और एक बात ये है कि अपन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, मतलब भाई जैविक को अपनाने के लिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है। अगर किसी ने बोल दिया कि यार वो जैविक जल्दी काम नहीं करता, तो उसको आप आजमा लीजिए ना, अपने पास तो साधन है, अपना खेत है, अपन को कहाँ किसी को देना लेना है, तो आजमा के भी अपन जैविक खेती को अपना सकते हैं।
3: बिल्कुल सही बात है, आप खुद एक तरीका से देखोगे तो आपको खुद का अंतर पड़ेगा, और आजकल तो जैविक बाजार भी उपलब्ध हो गए।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो उसको भी उपयोग कर सकते
4: हैं। जैविक बाजार में वैसे खाद भी मिलते हैं, जैविक बाजार में आपको जैविक दवाइयां भी मिलती है, और वैसे अपन भी जैसे नीम तेल है, नीम की खली है, नीम से बनी कहीं ऐसे आइटम है जो अपन दवाई छिड़काव भी कर सकते हैं, खाद भी दे सकते हैं, ये जैविक ही है, तो जैविक अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बस इसका बेनिफिट अपन को थोड़ा धीरे मिलता है, पर धीरे मिलेगा बाकी बढ़िया मिलेगा।
3: बिल्कुल,
4: मतलब अपनी बचत भी हो जाएगी, और मतलब जैविक में जो जो अपन खाने पीने की चीज पैदा कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा अंश भी नहीं आएगा जिससे कोई खाए तो बीमारी हो जाए।
3: बिल्कुल सही कहे, और चूंकि आप एक मिर्ची का व्यापारी छे, मिर्ची को की खेती करने वाला किसान छे, तो हम यो भी कहवांगा कि अगर जैविक मिर्ची को उपयोग करो और जैविक बाजार दे तो आज अनाज ने की बात कर लेवा या खाद्यान्न की बात कर लेवा, तो अब जो ओको उपभोक्ता छे उपभोक्ता छे वो जैविक मांगने लगी गए छे, भले ही वो पैसा ज्यादा लगे, तो सीधो सीधो भाई किसान भाई बहन के को फायदो भी मिलेगा, और जैविक जो अनाज छे ओका पैसा ज्यादा भी मिलेगा, तो आपकी भरपाई उन्ना तरीका से भी।
4: बिल्कुल सही बात है,
3: और आप अपना खेत में किना तरीका से खेती करो ये हमारा किसान भी, या अभी फिलहाल मौसम का देखी ना आप कौन सी सलाह हमारा भाई ना देना चाहो।
4: मैं तो अपने किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि कुछ किसान भाई बारिश पे आधारित रहते हैं कि भाई बारिश होगी तभी फसल को पानी देंगे, अगर बारिश लेट हो गई और अपने पास अगर सिंचाई के साधन है तो फसल को आप तत्काल दीजिए, ताकि अपनी फसल रुके नहीं, उसका बढ़वार हो और उसका उत्पादन अच्छा मिले, क्योंकि बीटी काटन जो कपास होता है इसकी उम्र भी कम होती है, इसकी जड़ें नीचे बहुत कम जाती है ऊपर ही रहती है, तो इसको तो मतलब गर्मी भी नहीं सहन होती और ज्यादा पानी भी नहीं सहन होता, तो ऐसे समय में अगर पानी की जरूरत है तो आप ब्लेड ड्रिप सिस्टम से पानी दे दीजिए, और अगर बारिश ज्यादा होती है तो अपने खेत में पानी अगर भरा हुआ है तो उसकी भी निकासी करिए, ताकि निकासी से भी अपना उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि अगर पानी खेत में भरा रहेगा तो फंगस लगेगी, फंगस लगेगी तो पौधे की जड़ें सड़ेगी, तो उससे भी अपनों को मतलब घाटा ही हुआ है, तो ये सारी चीजें विशेष करके ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों ने, और खेती को मन लगा के करेंगे तो हकीकत में मैं बोल रहा हूँ कि मेरी पढ़ाई एमकॉम के बाद में भी मैं खेती स्वयं कर रहा हूँ, और मैं तो कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी कर रहा है, और हम अच्छी चाव से खेती करते हैं, और मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि खेती करने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा उत्पादन भी मिलता है, बस समय पे इसे ध्यान रखना है, मतलब सोना नहीं है, और सोना है तो समय पे सो और समय पे खड़े भी हो।
3: बिल्कुल सही कहो, कहीं सबसे अच्छो रोजगार अगर छे तो वो खेती किसानी को छे, और एकाम हमको बड़ो खुशी हुई है जानी न कि अब पूरो पूरो उना तरीका से खेती करी रहे छे भाई जगन्नाथ पटेल मोटका माफी जिला खंडवा से, आप हमारा बीच आया और आपना अपना जीवन का खेती किसानी का लेन न इतना अच्छा अनुभव हमारा सुनने वाला भाई बहन से साझा करया, एक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: राम राम।
0: भाई बहना अभी अपन ना प्रगतिशील कृषक जगन्नाथ पटेल से बहन सुनीता पंडित की समसामयिक कृषि पर चर्चा सुनी और बात करा अब अपन घरेलू नुस्खा की। तो भाई बहना हूँ बात करी रही है बह हमारी हर भारतीय रसोई की शान चमकती दमकती पीली हल्दी की। हल्दी सिर्फ सब्जी का रंग और स्वाद करनी बढ़ाए या तो असल में गुण ना की खान है। और हमारे तमना भी पहला सुनी होगा कि हमारी जो दादी नानी रहती थी वे कहती थी कि भाई जरा सी भी कहीं चोट लगी गई या सर्दी खांसी होगी तो सीधी नूंज कहते कि बस हल्दी को दूध पी ला सवेर तक तो नज ही जाएगा। तो उनकी बात शत प्रतिशत सही भी है। तो अपन और जाना ये हल्दी का जो जादुई फायदा कहीं कहीं है। तो भाई फिर ना हल्दी में एक तत्व रहे जो शरीर की जो बीमारी ना है उनका और इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत दे। तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ाए, चोट और दर्द में भी राहत दे, क्योंकि एक अपना कहीं भी शरीर में अगर सूजन है या कोई अंदरूनी चोट है तो हल्दी उका बहुत तेजी से ठीक करने को काम करे। बदलता मौसम में होने वाली जो खांसी है कफ की समस्या है उकमा भी अगर गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिले इन तम फील होगा सोती टेम तो तुम्हारा तुरंत आराम में लगो। पाचन तंत्र भी दुरुस्त रख। अगर तमा पेट में गैस या अपच की समस्या रहे तो भोजन में हल्दी को सही इस्तेमाल से पेट का साफ और स्वस्थ रख। और फिर त्वचा में निखार तो सबका चाव, चाहे भी बेन ना हो कि चाहे भाई ना हो, चेहरा पर दाग धब्बा हो या फिर चमक बढ़ानी तो हल्दी और बेसन का उपटन जो है वो आज सबसे बढ़िया और प्राकृतिक नुस्खो भी है। तो बस इका साथ अपनो त्वचा को निखारापन बढ़े लांगा। पर अब आनंद लीला एक और लोकगीत को जिक गायो है बेन हेमलता उपाध्याय और साथी नाना।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: भाई बिरना संदेश का पहला अपर्णा बेन हेमलता उपाध्याय और साथीना को गायो प्यारो सो लोकगीत सुनियो थो। अब अपन जानीला आज का मंडी भाव के बारे में। तो कृषि उपज मंडी समिति संयोगितागंज प्रांगण में आज सोयाबीन को न्यूनतम भाव रियो 3,300 रुपया प्रति कुंटल से लीन अधिकतम रियो 6,045 रुपया प्रति कुंटल। गेहूँ को भाव रियो 1,888 से लीन 2,090 रुपया प्रति कुंटल। मक्का को एकज भाव रियो 2,000 रुपया प्रति कुंटल। अन डालर चना को न्यूनतम भाव रियो 5,500 रुपया प्रति कुंटल और अधिकतम भाव रियो 9,505 रुपया प्रति कुंटल। तुअर को भाव रियो 5,705 से 6,005 रुपया प्रति कुंटल। मूंग को भी एकज भाव रियो 5,500 रुपया प्रति कुंटल। अन राजमा को न्यूनतम भाव रियो 8,315 और अधिकतम भाव रियो 9,000 रुपया प्रति कुंटल। अन आमचूर को भाव रियो 5,100 सलीन 12,010 रुपया प्रति कुंटल। तो ई तो था अपना आज का मंडी का भाव। और आज व्यंजन में अपन बात करांगा भुट्टा की कचोरी की, क्योंकि भाई बहन आप सेहत की बात अपन ने कर ली, हल्दी का फायदा भी जान लिया। पर भाई बहन जब तक हमारी रसोई से बारिश का मौसम में चटपटी खुशबू नहीं आए जब तक तो शाम अधूरी सी लगा, और खास कर तो तब जब हमारा खेत नाम में भुट्टा होए। तो आसाम में फिर अपन कैसे बची सकता है भुट्टा की कचोरी से, तो अपन जानीला आज की विधि कि भुट्टा की कचोरी कैसे बनावा। अन आज विधि सुनना का बाद काल हूँ तमारा पावनी आई जाऊँगा तो आज तुम्हारा बनाइन खवानी भी पड़ेगी। तो सबसे

पहला तो विधि जानी ला, तो खाली अपना जरूरी है भुट्टा का दाना अपना 2 कप या भी हल्का सा उबला और दरदरा पिसिया हुई मैदा, या फिर अगर मैदो नहीं लेना हो तो आटो भी ले सकता है। 2 कप मैदो या फिर आटो जो कचौड़ी को अपन डो बनाए उका सरू। मसाला में अपना बारीक हरी कटी मिर्च और अदरक को पेस्ट, सौंफ, जीरो, हींग, लाल मिर्च, गरम मसालो और आमचूर पाउडर। और तलने के लिए तुम तेल भी इस्तेमाल कर सकता हो, या फिर अगर घी से अगर तुम्हारे जमा तो घी को भी उपयोग ली सकता हो। अब इका बाद इका बनाने की विधि कही है, तो एक में अपना मैदा या आटा में अपन जो भी उपयोग में ले रहा है उकमा थोड़ो सो नमक स्वाद का अनुसार 2 चम्मच तेल को मोयन और उकमा अपन गुनगुना पानी से मुलायम आटो गुथिन उका 15 मिनट का लिए ढाकिन रखी दांगा। उका बाद अपन एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करांगा जिकमा की हींग, जीरो, सौंफ और हरी मिर्ची और अदरक को तड़को लगाएंगा। अब इकमा अपन दरदरा जो पिसाई भुट्टा का दाना है वी डाली दांगा, जिकमा अपन साथ में लाल मिर्च, गरम मसालो, अमचूर और नमक मिलाने का अपन तब तक भुनांगा जब तक की नमी खत्म नहीं हो जाए। और जब मसालो थोड़ो सेक ही जाए तो वी तो बेड़ना एक में बहुत माहिर है कि जब मसालो सेक ही जाए तो एक अलग खुशबू आने लगा, तो उससे अपन पहचान कर ही लगा कि भाई अपनो मसालो सेक ही गयो है। उका बाद या जो तुम्हारा मसालो तैयार हो जाए तो यो अपनो कचौरी की स्टफिंग हुई जाए। अब आटा की जो छोटी छोटी लोई अपना बनानो है और उनका पूड़ी जसो बेली लांगा, और बीच में अपन उपमा भुट्टा को जो मसालो है उसका भरीन अच्छी तरह से बंद करना है ताकि जब अपन का तला तो वो खुला नहीं। तो यो ध्यान रखना है कि जब अपन उसका बंद करा तो अच्छी तरह से करना है जिससे कि वे खुला नहीं और फैला नहीं उसको मसालो। अब इनका अपन धीमी आँच पर कढ़ाई में सुनहरा और खस्ता होने तक तल लांगा। उसमें यह बात बहुत ध्यान रखना की है कि जब भी कचौरी कोई भी प्रकार की बनाओ तो उसमें अपना जो आँच है वह थोड़ी कम रखनी रही, क्योंकि एकदम अपन सोचा जल्दी रही और अगर तेज आंच कर दी तो फिर वह कचौरी या तो अंदर से कच्ची रह जाएगी और अपना भी नुकसान कर ही देगी। तो लो भाई तैयार है अपनी गर्मा गर्म खस्ता भुट्टा की कचौरी, कदम चटनी या टमाटर का सॉस का साथ भी परिवार का परोसी सकता हो। तो या तो अपन ने आज की बात कर ली और साथ साथ खाना पीना का साथ साथ थोड़ा सो सेहत को भी ध्यान रखना है। असोनी की भाई मन कचौरी बनाई दी तो एक आध दो स्वाद का लिए खैली बहुत है, पर उससे ज़्यादा भी नहीं खाना, नहीं तो अपना नुकसान कर देगी। और साथ साथ अपना जो खेत का कामकाज भी है उनका भी अपना टेम टेम पर ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा कि अपन आज जो भेंट वार्ता सुना थी अपना प्रगतिशील कृषक भाई ने बताया था कि भाई टेम टेम पर निरीक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में तम फसल लगाई दी, मेहनत करी, सब अच्छो चली रही है, पर अगर कीट और रोग लगी गया तमना निरीक्षण नहीं करो तो फिर वह पूरी मेहनत तुम्हारी बेकार हुई जाएगी। तो ऐसा में तुम्हारा इन्हीं बात को विशेष ध्यान रखना है कि टेम टेम पर अपना खेताड़ी जानो है, निरीक्षण करना है, और थोड़ी बहुत भी अगर अपना लगी रही है कि कीड़ा हुई रहा है, कीट हुई रहा है, तो तुरंत अगर तुम्हारे जानकारी नहीं है तो अपना नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कोई कृषि विशेषज्ञ से तुम जानकारी लें, जो भी जरूरी उपाय है वे समय से करना है ताकि अपन कीट और रोग का नियंत्रित कर सका और अपनी जो फसल है वह ज़्यादा को नुकसान नहीं हो। तो इन्हीं बात को ध्यान रखना है। और अब घड़ी की रही है कि अब कार्यक्रम को बखत भी हुई चले है, तो इना सफर का अपन न्याज दावी राम, सब किसान भाई बिरना का प्रियंका की राम राम।

अभी आपने सुना ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में, इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रगति, सुशासन और बुनियादी ढांचे के क्रियान्वयन में हो रहे बदलावों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 53वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 6 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा शामिल थी। कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्रों से जुड़ी हैं और 9 राज्यों में चल रही हैं। आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आज हम इस बैठक के महत्व, नागरिकों के लिए इसकी प्रासंगिकता और इससे जुड़े अन्य मुद्दों को समझेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्ते।
2: प्रफुल्ल जी, कल की बैठक में चर्चा जिन विषयों पर, जिन मुद्दों पर हुई, उन पर बात करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रगति प्लेटफॉर्म असल में है क्या और इसका क्या महत्व है।
3: एक अनूठा प्रयास है कि जो भी विकास की परियोजनाएं बनती है, बहुत बार ऐसा होता है कि विकास की परियोजनाएं बनती तो जरूर है, लेकिन उसका यदि ठीक से रिव्यू नहीं हुआ, उसका फॉलोअप नहीं हुआ, तो बहुत बार योजना अच्छी होने के बाद भी उसका प्रत्यक्ष परिणाम नहीं दिखता है। इसलिए प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये प्लेटफॉर्म, आईसीटी बेस्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च 2015 में इसको लॉन्च किया था। ये मल्टी मॉडल सिस्टम है, एक साथ बहुत सारे चीजों को आप दिखा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। और खास करके जो डिलेड प्रोजेक्ट्स थे उस समय के, उसमें बहुत सारा उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग किया गया और उसी का नतीजा है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स डैम से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, जो लिंगरिंग ऑन थे अनेक वर्षों से, दशकों से, उनको इस माध्यम से। तो ये बेसिकली डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, इन सब का एक तरीके से इंटीग्रेशन है। इसमें स्टेट के सेक्रेटरी, यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के संबंधित अधिकारी, ये सब उसमें जुड़ सकते हैं। तो समन्वय की एक भूमिका और समय समय पर विकास की परियोजनाओं को एक तरीके से एड्रेस करने के लिए प्रगति, प्रोग्रेस, जिसको अंग्रेजी में इस एब्रिविएशन को ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो उस प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, इस रूप में हम इसको देख सकते हैं।
2: इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लागू करने में अक्सर एक आम शिकायत उनके पूरा होने में देरी की रही है, और जब हम प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो कभी कभी उनमें गुणवत्ता से समझौता हो जाता है। और शायद यही वजह है कि कल जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि रफ्तार और गुणवत्ता दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। इसे आप कैसे देखते हैं?
3: हमने सरदार सरोवर डैम से लेकर बहुत सारी परियोजनाओं में देखा, प्रधानमंत्री जी का अपना खुद का इसमें अनुभव है, कि अनेक कारणों से इस तरीके का डिले हो जाता है और वो डिले उस योजना के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में देरी होती है। केवल उतना नहीं, उसकी कॉस्ट भी मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है और वो अल्टीमेटली तो लोगों पर, क्योंकि सरकार उस योजना के लिए पैसे जो खर्च करती है वो तो टैक्स कलेक्शन से ही आते हैं। और जब हमको ये दिखता है कि कोई योजना जो एक्स अमाउंट में हो रही थी, उसके सडनली 3x या कभी कभी तो 10x तक उसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है, क्योंकि वो इतनी डिले हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, प्लानिंग के समय ही उसके आगे के जो सीढ़ियां है उनको निश्चित करना, उसके गुणवत्ता के भी मानक निश्चित करना, तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उसका स्पीड और उसके गुणवत्ता के आधार पर जो पैमाने हैं, उसके पैरामीटर्स हैं, उन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए भी प्रगति प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत उपयुक्त साबित होता है इसी कारण से।
2: समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं उनको अलग अलग हिस्सों या पैकेजेस की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एकीकृत इकाई के तौर पर देखना चाहिए और उसी तरह से उनकी निगरानी की जानी चाहिए, उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। ये क्यों जरूरी है?
3: देखिए, बहुत सारी योजनाएं बनते हुए क्लियरेंसेस के इश्यूज होते हैं और उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज का भी रोल होता है। मतलब योजना रेलवे की है लेकिन उसमें एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का भी क्लियरेंस है, कभी एनएचएआई का भी, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का भी ये आता है। यदि हम इस सारी योजना को प्लानिंग के स्टेज पर ही इंटीग्रेटेड अप्रोच में एकात्म दृष्टि से देखें तो क्या होगा? दो चीजें होंगी। एक, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है, आर्थिक और जो तकनीकी दोनों विषयों पर, उस फिजिबिलिटी को हम इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन से वर्कआउट कर पाएंगे। दूसरा, जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि मान लीजिए रोड का काम हो गया, और रोड का काम होने के बाद ध्यान में आता है अरे यहाँ से तो बाद में कोई मेजर अंडरग्राउंड केबलिंग का काम होना था या ड्रेनेज का काम होना था, फिर वो रोड जो है वो उसका नुकसान होता है। यदि इंटीग्रेटेड अप्रोच से

0: प्लानिंग रही और उसका एग्जीक्यूशन रहा, तो अपने आप ही उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और लोगों को उसका उस योजना का पूरा लाभ भी मिल सकता है। तो एक तरफ टेक्निकल इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का एस्पेक्ट है, दूसरा इसकी टाइम पर डिलीवरी और उस योजना के संपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए ये एकात्म दृष्टि बहुत आवश्यक है।
1: हम जब इस एकीकृत इकाई की तरह देखने की बात करते हैं, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं होती हैं उनके लिए जब एकीकृत पहल अपनाते हैं, तो उसके लिए अलग अलग मंत्रालयों का, विभागों का और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल होना भी चाहिए। ये तालमेल कितना जरूरी और कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
0: मुश्किल जरूर होता है और इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे एक तो स्वाभाविक रूप से लोगों को दिखता है वो राजनीतिक कारण होता है, किसी राज्य स्तर पर किसी एक की सरकार है, दूसरी तरफ दूसरी। लेकिन समान राजनीतिक दल की सरकार होने के बाद भी या केंद्र सरकार के भी विभिन्न, मुझे शुरू में याद है जब फास्ट ट्रैक पर रेलवे के प्रोजेक्ट बनाने की बात हुई थी, तो उसमें बहुत सारे जमीन के मामले जो है वो एनवायरमेंट के विषय में फंस जाते थे
1: जी,
0: और वो क्लियरेंस मिलते मिलते देर हो जाती थी, इसमें रेलवे की कॉस्ट बढ़ जाती थी। ये दूसरा विषय होता है। तीसरा, हर डिपार्टमेंट का अपना एक वर्क कल्चर और एक अपनी काम करने की पद्धति विकसित होती है, उसके बारे में वो प्रिसिडेंस के आधार पर चलता है। गवर्नमेंट की अपनी एक मेमोरी होती है, वो डिपार्टमेंट की मेमोरी होती है, उसमें वो बहुत बड़ा बदलाव करना नहीं चाहते क्योंकि उसमें नियमों में और इसमें भी कहीं उनको बदलाव करने पड़ते हैं। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण होता है। चौथा कारण ये होता है कि अभी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इस प्रोसेस में इंटरवीन करते हैं, तो कभी एनवायरमेंट के नाम पर, कभी सोशल जस्टिस के नाम पर, कभी और अनेक विषयों के नाम पर। एक्टिविज्म जब शुरू होता है या लीगल प्रोसेसेस में उसमें हस्तक्षेप किया जाता है, तो ये समन्वय और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो लीगैलिटीज भी फिर इंटर डिपार्टमेंटल कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ा देती है। तो इस कारण से ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है और ये जो एकीकृत अप्रोच है किसी भी परियोजना के प्लानिंग में ही उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच में देखने का, उसके कारण मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा विषय सेक्रेटरीज के लेवल पर वहीं पे एड्रेस हो जाता है और उसको फिर एक्चुअल एग्जीक्यूशन के लेवल पर बहुत सारे वो विषय स्मूदनिंग वे में हैंडल हो सकते हैं जो पहले शायद प्लानिंग के लेवल पर नहीं आते थे, एग्जीक्यूशन के लेवल पर आ जाते थे।
1: जी, अभी हम बात कर रहे थे, आपने जैसा कहा कि जब भी ये परियोजनाएं बनती हैं या जब ये लागू होती हैं, तो देरी होने की वजह से इसकी जो कीमत होती है, इसकी जो लागत होती है, वो काफी बढ़ जाती है। जो इसका असर होता है वो अंतिम उपयोगकर्ता यानी कि हम एंड यूजर जिनको कहते हैं, आम आदमी, व्यवसायों और आखिरकार अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। तो इससे निपटने के लिए प्रगति प्लेटफॉर्म की कितनी अहम भूमिका है?
0: बहुत बड़ी भूमिका है। कल की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि हमको एंड टू एंड अप्रोच इसमें लेना चाहिए और जो क्रिटिकल गैप्स है उनको फिलअप करने के लिए हमको कमीशनिंग के समय और डिलीवरी के समय हम किन उद्देश्यों से इस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाह रहे हैं और वो उद्देश्य हम सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। तो गुणवत्ता का एक पैरामीटर तो ये भी है ना कि जिनके लिए बना रहे हैं उन तक वो योजना पहुंच रही है नहीं, या उसके कारण उनका, जैसे ईज ऑफ लिविंग की बात आजकल आती है, तो उनका सही में उसके कारण जीवन मान जो है वो सहज हो रहा है या नहीं। मुझे लगता है कि प्रगति जैसे टेक्नोलॉजी, मल्टी मॉडल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, इंटर डिपार्टमेंटल डायलॉग का उपयोग करते हुए इन योजनाओं के बारे में पहले नियोजन और फिर कार्यान्वयन होना, उसका एक तरीके से अनुवर्तन होना, फॉलो अप होना, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि प्रगति प्लेटफॉर्म ने सहज की है और उसका निश्चित इस संदर्भ में उपयोग है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात और कही इस बैठक में कि उन्होंने कहा कि बड़े परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की प्लानिंग करते वक्त ढांचागत सेवाओं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के लिए कॉमन यूटिलिटी कॉरिडोर की संभावना तलाशनी चाहिए। तो ये यूटिलिटी कॉरिडोर्स जिनकी बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, वो लागत कम करने और लागू करने में, जो भी परियोजनाएं हैं उनको लागू करने में आने वाली रुकावटों को दूर करने में क्या भूमिका निभा सकते हैं और कितने जरूरी हैं?
0: बिल्कुल जरूरी है। देखिए अभी जैसे मान लीजिए कि फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है
1: जी।
0: और रेलवे ने इस पर बहुत बड़ा प्रगति की है, तो क्या ऐसी संभावना ही नहीं हो सकती कि जहां पे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के लिए भी उस कॉरिडोर का कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत सारे संसाधन हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक केवल रेलवे के माध्यम से नहीं पहुंचाए जाते, तो कॉस्ट जो किसी भी चीज की जो बढ़ती है वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ती है।

0: ऐसा होता है कि एविएशन सेक्टर के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर में कुछ फैसिलिटी, अभी तो मैं केवल कार्गो के संदर्भ में बोल रहा हूँ,
1: जी
0: रेलवे के लिए अलग है, लेकिन वो है एक ही स्थान से, तो
1: बिल्कुल
0: वो अलग अलग जगह पर क्यों हो? फिर वो कॉमन हो सकती है, उसमें स्पेस शेयरिंग हो सकता है, प्राइवेट इंडस्ट्री वैसे करती है, तो
1: जी।
0: ये गवर्नमेंट इसमें भी हो सकता है।
1: डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक और कृषि डेटा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। किसानों के लिए ये कितना जरूरी देखते हैं आप?
0: जी, बहुत महत्वपूर्ण कदम है एग्री स्टैक के माध्यम से। एक बार किसान इसमें इस पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएगा तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सारा ही एग्रीकल्चर डेटा कि किस तरीके की फसल आने की संभावना है, किस तरीके का उसको रिटर्न मिलने की संभावना है, उसकी सरकार खरीद करेगी तो उसके लिए उसको क्या मिलने की संभावना है, ये तीनों चीजों का इंटीग्रेशन ही एग्री स्टैक के माध्यम से संभव होगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो दिक्कत ग्राउंड पर अभी आ रही है, क्योंकि भारत का किसान इस तकनीक के बारे में बहुत ज्यादा उसको ट्रेन नहीं किया गया
1: जी
0: है, तो अभी कुछ स्थानों पर इसका, जिसको हम कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन या प्रशिक्षण, तो मुझे लगता है कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में ये जो किसानों के अलग अलग कोऑपरेटिव्स बने हैं, संगठन बने हैं, इस प्रशिक्षण योजना में उपयोग होता है, तो एग्री स्टैक ये लॉन्ग टर्म में हमारी फूड सिक्योरिटी और उसके साथ साथ हमारा जो असेसमेंट है सारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, उसके प्रोसेसिंग का, उसके परचेसिंग का, इसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा।
1: प्रगति, हम जैसे बात कर रहे थे इसको शुरू हुए 1 दशक से ज्यादा हो चुका है, तो भारत में गवर्नेंस को ज्यादा बेहतर बनाने और जवाबदेह बनाने में अब तक ये किस तरह की भूमिका निभा चुका और आगे आप इसके लिए क्या देखते हैं? आने वाले सालों में ये कितनी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
0: देखिए, हम पिछले 10-12 साल में, खास करके प्रगति का ये आने के बाद, जिस तरीके का हम सारा ये देख रहे हैं कि कितने गति से प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स तो बिफोर टाइम डिलीवर हुए हैं। प्रधानमंत्री अपने, खास करके राजनीतिक भाषणों में, हमेशा कहते हैं कि जिसका हम भूमि पूजन करते हैं उसी का फीता हम ही काटते हैं, तो ये एक सेंटेंस ये दिखाता है
1: जी
0: कि इसके कारण प्रोजेक्ट डिलीवरी की कितनी एफिशिएंसी बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो कॉस्ट एस्केलेशन होता था उसमें कटौती हुई है, इंटर डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन इसमें बढ़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण इस सारे काम में टेक्नोलॉजी का यूज इंटीग्रेशन में वो बढ़ा है, और मुझे लगता है इसके कारण ईज ऑफ लिविंग में एक बहुत बड़ा अंतर आया है। हमने एंड टू एंड डिलीवरी में बहुत बड़ी छलांग लगाई है, हमारी बहुत सारी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की इसके कारण घटी है, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट गवर्नेंस के, डिलीवरी के संबंध में हमने प्राप्त किया है।
1: प्रफुल्ल केतकर जी, आपने आकाशवाणी के सुर्खियों कार्यक्रम में भाग लिया और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रगति, सुशासन और बुनियादी ढांचे के क्रियान्वयन में हो रहे बदलावों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsZone AIR और यूट्यूब चैनल NewsZone AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे साथ यानी रूपाली के साथ, तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं ईद का चांद सिर्फ आसमान में नहीं निकलता, वो तो उन दिलों में भी उतरता है जहाँ किसी की याद चुपके से घर बना चुकी हो, वो मोहब्बत जिसका इजहार शायद कभी लफ्ज़ों में नहीं हुआ मगर जिसका एहसास दिल के किसी कोने में महफूज है। तो आइए इस ईद की चांदनी में यादों के पन्ने पलटते

हैं और बातें करते हैं कुछ मोहब्बत की, और आपको सुनवाते हैं वो नगमे जिनमें मोहब्बत की खुशबू आती है। तुम वो शुरुआत हो जिसकी मैंने कभी तलाश नहीं की थी, लेकिन जब तुम मिले तब एहसास हुआ कि मैं शायद बरसों से अनजाने में तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें पाने के बाद समझ आया कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में इत्तफाक से नहीं आते, वो हमारी अधूरी दुआओं का जवाब बनकर आते हैं। और अब दिल सिर्फ इतना जानता है कि दुनिया में बहुत कुछ चाहा जा सकता है, मगर मुझे बस वही चाहिए था जो मुझे तुम में मिल गया।

जब हम दोनों पहली बार मिले थे तब कहाँ पता था कि ये रिश्ता इतना खास बन जाएगा। कुछ पलों की वो मुलाकात कब दिल की सबसे खूबसूरत याद बन गई पता ही नहीं चला। तेरी बातों में कब अपनापन और तेरी मुस्कान में कब सुकून मिलने लगा पता ही नहीं चला। धीरे धीरे तुझसे बात करना मेरी आदत और तेरा इंतज़ार मेरी चाहत बन गया। वो पहली मुलाकात आज भी याद आती है तो ये दिल मुस्कुरा उठता है। काश काश कि ये वक्त वहीं ठहर जाता और हम उन पलों को फिर से जी पाते, क्योंकि तुझसे मिलना सिर्फ एक मुलाकात नहीं मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ था, और शायद इसी वजह से आज भी वो दिन मेरे दिल के सबसे करीब है।

तुम पर तो पूरी किताब लिख दूँ, जो दिल में है वो हर जज्बात लिख दूँ। तुमसे मिले थे जो कुछ पल मुझे, उन्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे हसीन सौगात लिख दूँ। कुछ बातें हैं जो लफ्ज़ों में उतरती नहीं, तो खामोशियों में तुम्हारी हर बात लिख दूँ। मेरी आँखों में जो ठहर गया है चेहरा तुम्हारा, उसे अपनी हर दुआ की शुरुआत लिख दूँ। तुम्हें चाहना कोई किस्सा नहीं, तुम्हें चाहना कोई किस्सा नहीं, मेरी रूह में बसे एक खूबसूरत एहसास हो तुम। मैं चाहूँ तो ज़माने से छुपा लूँ तुम्हें, मगर अपने दिल से कैसे छुपाऊँ। तुम मेरी कहानी का वो हिस्सा हो जिसे हर बार लिखूँ, तो बस तुम्हारा नाम लिखूँ।

मेरी पहली मोहब्बत हो तुम, इस दिल का पहला एहसास हो तुम, जिसे देखकर पहली दफ़ा दिल को सुकून मिला, वो खूबसूरत सा पहला दीदार हो तुम। तुमसे मिलकर ऐसा लगा जैसे अधूरी ज़िंदगी को कोई वजह मिल गई, वरना हम तो बस यूं ही भीड़ में खुद को खोए फिरते थे। तुम आए तो हर खामोशी में भी एक आवाज़ सुनाई देने लगी। न जाने तुम्हारे साथ ऐसा क्या रिश्ता जुड़ गया कि अब हर दुआ में बस तुम्हारा नाम रहता है। तुम्हारी मुस्कान से शुरू होता है दिन मेरा, और तुम्हारे ख्यालों में ही हर शाम ढलती है। सच कहूँ तो मेरी चाहत भी तुम हो, और इस दिल का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी तुम।

कुछ पल का साथ देकर तुमने मुझे पल पल के लिए बेचैन कर दिया। तुम्हारे साथ बिताए वो थोड़े से लम्हे न जाने क्यों इतने अपने लग गए कि अब तुम्हारी गैर मौजूदगी मुझे हर पल खलने लगी है। अजीब सा है ना ये लगाव भी। अब हर आहट में न जाने क्यों मुझे तुम्हारे होने का एहसास होता है। हर खामोशी में मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है। शायद तुम्हारा जाना ही आसान था, मगर तुम्हारी आदत से दूर होना उतना आसान नहीं।

हंसकर पूछता है वो शख्स मुझसे कि बताओ मोहब्बत का पैमाना क्या है। नज़रें झुकाकर कहती हूँ मैं, ये दिल तेरा और बस तेरा है। न जाने कौन से रास्ते से आकर बैठ गए हो दिल में, तन्हा तन्हा सा महसूस करती हूँ खुद को अब भरी महफिल में। तुम ना हो तो भी तुम्हारी यादें साथ रहती है, तुम्हारी मदहोश आवाज़ हमेशा कानों में गूंजती रहती है। ना छोड़ोगे अब कभी साथ मेरा, वादा करो मुझसे, चाहूंगी तुम्हें दिल से, ये भी कहती हूँ मैं हक से। चाहत के सिवा मेरे पास कुछ और नहीं है, तुम्हें चाहना मुझे नहीं पता कितना गलत और कितना सही है।

दोस्तों, कुछ लोग ज़िंदगी में इत्तेफाक बनकर नहीं आते, वो दुआ बनकर आते हैं। उनसे मिलने के बाद समझ आता है कि दिल किसी को बिना वजह भी चुन सकता है, जो हमारे हर अधूरे ख्वाब का खूबसूरत जवाब होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब मुझे यानी रूपाली को दीजिए इजाज़त प्रोग्राम ख़त्म करने की। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
2: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9779701075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
4: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
5: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया है।
1: इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
6: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति कल रायपुर में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
7: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
8: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विलवन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विलवन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एनयूएनजी को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोरदोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Massive flash flood hits Nepal-Tibet border, claiming 46 lives and leaving nearly 500 people missing, including over 100 Indians. India assures all possible assistance as rescue and relief operations intensify in the Himalayan nation. Bihar and Uttar Pradesh step up preparedness amid possible rise in water levels of rivers after flash floods in the neighboring country. India and China reaffirm commitment to peace and tranquility in border areas, agree on 8-point consensus at 25th round of boundary talks in Beijing. Onam and Eid-e-Milad celebrated with joy and festive spirit. And in men's cricket, India tighten grip on Colombo Test as hosts Sri Lanka struggle at 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after follow-on. A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhotekoshi River this morning from the direction of Tibet. We have a desk report.
10: The sudden rise in water levels caused widespread destruction in Timore in Raswa district of Nepal near the Tibet border and the nearby Siafrubesi area, washing away vehicles, goods and other property. Preliminary reports suggest that the flash floods may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhotekoshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. The Nepal Tourism Board has advised people in the affected areas to remain calm, follow official safety instructions and stay updated through verified channels. Swati Rakheja for Akashvani News, Delhi.
9: Security officials said at least 93 people have been rescued from different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTB, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. Other foreign nationals are from the United Kingdom, Australia, the United States, Malaysia, South Africa and the Netherlands. Nepal Prime Minister Valendra Shah reviewed the situation and rescue and relief efforts with officials and federal parliamentarians from affected districts including Rasuwa, Nuwakot, Thading, Gorkha and Chitwan. Meanwhile, India has expressed solidarity with the people of the Himalayan nation and assured all possible humanitarian assistance to the neighbouring country following the devastating flash floods. In a social media post, President Draupadi Murmu conveyed sympathies to her Nepalese counterpart Ramchandra Podel and the people of Nepal. Vice President C.P. Radhakrishnan also expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Valendra Shah and conveyed his condolences in a social media post. Mr. Modi said India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. The Prime Minister said our teams are coordinating closely on rescue and relief efforts. The Indian Embassy in Kathmandu said it has remained engaged with the relevant authorities of the government of Nepal for early rescue and relief for Indian nationals affected by the flash floods. The embassy has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal today. The embassy said the people requiring assistance can contact the embassy on helpline +9779851316807, +9779709107500, and +9779813216117. These emergency numbers can also be contacted through WhatsApp. India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance, disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, India stands with Nepal and its people in the face of this challenge. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Our correspondent has the details.
11: Heightened vigilance is being maintained in six districts of Bihar: West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali. Meanwhile, Chief Minister Samrat Chaudhary said that a high-level team has been constituted to closely monitor the situation.
12: A high-level team has been constituted to look into the matter. The Chief Secretary and the DGP are monitoring the situation. If required, I will personally visit Valmiki Nagar.
11: Deputy Chief Minister and Water Resources Minister of the state, Vijay Kumar Chaudhary, said that the present water level of the Gandak River is relatively low, which is a positive factor. However, considering the possible water flow, authorities are prepared for the possibility of releasing up to 250,000 cusecs of water from Valmiki Nagar barrage to keep the situation under control. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
9: Union Home Minister Amit Shah spoke to Chief Minister Samrat Chaudhary over the phone in view of the flood situation in the neighbouring country. Mr. Shah assured the state government of providing all possible assistance to deal with the emerging situation. In Uttar Pradesh as well, vigilance has been intensified in the districts of Maharajganj and Kushinagar near the Nepal border. The flooding could lead to a rise in water levels in the Gandak and Naraini rivers in the two districts. Chief Minister Yogi Adityanath has directed the local administration to take all necessary precautionary measures and maintain strict vigil. The National Disaster Response Force, NDRF, has deployed 9 teams in Bihar and 11 teams in Uttar Pradesh to deal with the emerging situation following the flash floods in Nepal. NDRF Commandant Gyaneshwar Singh stated this while talking to media in New Delhi.
13: Home Ministry is monitoring the situation and the state government has also assessed the situation. Accordingly, we have deployed 2 of our teams in the Gandak River Basin. In Uttar Pradesh, we have deployed our teams in the area likely to be affected, particularly in the Kushinagar region. At present, 9 teams are deployed in Bihar and approximately 11 teams are deployed in Uttar Pradesh.
9: The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Kerala, Mahe, Sub-Himalayan, West Bengal and northeastern parts of India during the next 2 days. Talking to media, IMD senior scientist Dr. Naresh Yadav said, due to formation of low pressure area, heavy rainfall is also expected over South Uttar Pradesh and Northwest Madhya Pradesh tomorrow. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. Here with us on the news at 9. India and China have reaffirmed their commitment to maintain peace and tranquility in the border areas and create an atmosphere for healthy and steady development of bilateral relations. The 25th round of talks between the special representatives of India and China on the boundary question was held in Beijing yesterday. China's Foreign Minister Wang Yi and National Security Advisor Ajit Doval had a candid and in-depth exchange of views on the India-China boundary question and reached 8 points of outcomes and consensus. The two sides underlined their commitment to advancing negotiations on a framework for the settlement of the boundary question. It will be in accordance with the agreement on political parameters and guiding principles for settlement of the India-China boundary question signed in 2005 and the consensus reached in subsequent special representatives' talks in pursuit of a fair, reasonable and mutually acceptable solution. Union Minister of Railways Ashwini Vaishnav has said that Indian Railways is moving towards four-laning the entire high-density railway routes. In a social media post, Mr. Vaishnav said there are seven high-density routes spread over nearly 11,000 kilometers, which carry a major share of the country's rail traffic. The seven high-density routes are Delhi-Howrah, Howrah-Chennai, Chennai-Mumbai, Mumbai-Delhi, Delhi-Chennai, Mumbai-Howrah and Delhi-Guwahati. The minister said the expansion of these routes is significant as it will help create more capacity across the network and support the future growth of passenger and freight traffic. The Indian Medical Association IMA has urged people to remain vigilant amid a seasonal rise in influenza A, H1N1 cases, saying that the majority of infections are mild and self-limiting and there is no cause for panic. The IMA has advised people not to take antibiotics over the counter for flu symptoms, stressing that H1N1 is a viral infection and antibiotics do not kill viruses. The Delhi government today handed over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana. Out of this, 2,500 letters were given at a formal ceremony. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. Speaking on the occasion, Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu said, "This initiative is a significant step towards women's welfare, empowerment and dignity." Keralites worldwide today celebrated Onam with joy and enthusiasm as devotees thronged prominent temples on

0: श्रोताओं, आइए आपको एक सूचना दे दें। इस गुरुवार यानी कल दिनांक 27 अगस्त 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है सर्दी, खांसी, वायरल बुखार और जोड़ों का दर्द तथा बारिश के दिनों में होने वाली बीमारियां और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर ए के द्विवेदी होम्योपैथी विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। तो प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार यानी कल दिनांक 27 अगस्त 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। फ़ोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो फ़ोन करना ना भूलें कल दिनांक 27 अगस्त 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 तक। इस कार्यक्रम को आप विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6:00।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
3: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6:00।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, चित्रगीत में अब आपको सुनवा रहे हैं दिल ही तो है। इस फिल्म से आशा भोसले और साथियों की आवाजों में साहिर लुधियानवी की रचना।

इस गीत के साथ ही चित्रगीत समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है परिचर्चा, भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: हिमालय की ऊंचाइयों पर खींची एक ऐसी रेखा जिसे दोनों देश अपने अपने नक्शों में अलग अलग तरह से देखते हैं, एक ऐसी सीमा जो सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है बल्कि सुरक्षा का सवाल है, संप्रभुता का सवाल है, विश्वास का सवाल है और शायद एशिया की भविष्य की राजनीति का भी सवाल है। भारत और चीन, दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश, दो प्राचीन सभ्यताएं, दो उभरती हुई वैश्विक शक्तियां, लेकिन इनके रिश्तों का सबसे संवेदनशील बिंदु है सीमा। साल 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख में पैदा हुआ तनाव, गलवान की हिंसक झड़प, भारी सैन्य तैनाती और कई वर्षों तक चला गतिरोध, इन सब ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति केवल सीमा तक सीमित मुद्दा नहीं है। सीमा पर तनाव बढ़ता है तो उसका असर व्यापार पर पड़ता है, कूटनीति पर पड़ता है, राजनीतिक विश्वास पर पड़ता है और पूरे द्विपक्षीय संबंधों की दिशा बदल जाती है। अक्टूबर 2024 में दीपसांग और डिमचौक सहित 2020 के फ्रिक्शन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर समझौते के बाद दोनों देशों के बीच बीजिंग में हुई भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभरी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई इस मुलाकात का केंद्रीय बिंदु यही रहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता ही द्विपक्षीय संबंधों के विकास का मुख्य आधार है। आज की चर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या 25वें दौर की ये बातचीत सीमा विवाद के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस आधार तैयार कर पाई है या फिर ये प्रक्रिया केवल विश्वास की बहाली तक ही सीमित है। इस गंभीर और रणनीतिक मुद्दे पर गहन विश्लेषण के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार सेवानिवृत्त और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल अशोक कुमार, आपके साथ शुरुआत करते हैं। देपसांग और डिमचौक जैसे फ्रिक्शन प्वाइंट से पेट्रोलिंग और बफर जोन की व्यवस्था के संदर्भ में डोभाल और वांग यी की वार्ता को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या हम केवल टैक्टिकल डिसएंगेजमेंट यानी रणनीतिक रूप से पीछे हटने की स्थिति में हैं, या स्ट्रैटेजिक डी एक्सेलेशन यानी सेनाओं की वापसी की दिशा में कोई वास्तविक प्रगति हो रही है? क्या लगता है आपको?
3: मेरे ख्याल से अगर आप इसका घटनाक्रम ध्यान से देखें तो अक्टूबर 24 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात के तहत एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दोनों कंट्रीज के लोगों को, डिसीजन मेकर्स को दिया गया कि हमें इस मुद्दे को सुलझाना है। और उसके बाद पिछले जो 24वें मीटिंग हुई थी एसआर रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसमें तो उन्होंने यहां तक कहा कि हम पहले जो अर्ली हार्वेस्ट वाले ऑप्शंस हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो मुद्दों पर जहां पर ज्यादा विवाद है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि सिक्किम का इलाका और हिमाचल प्रदेश का इलाका और उत्तराखंड इलाका, ये तीन जगह ऐसे हैं जहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है भारत और चीन के अप्रोच में। इतना ही नहीं, यहां पर जहां विवाद है भी उस पर भी भारत अपने क्लेम के मुताबिक उन जगहों पर उसकी मौजूदगी है, जबकि चाइना का सिर्फ क्लेम है। और केवल उत्तराखंड में बाराहोती का मामला ऐसा है जहां पर उसमें ग्रेजिंग के दौरान में अक्सर हर साल आता है और फिर उसके बाद में वापस चला जाता है। इसके पहले दोनों देशों ने अपने नक्शे भी एक्सचेंज किए थे, दोनों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर के मिडिल सेक्टर माना जाता है, उसके नक्शे एक्सचेंज हुए थे और दोनों ने अपनी पोजीशन डिलिनिएट की थी। तो वहां पर एकदम से क्लैरिटी है कि हम क्या क्लेम कर रहे हैं और चाइना क्या क्लेम कर रहा है, और गैप बहुत थोड़ा है जो रिजॉल्व किया जा सकता है। पहली बातचीत में हम वहां तक पहुंच सके हैं। उस बातचीत के बाद में बाकी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं और इस बार चूंकि 12-13 सितंबर को इंडिया में ब्रिक्स की समिट होने वाली है, तो काफी कयास लगाए जा रहे थे कि इस 25वीं मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय सामने आएगा जिससे इस दिशा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन में कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन जब बातचीत खत्म हुई कल बीजिंग में, तो वहां पर ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो पहले लो हैंगिंग फ्रूट की बात हो रही थी उसको रिजॉल्व करने की, उसका भी जिक्र ना तो चाइनीज के स्टेटमेंट में आया ना भारतीय स्टेटमेंट में आया। मोटे तौर पर यह कहा गया कि 24वीं मुलाकात के बाद में दोनों देशों के बीच में प्रगति हुई है। यह चीज तो स्पष्ट नहीं है कि प्रगति किस किस फील्ड में हुई है, लेकिन पूरा टोन आप देखेंगे उस भाषा का, जो बातचीत के जो अंश बाहर सामने आए हैं, उससे लगा है कि दोनों देशों में एक आंतरिक इच्छा है कि इस मामले को स्ट्रेटजिक लेवल पर सुलझाया जाए। भारत ने ये चीज स्पष्ट मेंटेन किया है कि जब तक सीमाओं पर शांति नहीं रहती है, ये चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कूटनीतिक क्षेत्र हो, या और भी कोई रिलेशनशिप का क्षेत्र हो, उसमें रिलेशंस स्टेबल नहीं हो पाएंगे। और इसलिए उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम्स में जब WMCC की मीट होगी तो शायद इस दिशा में और प्रगति हो। मेरा मानना यह है कि दोनों देशों की तरफ इसको रिजॉल्व करने की इच्छा है, लेकिन दोनों की अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं और इसलिए इसका रिजोल्यूशन होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो विश्व में मौजूदा परिस्थिति चल रही है उसको देखते हुए मैं इस कदम को और जो स्टेटमेंट आए हैं उनको काफी पॉजिटिव तरीके से देखता हूं।
2: हर्षी, अगर आपसे समझना चाहें और अपने श्रोताओं को थोड़ा बैकग्राउंडर बताएं, तो 2020 में कन्फ्रंट्रेशन और गंभीर संकट रहा, 2024 में डिसएंगेजमेंट अरेंजमेंट्स की बात हुई, 2025 में डी एक्सकलेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और अर्ली हार्वेस्ट जैसे विचारों पर संस्थागत चर्चा हुई, इस वर्ष यानी 2026 में बाउंड्री डिलिमिटेशन, राजनीतिक समाधान की दिशा में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत। क्या यह कहना सही होगा कि भारत चीन संबंध अब क्राइसिस मैनेजमेंट, स्टेबलाइजेशन, पॉसिबल रिजोल्यूशन की तीन स्तरीय प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, या जैसा कि अभी जनरल अशोक बता रहे थे कि रिजोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करना अभी जल्दीबाजी होगी, क्या कहेंगे आप?
0: मुझे भी ऐसा लगता है कि रेजोल्यूशन तो ही कुछ दूर दिख रहा, रेजोल्यूशन नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो क्राइसिस में ये संबंध थे और जो बॉर्डर इश्यूज जिस तरह से सेंटर स्टेज पर आ गए थे 2020 के बाद, उसके बाद ये सतत प्रयास मुझे लग रहा है भारत की तरफ से और चीन की तरफ से कि कैसे डी एस्केलेशन हो और उससे ज्यादा एक पोलिटिकल कॉन्फिडेंस दोनों साइड्स में बने, क्योंकि संबंध जो भारत ने एक अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया था कि जब तक बाउंड्री में LAC में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, तब तक ये मानना कि भारत और चीन के संबंध एक नॉर्मल दो देशों के जैसे संबंध होते हैं उस तरह से हो जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया था 2020 के बाद और लगातार इस बात पर भारत अड़ा रहा कि जब तक हम बॉर्डर पर एक नॉर्मल सी नहीं देखेंगे, तब तक जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है ये नॉर्मल नहीं होगी। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए स्टेबलाइजेशन बॉर्डर पर हो गया है, उसको देखते हुए एक कॉन्फिडेंस दोनों देशों से निकल कर आ रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं और टॉप लीडरशिप दोनों देशों की ये चाहती है कि जो मुद्दे हैं, खासकर बॉर्डर का जो मुद्दा है, उसको पॉजिटिवली डील किया जाए। लेकिन रेजोल्यूशन अभी भी काफी दूर नजर आता है, क्योंकि रेजोल्यूशन के लिए कुछ जो प्रीरिक्विजिट्स हैं वो होने पड़ेंगे। एक तो दोनों देशों को स्ट्रेटेजिकली वो रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजिकली कंपैटिबल होने पड़ेंगे। देखिए, अगर हम चीन की विदेश नीति को इस समय समझें, जैसा दुनिया में बहुत बदलाव आ रहा है और अमेरिका जिस तरह से अपने पार्टनर्स और एलाइज के साथ डील कर रहा है, उसको देखते हुए कहीं पर चीन को ऐसा लगता है कि अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल पावर के तौर पर खड़ा नजर आएगा तो उसके संबंध अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर हो पाएंगे। तो चीन ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि वो उस तरह का एक एग्रेसिव प्लेयर नहीं है जिस तरह का वो कुछ सालों पहले नजर आता था, एटलीस्ट पॉलिसी वाइज। तो उसको देखते हुए वो ये चाहेगा कि भारत भी कुछ कदम बढ़ाए और भारत और चीन के बीच में कुछ सामंजस्य बने जो एक स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में ला पाए। अब सवाल यहां पर ये होगा कि क्या ये चीन की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है या ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देखते हुए, और उस टैक्टिकल एडजस्टमेंट पर भारत कितना विश्वास कर सकता है, क्योंकि भारत के साथ और भारत चीन संबंधों में एक बात जो लगातार होती रही है कि ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल मिसिंग रहा है। भारत क्यों और किन मुद्दों को लेकर चीन के ऊपर ट्रस्ट करे, ये बहुत बड़ा विषय है भारत चीन संबंधों में, और अभी तक मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां पैदा नहीं हुई हैं जहां पर भारत की तरफ से ये 100% कहा जा सके कि हम चीन को एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का 25th राउंड हुआ है टॉक्स का, ये उसी दिशा में संकेत दे रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं कि बॉर्डर पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे, और इसी बात को कमेंट भी किया दोनों इंटरलॉक्यूटर्स ने, वांग यी ने और अजीत डोवल ने। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस बात के लिए एक दूसरे की तारीफ और प्रशंसा की कि दोनों देश कमिटेड हैं इस समय कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। यहां तक तो हम पहुंच गए हैं और ये मुझे लगता है पॉजिटिव डेवलपमेंट है पीपल टू पीपल टाइज के पर्सपेक्टिव से, लेकिन क्या ये हमको एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन की तरफ ले जा रहा है, मुझे लगता है ये कहना भी जल्दबाज।
2: जी हाँ, बिल्कुल जल्दीबाजी होगा ये कहना। मेजर जनरल, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम थोड़ी बात सीमा प्रबंधन की करें तो एलएसी की अस्पष्टता और विभिन्न अवधारणाओं के कारण अक्सर लोकल फ्लैश प्वाइंट्स बनते हैं। इस बातचीत में बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर जो सहमति बनी है, क्या वो 1993, 1996 और 2013 के द्विपक्षीय समझौतों के ढांचे को पुनर्जीवित कर पाएगी, या आपको लगता है कि एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की आवश्यकता है?
3: हमारे पास में 1993, 1996, 2005 और 2013 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डिसाइड हुए थे, उन्होंने बहुत हद तक दोनों तरफ की सेनाओं को ग्राउंड पर भी आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने से बहुत हद तक रोका है। 2020 के गलवान क्लैश में, हालांकि ये बहुत दुखद घटना हुई है, बावजूद इसके दोनों तरफ से किसी ने भी आर्म्स का, शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। हम लोगों ने तो रायट कंट्रोल इक्विपमेंट होता है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया था, चीन ने उनका इस्तेमाल किया, पहले से तैयार हुए लेजर्स का इस्तेमाल किया, और इस तरह से हमको वहां पर थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मोटे तौर पर जहां पर भी चाइनीज ट्रांसग्रेशन होता है या दोनों तरफ के पेट्रोलों में क्लैश होता है, मोटे तौर पर वो चीज ग्राउंड पर एग्जिस्ट करती है, धक्का मुक्की होती है, पुश होता है, बट फायरिंग के जैसे केसेस जो सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दे वो अभी तक सीमित रहा है। लेकिन गलवान वाला जो क्लैश था उसने इन आत्मविश्वास के पॉइंट्स पर एक नया मेजरमेंट लाने की कोशिश की है, और हमको जरूरत है कि हम अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और जो बॉर्डर पे क्लैश होते हैं उनको हैंडल करने के तरीकों में और पॉजिटिव डेवलपमेंट लाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो लोकल लेवल पे क्लैश होते हैं, अगर वहां पर कोई भी लोकल कमांडर बहुत मैच्योर नहीं है और अपने देश द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स को फुल्ली ऑनर नहीं करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को नहीं मानता है, और इनएडवर्टेंटली या थोड़े से उग्रवादिता की वजह से गोली चल जाती है, तो जाहिर है दूसरा पक्ष भी उसका रिस्पॉन्ड करेगा और वह मामला काफी तूल पकड़ सकता है। कभी कभी वो मामला टैक्टिकल लेवल से बढ़ करके स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट के लेवल तक जा सकता है, तो इसलिए अब जरूरत है कि हम इस चीज पर और संजीदगी से काम करें, और उस संजीदगी को ग्राउंड पर उतारने का मेरी समझ से सबसे बढ़िया मॉडल यह है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करें। बॉर्डर का जो रिजोल्यूशन है वो तो लॉन्ग टर्म इशू है, उसके अपने बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हैं, बट मेरा मानना यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अगर दोनों देशों में पॉलिटिकल विल हो तो उसको डिलिनिएट करना, ग्राउंड में आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं। लेकिन मुझे लगता है मौजूदा समय में दोनों देश के सबसे पावरफुल लीडर्स हिस्ट्री में एक साथ हैं, शी जिनपिंग का चाइना में कंट्रोल एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडिया में लोकप्रियता और जो पॉलिटिकल पावर है, अगर दोनों में एक पॉलिटिकल विल हो तो मेरे ख्याल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करके, डिमार्केट करके आगे बढ़ना कोई असंभव सी चीज नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है, कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे दोनों देशों में विश्वास की कमी है, और इसका जीता जागता उदाहरण आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया था, उसमें चीन का कोई लेना देना नहीं था। बावजूद इसके चीन ने पूरा सेटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करना, सारा इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, वहां पर कमांड कंट्रोल सेंटर एस्टैब्लिश करना, हर तरह की मदद पाकिस्तान को की। और इस समय ये माना जा सकता है कि जो वेपन सिस्टम चीन में है वो पाकिस्तान को भी अवेलेबल होंगे, सबमरीन्स मिल रहे हैं, ढेर सारी चीजें हो रही हैं। और ऐसे में भारत का चीन के इंटेंशन पर विश्वास करना और भी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी दोनों देश डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, तब तक इस मुद्दे पर पॉजिटिव सिग्नलिंग हो सकती है, पोस्टरिंग हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकी बदलाव होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक छोटी सी मुझे आशा इसलिए दिखती है कि इस समय जो विश्व में बदलाव हो रहे हैं, जो ग्रुपिंग्स बन रही हैं डिफरेंट कंट्रीज की रीजनल सिक्योरिटी में, जो यूएस का अप्रोच चल रहा है और कभी कभी तो ब्रिक्स को नाटो के अगेंस्ट एक बुलवर्क भी माना जा रहा है, जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया का एक साथ आना उसके विरोध में खड़ा हो सकता है। तो अगर एक इंटरनेशनल कंपल्शन हुआ और इस कंपल्शन को रशिया, चाइना और इंडिया तीनों के अपेक्स लीडर्स ने, यानी प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समझा, आपसी विश्वास को बढ़ाया और एकजुट हुए, जो उसका स्पाइरल बेनिफिट होगा वो आपसी संबंधों में भी होगा, वो रिश्ते को रिजॉल्व करेगा, इंडिया और चाइना के बढ़ते हुए रिश्ते, इंडिया पाकिस्तान के बीच के डायलॉग को भी बेहतर कर सकते हैं। रशिया, चाइना और इंडिया के जो रिलेशनशिप में अगर बेहतरी हुई तो उससे भी इंडिया चाइना के रिश्ते को फर्दर इम्पेटस मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि मौजूदा समय में विश्वास की जो कमी है उस पर काम करना जरूरी है, साथ ही साथ LAC को डिलिनेट करना, उस पर काम होना चाहिए, बॉर्डर रेजोल्यूशन वो तो थोड़ा सा बाद में ही रखना पड़ेगा।
2: प्रोफेसर पंत, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं तब तक अन्य द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इसके विपरीत चीन व्यापार और कूटनीति को सीमा विवाद से अलग रखने की बात करता है। 25वें दौर की इस बातचीत के बाद आपको क्या लगता है कि भारत अपनी इस लिंकेज नीति पर अडिग रहने में सफल रहा है?
0: मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने ये तो कन्विंस चीन को कर दिया है कि जो संबंध है भारत चीन के, इनको टुकड़ों में नहीं देख सकते, इनको अलग अलग डिस्टिंक्ट एंटिटीज के तौर पर नहीं देखा जा सकता। तो मुझे लगता है उसी का मतलब एक तरह से इस बात पर अग्री करने लगा है कि दोनों साइड्स को पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहिए और बाउंड्री का, और वो ही दूरगामी इंटरेस्ट है दोनों साइड्स के, वो पूरे कर सकता है। हमने ये भी सुना भारतीय NSA को, डोवल साहब को ये कहते हुए कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो भारत और चीन दोनों पार्टनर्स हैं और जो एक प्रिडिक्टेबल फॉरवर्ड लुकिंग इंडिया चाइना रिलेशनशिप है ये महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए। और जिसका जिक्र भी हुआ कि दुनिया बदल रही है और उस बदलती हुई दुनिया में भारत और चीन अगर साथ काम करेंगे तो उससे बहुत कुछ बदल सकता है, और फेवरेबली जो बदल सकता है, क्योंकि दोनों का इंटेंट काफी हद तक ग्लोबली अगर हम देखें उसमें मिलता है कि हम दोनों देश ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, दोनों देश रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंस है एक दूसरे के कमिटमेंट को देखें, और खासकर 2005 का जो अग्रीमेंट था पॉलिटिकल पैरामीटर्स का, गाइडिंग प्रिंसिपल्स का, जिससे कि एक फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सॉल्यूशन बनता, इसकी बात दोनों ने करी है। तो कहीं पर भारत अपनी इस बात से चीन को कन्विंस करने में सफल रहा है। पुराना जो ढर्रा है वो नहीं चल सकता कि हम बाउंड्री इशू है उस पर प्रोग्रेस ना दिखाएं और दूसरी तरफ हम ट्रेड की और पीपल टू पीपल टाइज की और कल्चरल टाइज की, पोलिटिकल सिमेट्री की बात करें। तो मुझे लगता है वहां पर जरूर ये प्रोग्रेस हुई है, लेकिन वो प्रोग्रेस अभी भी आधी है, क्योंकि रिटोरिकली दोनों देश एक साथ भले ही हो लेकिन ऑन द ग्राउंड जो प्रपोजल्स हैं वो अभी भी अलग अलग तरीके से इवेल्युएट किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए बॉर्डर मैनेजमेंट की बात, इसीलिए क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन की बात बढ़ चढ़कर इस बार हुई, क्योंकि अगर बॉर्डर मैनेजमेंट इंप्रूव होता है तो उससे परसेप्शन भी इंप्रूव होता है कि दोनों देश कमिटेड है लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन के लिए। लेकिन अगर बॉर्डर मैनेजमेंट वीक होता है, अगर वहां पर तनातनी बॉर्डर एरियाज पर चलती रहे और वो मीडिया कवर करता रहे, बार बार ये बताता रहे लोगों को कि कैसे सेनाएं हमारी आमने सामने खड़ी हैं, वो एक दूसरे के सामने लगातार आ रही हैं, तो उससे वो जो ऑलरेडी लो ट्रस्ट फैक्टर है, ऑलरेडी लो विश्वास है, वो और कम होता है। तो मुझे लगता है इस बात को एड्रेस करने की इस राउंड ने जरूर कोशिश करी और एक बैलेंस्ड आउटकम निकल कर आया। अब ये बैलेंस्ड आउटकम क्या हमको एक सीरियस नेगोशिएटिंग स्ट्रेटेजी के तौर पर आगे ले जाने की क्षमता दोनों देश रखते हैं, ये मुझे लगता है आने वाला समय।
2: मेजर जनरल अशोक जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारी पर थोड़ी बातचीत अगर की जाए तो चीन द्वारा एलएसी के पार थिएटर कमांड स्तर पर बुनियादी ढांचे जिनमें एयरलिफ्ट है, हेलीपैड्स है और कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार किया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत ने जवाब नहीं दिया, भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी सीमाई कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया है, लेकिन एक रक्षा विश्लेषक के रूप में आपके अनुसार क्या सीमा पर यह ढांचागत संतुलन भारत को कूटनीतिक मेज पर अधिक बार्गेनिंग पावर यानी सौदा करने की शक्ति प्रदान कर रहा है, क्या लग रहा है आपको?
3: इसको अगर आप देखेंगे तो एक दोनों तरफ के टेरेन को देखना आपको बहुत आवश्यक है। जो चीन की तरफ का टेरेन है वो तिब्बतन प्लेट्यू है, और जबकि हमारे यहाँ बॉर्डर पे जाने के लिए हम ऊपर चढ़ाई करते करते जाते हैं। इसीलिए अगर आपको याद होगा कि गलवान क्लैश के बाद में या जब अक्टूबर 24 के बाद में फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट का एग्रीमेंट हुआ था, तो फोर्सेस को पीछे ले जाने वाली सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि जो चीन है उसका आर्गुमेंट था सेनाएं पीछे जाएं इक्वल डिस्टेंस में, जबकि अगर मान लो 20 किलोमीटर चीन की सेनाएं पीछे जाती हैं और 20 किलोमीटर हमारी पीछे जाते हैं तो उसको 20 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 घंटे लगेंगे और हमको 2 दिन लग सकते हैं। और भारत का मानना यह था कि दोनों सेनाओं का विड्रॉल हो वो इक्वल रिस्पॉन्स टाइम के बेसिस पे, क्योंकि दोनों तरफ के टेरेन डिफरेंट है, तो एक तो वो रियलिटी होना जरूरी है। दूसरे क्या है कि चीन ने 2015 में थिएटर कमांड बनाया था, जो उसका वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जो कंप्लीट चाइना बॉर्डर जो इंडिया को देखता है उसमें बनाया गया है। इसमें कुछ एक खामियां भी हैं, बट बावजूद इसके उसके ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो सिंगल कमांडर के तहत सेंटर्ड है। हमारे पास उस समय एक समय ऐसा था कि जिसमें हमारा जो चाइना का बॉर्डर है उसमें नदन कमांड भी शामिल था, वेस्टर्न कमांड भी शामिल था, सेंट्रल कमांड भी शामिल था, ईस्टर्न कमांड भी शामिल था, और उसके बाद में कुछ एडजस्टमेंट हुए जिससे थोड़ा सा वेस्टर्न कमांड को जो हिमाचल प्रदेश का इलाका था वहां से करके उसको सेंट्रल कमांड के अंदर लाया गया, बट अभी भी 3 कमांड्स में वो बाइफरकेटेड है। उसके अलावा उसमें एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एयरफोर्स एंड उनकी भी जिम्मेवारियां हैं। लेकिन अब जो थिएटर कमांड की बात इंडिया में चल रही है वहां पे कंप्लीट नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे एक सिंगल थिएटर होगा, तो वो भी फोर्सेस को ऑप्टिमाइज करेगा हमारे रिस्पांस मैकेनिज्म को बेहतर करने के लिए। दूसरा है कि हमने 2014 के बाद में पिछले 12 सालों में बॉर्डर्स में अभूतपूर्व सुधार किया है। अगर आप वहां पे जाएं तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप उसी इलाके में आ रहे हैं जहां पर उसकी स्थिति 2013-14 में हुआ करती थी, चाहे वो अरुणाचल का इलाका हो, चाहे लद्दाख का इलाका हो। टनल्स बन गई हैं, रोड्स बन गए हैं, रोड्स चौड़े हो गए हैं, लेटरल कनेक्टिविटी बढ़ गई है, एयरफील्ड्स आ गई एकदम फॉरवर्ड एरियाज में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का भी बहुत जोर है। लेकिन यह है कि चूंकि हमने शुरुआत थोड़ी लेट की थी और इसलिए अभी हमको अपना फुल पोटेंशियल पाने के लिए और भी मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। जोजिला का में सुरंग बन रही है, अभी जल्दी ऐसा होगा कि हमारा बॉर्डर का एरिया जो है और बॉर्डर के लोग जो हैं वो सब लैंड रूट से कनेक्टेड हो जाएंगे, कोई मौसम के मोहताज नहीं होंगे, और फोर्सेस को भी इस बेहतर कनेक्टिविटी से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूवमेंट करना इजी हो जाएगा। हमारा जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है फोर्सेस का, जैसे एयरफोर्स की लिफ्ट कैपेबिलिटी है, हम ओन एयरक्राफ्ट C-295 बना रहे हैं, जिससे क्या होगा कि अगर लॉन्गर डिस्टेंस में भी फोर्सेस को शिफ्ट करना पड़ा तो वो सब भी संभव हुआ। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट था जिसमें चीन को एडवांटेज मिला था, उसको गैप को खत्म करने के लिए इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है। आपको याद होगा अगर आप वर्बैटिम पढ़े, 2005 का जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें यह भी कहा गया था दोनों देशों के बीच में कि किसी फ्यूचर बॉर्डर सेटलमेंट में वहां की जो सेटल्ड पॉपुलेशन है हम उसका ध्यान जरूर रखेंगे, और इसलिए भारत के बहुत जरूरी है कि वाइब्रेंट विलेजेस के माध्यम से अपने फॉरवर्ड एरियाज में, क्लेम एरियाज में लोगों को बसाए। लेकिन लोग तभी बस सकते हैं जब वहां बुनियादी ढांचा, एजुकेशन की फैसिलिटीज, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज और वहां पर उनके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, सेना को, सबको एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी काफी काम हो रहा है, उसको और भी ज्यादा तीव्र दिशा देने की आवश्यकता है।
2: प्रोफेसर पंत आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि चीन की वर्तमान आर्थिक चुनौतियां, अमेरिका चीन की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की मजबूत स्थिति, इन वैश्विक कारकों ने क्या बीजिंग को भारत के साथ वार्ता के लिए आने पर प्रेरित किया है, और साथ ही साथ क्या ये चीन का एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म रणनीतिक बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम, क्या लगता है?
0: जो आपका दूसरा सवाल है कि ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या स्ट्रेटेजिक रियलाइनमेंट है, मुझे लगता है इसका जवाब तो कुछ समय बाद ही मिल सकता है हमको, जब हमको ये समझ में आए कि ये एक क्लियर पता चले कि चीन क्या, जो उसने पॉलिसी अप्रोच अभी लिया है, क्या इस पर वो अडिग रहेगा। क्योंकि चीन में हमने देखा है बहुत चेंजेस, बदलाव आते हैं और चीन की पॉलिसी से बदलाव आते हैं, और वो बदलाव ऐसे होते हैं कभी कभी कि वो जो, जैसा भारत ने कहा है कि जो अग्रीड होता है उसको वो ओवरटर्न कर देते हैं। और इसीलिए जब जो गलवान इतना बड़ा शॉक हुआ, वो इसलिए हुआ कि ये तो एक अग्रीड था कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर, जो अग्रीमेंट भारत और चीन के बीच में था, उसको ओवरटर्न करके वहां पर जो गलवान वाला एपिसोड हुआ, तो उससे ट्रस्ट में बहुत बड़ी कमी आई। अब देखना पड़ेगा लगातार आगे आने वाले समय में कि किस तरह से चीन बिहेव करता है, क्या चीन अपनी पॉलिसीज पर अडिग रहता है, क्या चीन भारत के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ाने में कुछ गुड फेथ नेगोशिएट करता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका जिक्र पहले भी हो चुका है, देखिए समस्याएं और भी हैं चीन के भारत संबंधों में, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के समय में हुआ, चीन और पाकिस्तान के संबंध जिस तरह के हैं, चीन जिस तरह से इंडियन ओशन में प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहा है, वो सारी जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह बनी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चीन अपनी कोई रणनीतिक, जो उसकी समझ है भारत के बारे में, भारत के बढ़ते हुए जिसका आपने जिक्र किया, भारत का प्रभुत्व है, प्रभाव है दुनिया में, वो बढ़ रहा है, और चीन के लिए बिल्कुल एक परेशानी का सबब होगा कि चीन जो अपना प्रभुत्व चाहता है इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत में, उसमें भारत जैसा देश अगर उसको चैलेंज करता है, तो चीन साम दाम दंडभेद सब कुछ करके उसको कोशिश करेगा कि भारत एक सेकेंड टियर पावर के तौर पर ही खड़ा रहे। मुझे लगता है इसीलिए ये बात को मानना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि चीन दूरगामी पॉलिसी अप्रोच भारत के लिए ले रहा है, और वो अपने संबंधों को इस कदर ठीक करना चाहता है भारत के साथ कि बॉर्डर इशू जो भारत चीन संबंधों के कोर में है, उस पर वो उसको टारगेट करके उसको सॉल्व करे। तो मुझे लगता है कि जो बदलाव आ रहे हैं दुनिया भर में, वो एक रोल प्ले कर रहे हैं, चीन के अंदर भी समस्याएं हैं, चीन बाहर से भी थोड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से टारगेट कर रहा है, और मुझे लगता है उसको देखते हुए चीन को भी लगता होगा कि एक अच्छा मौका है कि भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार कर ट्रस्ट डेफिसिट जो है भारत के साथ उसको कम किया जा सकता है। लेकिन क्या ये हो पाएगा चीन से, और क्या भारत चीन को इस नजरिए से और अपना नजरिया भारत बदल पाएगा पूरी तरह से, ये मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा आगे आने वाली जो पर।
2: श्रोताओं, शांति और समाधान में अंतर होता है। शांति का अर्थ है टकराव न होना, स्थिरता का अर्थ है टकराव की संभावना को कम करना, लेकिन समाधान का अर्थ होता है उस मूल समस्या को समाप्त करना जिससे टकराव बार बार जन्म ले सकता है। भारत और चीन के सामने आज शायद सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वे सीमा विवाद को केवल मैनेज करेंगे, क्या वे इतिहास के इस लंबे अध्याय को धीरे धीरे समाधान की दिशा में लेकर आगे बढ़ाएंगे। इसका जवाब केवल बीजिंग या नई दिल्ली की एक बैठक में नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा सीमा पर ग्राउंड रियलिटी से, सैन्य तैनाती के फैसलों से, कूटनीतिक निरंतरता से, और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति से, क्योंकि दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच शांति केवल द्विपक्षीय हित नहीं है, ये एशिया की स्थिरता से जुड़ा प्रश्न है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक सकारात्मक समाधान देखने को मिलेगा। मेजर जनरल अशोक कुमार जी और प्रोफेसर हर्ष वी पंत जी, चर्चा का विषय है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
0: जय हिंद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है रूपक महाकवि कालिदास। लेखक हैं ओम जोशी और प्रस्तुतकर्ता उदित तिवारी।

0: यदि तुम युवावस्था के फूल, प्रौढ़ावस्था के फल और अन्य ऐसी सामग्रियां एक ही स्थान पर खोजना चाहो जिनसे आत्मा प्रभावित और तृप्त होता हो और मन शांति पाता हो, अर्थात यदि तुम स्वर्ग और मृत्यु लोक को एक ही स्थान पर देखना चाहते हो तो मेरे मुख से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता है, शाकुंतलम। महान कवि कालिदास की एक अमर रचना।
1: जर्मन कवि गेटे ने कालिदास के बारे में अपने विचार इस तरह प्रकट किए हैं। महाकवि कालिदास हमारे राष्ट्रीय कवि थे। वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक थे। इस विशाल और विराट देश की संस्कृति कवि कालिदास की वाणी में बोलती है।
0: वो जो चरम सत्य है सभी अज्ञान से परे है और वो आत्मा और पदार्थ के विभाजन से ऊपर है। वो सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। वो अपने को तीन रूपों में व्यक्त करता है, त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्म, विष्णु और शिव, कर्ता, पालक तथा संहारक। ये देव समान पद वाले हैं। आम जीवन में कालिदास शिवतंत्र के उपासक हैं। अभिज्ञान शाकुंतल विक्रमोर्वशीय मालविकाग्निमित्र की आरंभिक प्रार्थनाओं से प्रकट होता है कि कालिदास शिव उपासक थे। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर।
1: इसी कथन को तुलसीदास ने रामचरितमानस में अपनाया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो।

0: इसी तरह कालिदास के बाकर्थ संबंधी कथन का प्रतिबिंब तुलसी में मिलता है। गिरा अरथ जल वीचिसम कही अत भिन्न न भिन्न, अर्थात वाणी और उसका अर्थ जल और उसकी लहरों के समान ही है, इनको अलग अलग नहीं कहा जा सकता। कालिदास के शिव स्वरूप के विषय में डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा का कथन है,
1: महाकवि कालिदास की दृष्टि में केवल शिव ही ईश्वर हैं। वेदांत दर्शन में जिसे एकमात्र पुरुष कहा जाता है और कठोर साधना के द्वारा ही जिसकी खोज की जा सकती है, वे शिव स्थिर भक्ति के माध्यम से अत्यंत

0: विक्रमोर्वशीयम नाटक के मंगलाचरण में कालिदास शिव को इसी प्रकार रूपायित करते हैं। वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषम व्याप्यस्थितम रोदसी यस्मिन् ईश्वर इत्यनन्य विषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अंतरयश्च मुमुक्षुभिर् नियमित प्राणादिभिर् मृग्यते सस्थाणुः स्थिर भक्ति योग सुलभो निःश्रेयसायास्तु वः। रघुवंश महाकाव्य के तृतीय सर्ग में भी महेश्वरस् त्र्यंबक एव नापरः कहकर कालिदास ने अपनी इस मान्यता को पुष्ट किया है कि शिव के अतिरिक्त अन्य कोई महेश्वर नहीं है। इसी काव्य का आरंभ करते हुए वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ कहकर महाकवि ने शिव पार्वती के अभिन्न स्वरूप अर्धनारीश्वर की वंदना की है। कुमार संभव महाकाव्य में कालिदास के शिव अपने अनंत असीम एवं विराट रूप में चित्रित हुए हैं। पिनाक धनुष को धारण करने वाले शिव की यथार्थता को कौन जान सकता है?
1: डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा
0: नसंति याथार्थ्य विदह पिनाकिनः कहकर शिव के वर्णन में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए भी कवि कुलगुरु ने कुमार संभवम में शिव के महिमामय स्वरूप का दर्शन कराया है। विभूषणोद्भासी पिनद्ध भोगी वा गजाजिनालंबी दुकूलधारी वा कपाली वा स्यात् अथवेन्दुशेखरम् न विश्वमूर्तेरवधार्यते वपुः। मेघदूतम के ही कुछ अन्य संदर्भों में कालिदास ने मेघ से बार बार शिव का आराधन कराया है। मेघ को हिमालय के एक शिलाखंड पर अंकित शिव के उस चरण चिन्ह की प्रदक्षिणा करनी है जिसका दर्शन मात्र कर श्रद्धालु जन शिव गण का स्थिर पद पा जाते हैं। तत्र व्यक्तम दृशदि चरणन्यासमर्धेन्दु मौलेः शश्वत सिद्धैरुपचित बलिम भक्ति नम्रः परीयाः यस्मिन् दृष्टे कर्ण विगमादूर्ध्वमुद्धूत पापाः संकल्पन्ते स्थिर गण पद प्राप्तये श्रद्धधानाः। कामरूप मेघ से पांडव नृत्य आरंभ करने वाले शिव की उठी हुई भुजाओं पर गज चर्म के समान छा जाने, शिवपुत्र कार्तिकेय को पुष्प वृष्टि से स्नान कराने और हिमालय में क्रीड़ा शैल पर विचरण करती पार्वती के लिए सोपान बन जाने का अनुरोध करते हुए महाकवि ने अपनी शिव भक्ति को प्रतिपद रेखांकित किया है।

0: कालिदास के जीवन काल के बारे में थोड़ा विवाद है। अशोक और अग्निमित्र के शासन काल से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार कालिदास का जीवन काल पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। परंपरा के अनुसार कालिदास उज्जैनी के उन राजा विक्रमादित्य के समकालीन हैं जिन्होंने ईसा से 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत चलाया। विक्रमोर्वशीय के नायक पुरुर्वा के नाम का विक्रम में परिवर्तन से इस तर्क को बल मिलता है कि कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के राज दरबारी कवि थे।
1: मेघदूत में उज्जैनी और क्षिप्रा का भी उल्लेख है। इस आधार पर ऐसी मान्यता है कि कालिदास गुप्त काल के थे और वे उन चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में थे जिन्हें विक्रमादित्य की पदवी प्राप्त थी। वे 345 ईस्वी में सत्ता में आए और उन्होंने 414 ईस्वी तक शासन किया। कालिदास के ऐतिहासिक प्रमाणों के विषय में विशेष जानकारी देते हुए प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता अश्विनी शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर आरसी ठाकुर।
2: इन सिक्कों के ऊपर क्षिप्रा कालिदास जी के साहित्य में वर्णित गंभीर दोनों नदियों का अंकन सिक्कों पर मिलता है। साथ ही शिव पार्वती का कल्याण स्वरूप सुंदर रूप जो है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के सिक्कों पर उज्जैन के सिक्कों पर मिलता है, जिसमें शिव और पार्वती के विवाह की पूरी कथा उन सिक्कों को देखने से सामने समझ में आ जाती है, जिस पर क्षिप्रा नदी के किनारे शिव पार्वती का हाथ पकड़ कर खड़े हैं। ऊपर मंगल का प्रतीक स्वस्तिक है, नदी में कछुए हैं, मछलियां हैं, जल से पूरित है, पास में वृक्ष है, शिव मंदिर सिक्कों पर मिलता है, शिवलिंग सिक्कों पर मिलता है, एक विशाल शिवलिंग मिलता है, तालाब मिलते हैं। उस समय जो जिन वनस्पतियों का वर्णन आया है वो वनस्पतियां भी हमको मुद्राओं पर मिलती है, पहाड़ मिलते हैं और अट्टालिकाएं मिलती है, और साथ ही जितना भगवान के जो रूपों का वर्णन है, कथाओं का वर्णन जो कालिदास जी के साहित्य में आया वो भी इसके ऊपर उड़ते हुए यक्ष तक सिक्कों पर मिलते हैं। कालिदास जी ने जो उज्जैन की ललनाओं का या मानवीय सौंदर्य का रूप का वर्णन किया है, तो हम पर यहाँ मूर्त रूप में सिक्कों के ऊपर इस तरह की सुंदर मूर्तियां मिलती है। हीरे जवाहरात से अलंकृत हमारे यहाँ पर मानव आकृतियां मिलती है, उससे संदर्भित पूरे सिक्के एक इतिहास को खोल करके बैठे हैं। इंद्र खड़ा है, वज्र लिए हुए शिव खड़े हैं, तांडव नृत्य करते हुए शिव हैं, शिव धान अवस्था में बैठे हैं, शिव जटाजूट शिव गंगा का अवतरण करते हुए हैं। तो हमें कालिदास जी के साहित्य के वर्णन के कई पहलू जो है सिक्कों पर देखने से अगर ध्यान से हम देखें तो बराबर मिलेंगे, और इसमें अध्ययन की ओर बहुत ज्यादा आगे आवश्यकता है।
3: सोमदेव कृत कथा सरित सागर में उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य का उल्लेख है। यह ग्रंथ गुणाढ्य कृत बृहत कथा पर आधारित है जिसका समय 78 ईसवी माना जाता है। कथा सरित सागर के अनुसार विक्रमादित्य उज्जैनी के राजा महेंद्रादित्य का पुत्र था और इसने शकों को परास्त किया था। महाकवि हाल की गाथा सप्तशती में विक्रमादित्य नामक दानी राजा का उल्लेख मिलता है। इस काव्य का रचना काल 70 ईसवी के लगभग है। विद्वानों ने इसके आधार पर विक्रम का समय 100 वर्ष ईसा पूर्व माना है। इसी विक्रमादित्य को शकारी की उपाधि प्राप्त हुई थी। भारतीय विद्वानों ने इस विक्रमादित्य को ऐतिहासिक व्यक्ति मानकर उनके दरबार में कालिदास की स्थिति स्वीकार की है। विक्रमादित्य के ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में विद्यमान होने के कुछ अन्य प्रमाण भी निरंतर मिल रहे हैं। इस आधार पर महाकवि का काल ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी मानना उपयुक्त प्रतीत होता है।
0: ऐसी मान्यता है कि कालिदास गुप्त काल के थे और वे उन चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में थे जिन्हें विक्रमादित्य की पदवी प्राप्त थी। वे 345 ईसवी में सत्ता में आए और उन्होंने 414 ईसवी तक शासन किया। कालिदास के ऐतिहासिक प्रमाणों के विषय में विशेष जानकारी

प्रकार के प्राप्त हुए थे, जिस प्रकार से हम कालिदास की जो साहित्य है, जो उसपे ऋतु संहार में जिस प्रकार से हमें प्रकृति के चित्रण देखने को मिलते हैं, ऐसे पात्रों पर चित्रण देखने को मिले, स्पष्ट हुआ कि वो गुप्त काल में, स्पष्ट हुआ कि वो शुंग काल में, उसमें विशेष प्रकार से हमें वृक्ष देखने को मिलते हैं, तो वह प्रकृति चित्रण ऋतु संहार का हमें जिस प्रकार से उद्घोष करवाता है, वह पुरातात्विक दृष्टि ऑथेंटिक रूप से विद्वानों ने उसको स्वीकार जरूर नहीं किया हो, किंतु फिर भी हम उस किंवदंतियों को साकार मानते हुए, साहित्यिक स्रोतों को साकार मानते हुए पुरातत्व से तालमेल मिलाने की आज जो हमें वर्तमान परिस्थितियां दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से वह पुरातात्विक साक्ष्य हैं। और जो गढ़कालिका माता मंदिर की चर्चा मैं कर रहा हूं आपसे, वह माता मंदिर अक्षुण्ण रूप से हर्षवर्धन के काल में 606 ईस्वी में उसके अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और उसके बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ पर कालिदास आकर आराधना करते थे और वह उनकी आराध्य देवी रही है, और वही परिक्षेत्र वणिकों का व्यापारिक क्षेत्र था। कहा जाता है कि विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे जरूर, किंतु पुरातात्विक साक्ष्यों के अभाव में उनकी बातें नहीं बन पाई, किंतु आज स्पष्ट हो रहा है कि विक्रमादित्य के एक से अधिक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं, तो कालिदास उनके नवरत्न में से एक थे और उनके साक्ष्य भी अब हमें प्राप्त होते जा रहे हैं। कालिदास निश्चित रूप से उज्जैन के थे और उज्जैन के ही रहेंगे।

0: कालिदास के जन्म स्थान के बारे में भी विवाद है, लेकिन उज्जैन के प्रति उनके विशेष प्रेम को देखते हुए लोग उन्हें उज्जैन का निवासी मानते हैं।
1: उज्जैन की धरती से कालिदास को कोई अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार नहीं अलग कर सकता जैसे सूर्य से उपकिरण अलग नहीं की जा सकती।
0: बिहार प्रांत के इतिहासविद डॉक्टर किशोर कुणाल,
1: कालिदास कहते हैं कि अच्छा शिक्षक, सच्चा शिक्षक, सफल शिक्षक वही होगा इसमें इन दोनों गुणों का समावेश हो, यानी ज्ञान पर भी विद्या पर भी पूरा अधिकार हो और उस विद्या को अपने तक सीमित नहीं रखे बल्कि समाज में सबको बांटे भी, तब जाकर के यह शिक्षक वह शिक्षक सफल होगा। यह जो परोपकार की भावना होती है, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का जो एक संकल्प होता है वह शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। इतना कहने के बाद फिर मालिका अग्निमित्र में ही कालिदास कहते हैं, यस्या गमः केवल जीविका ये तं ज्ञान पण्यं वनिजंग वदन। कितना ज्ञान हो गया, यस्या गमः केवल जीविका ये, इतना ज्ञान होने के बाद भी वह ज्ञान केवल अपनी जीविका तक सीमित रह गया, यानी पैसा लिया, ज्ञान बांटा, उसको कालिदास क्या कहते हैं, ज्ञान पण्यंग वनिजंग वदन्ति। ऐसा व्यक्ति क्या है, पण्य कहते हैं बाजार को बेचना, तो ज्ञान पण्यंग वनिजंग वदन्ति, ऐसा व्यक्ति शिक्षक नहीं है, ज्ञान को बेचने वाला व्यापारी है, ये कालिदास कहते हैं।
0: साहित्यकारों ने ये सिद्ध किया है कि महाकवि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्ठा गांव में हुआ था। कालिदास ने यहीं अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी और यहीं पर उन्होंने मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश जैसे महाकाव्यों की रचना की थी।
2: कविल्ठा चारधाम यात्रा मार्ग में गुप्तकाशी में स्थित है। गुप्तकाशी से कालीमठ सिद्धपीठ वाले रास्ते में कालीमठ मंदिर से 4 किलोमीटर आगे कविल्ठा गांव है। कविल्ठा में सरकार ने कालिदास की प्रतिमा स्थापित कर एक सभागार का भी निर्माण करवाया है, जहां पर हर साल जून माह में 3 दिनों तक गोष्ठी का आयोजन होता है जिसमें देश भर के विद्वान भाग लेते हैं।
0: कालिदास के काव्य वैशिष्ट के विषय में चर्चा करते हुए डॉक्टर मोहन गुप्त,
3: कालिदास के प्रसिद्ध नाटक शाकुंतल का एक पद्य है, अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम करुरुहि रणाविद्धम रत्नम मधुनव मनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूप मनघम न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थाश्चित विधि। शकुंतला का रूप एक अनाघ्रात पुष्प है, नाखूनों से अखंडित किसलय है, उत्तम रत्न है, मधु है नवीन और अनास्वादित, और है पुण्यों का अखंड फल, पता नहीं विधाता इसके भोग से किसको बड़भागी बनाता है। शकुंतला कन्या है अतः स्मरणीय है। अपनी नायिका के सौंदर्य वर्णन में प्रकृति के इतने सूक्ष्म उपादान खोजना एक केवल उपमा और वक्तव्य को पूर्णता देता है, अपितु मनुष्य और प्रकृति को समान रूप से

0: मान भी प्रदान करता है।
1: अनसुए, अनसुए, नई कुशा का एक कांटा मेरे पैर में चुभ गया है और मेरा वल्कल भी इस वृक्ष की शाखा में उलझ गया है। तनिक प्रतीक्षा करो जब तक मैं इसे छुड़ाने लूं।
2: क्षतिपूर्ण शरीरं धावति पश्चाद संस्तुतं चेतः चीनान शुक्मिव केतोः प्रतिवातम नियमानस्य।
3: गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चाद संस्तुतं चेतः।
0: कालिदास उपमा के कवि हैं। उनकी उपमा भी ऐसी उपमा है जिसमें प्रतिष्ठ है चतुरस्रता, एकांगिता नहीं।
4: डॉक्टर मोहन गुप्त,
0: कालिदास की उपमाएं अनुभव की उपमाएं हैं। उनके अनुभव में खेत खलियान से लेकर संध्या, प्रभात, दिन रात, ऋतु और मानव मन के संपूर्ण इंद्रिय अनुभव मूर्तिमान होते हैं। उनकी उपमा की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता है उपमान उपमेय दोनों का प्रस्तुत होना। रघुवंश में दिलीप दिनभर नंदिनी को चराकर सायंकाल आश्रम लौट रहे हैं, यह छटा देखने योग्य है। संचार पूतानि गजंगत दिगंतराणि कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनिश्च धेनुः। महाकवि की व्यंजनाएं अत्यंत नैसर्गिक तथा जीवंत हैं, जिसके कारण उपमान उपमेय के अनेक अर्थ अपनी संपूर्णता में उद्घाटित होते चले जाते हैं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध समीक्षक कॉलरीज ने इसे एसम्प्लास्टिक इमेजिनेशन कहा है, अर्थात संश्लेषक प्रज्ञा, तथा उसे काव्य का एक श्रेष्ठतम प्रतिमान माना है। महाकवि में इस प्रतिमान के अत्यंत उत्कृष्ट रूप के पग पग पर दर्शन होते हैं। पार्वती ने विवाह के अवसर पर नया सफेद रेशम का वस्त्र धारण किया है और दर्पण के सामने खड़ी हो गई हैं। उस शुभ्र रूप राज का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ रहा है। महाकवि की व्यंजना इस शुभ्रता को अनेक गुना बढ़ा देती है। क्षीरोदवेलेव सफेन पुंजा पर्याप्त चंद्रेव शरत्रियामा नवम नव क्षौम निवास नीसा भूयो बभौ दर्पण मात धाना। दूध के समुद्र की फिनयुक्त जैसे लहरें उठ रही हों, शरद की शुभ्र रात्रि जिसमें मानव पूर्ण चंद्रमा समाता न हो, इस प्रकार की शोभा उसमें पार्वती जी की थी जो दर्पण में पड़ने वाले प्रतिबिंब के कारण और भी दीप्त हो गई थी, मानो चारों ओर शुभ्रता बिखर गई हो। महाकवि के श्रेष्ठतम चित्रों में वह दृश्य है जब पार्वती जी शिव जी के अचानक प्रकट होने पर वहां से जाने के लिए अपना पैर उठाती हैं और ठिठक रह जाती हैं। कुछ क्षण पहले एक युवक के वेश में वे पार्वती जी को शिवजी से विवाह न करने की सलाह देते हैं, जिससे वे क्रुद्ध हो जाती हैं तथा अचानक वहां अपनी प्रीतम को पाकर उनकी क्या दशा होती है उसका अत्यंत सजीव चित्रण कुमार संभव प्रसिद्ध श्लोक में है। तम वीक्ष वे पथुमति सरसांग यष्टिर निक्षेपणाय पद मुद्रत मुद्वहंती मार्गाचल व्यतिकरा कुलितेव सिंधु शैलाधिराज तनया नये उन्नतस्थु। इस प्रकार का उपमान केवल महाकवि कालिदास की दृष्टि दे सकती है।
5: जो महाराज विक्रमादित्य जो यहाँ के शासक थे, भारतीय इतिहास में अमर हैं, उन महाराज विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे उनमें से महाकवि कालिदास और वराहमिहिर, ये दो उल्लेखनीय हैं।
4: वाराणसी के विद्वान डॉक्टर प्रभुनाथ द्विवेदी,
5: दोनों की कर्मस्थली उज्जैनी रही है। कालिदास और उस परंपरा में जो विक्रमादित्य, भर्तृहरि और वर्तमान में भी पंडित सूर्य नारायण व्यास, इन लोगों ने उज्जैनी का बड़ा मान बढ़ाया। ये स्वर्ग का खंड इसीलिए श्री विशाला कही जाती है। कालिदास को हम क्यों स्मरण करते हैं, क्या विशेषता है कालिदास में, किस लिए स्मरण करते हैं? वस्तुतः भारतीय संस्कृति और देववाणी संस्कृत, इन दोनों की रक्षा कालिदास के हाथों में।

0: और आइए अब कालिदास के प्रसिद्ध प्रसंग के बारे में जान लें। अब ये कितना सच है और कितनी किंवदंती, लेकिन कालिदास की जीवनी का वर्णन करते समय इसका उल्लेख किए बिना उनकी जीवनी पूर्ण नहीं होती। कालिदास शक्लो सूरत से सुंदर थे और विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में एक थे, लेकिन कहा जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास की शादी विद्योत्तमा नामक की राजकुमारी से हुई। ऐसा कहा जाता है कि विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वो उसी के साथ शादी करेगी। जब विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया तो अपमान से दुखी कुछ विद्वानों ने कालिदास से उसका शास्त्रार्थ कराया।
1: हे राजकुमारी, मैं आपसे पराजित हो गया था, परंतु मैं अपने शिष्य को आपसे शास्त्रार्थ के लिए लाया हूँ।
2: तो आप क्या सोचते हैं कि गुरु पराजित हो गया और शिष्य जीत जाएगा? आखिर जो कुछ इसने सीखा होगा अपने गुरु से ही सीखा होगा।
1: आपका सोचना सही है राजकुमारी, परंतु इन्होंने ब्रह्मंड साधना कर बहुत विलक्षण ज्ञान अर्जित किया है और ये एक माह से मौन व्रत पर हैं।
2: मौन व्रत? तो फिर ये शास्त्रार्थ कैसे करेंगे?
1: राजकुमारी, ये संकेतों से शास्त्रार्थ करेंगे। क्या आपको ये चुनौती स्वीकार है?
0: राजकुमारी विद्योत्तमा ने इसे अपना अपमान समझा और स्वीकारोक्ति दे दी। विद्योत्तमा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी, जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब दे देते थे। विद्योत्तमा को लगता था कि कालिदास गूढ़ प्रश्न का गूढ़ जवाब दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, विद्योत्तमा ने प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया तो कालिदास को लगा कि ये थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। उसके जवाब में कालिदास ने घूंसा दिखाया तो विद्योत्तमा को लगा कि वो कह रहा है कि पांचों इंद्रियां भले ही अलग हों, सभी एक मन के द्वारा संचालित है। विद्योत्तमा और कालिदास का विवाह हो गया। तब विद्योत्तमा को सच्चाई का पता चला कि कालिदास अनपढ़ है। उसने कालिदास को धिक्कारा और घर से निकाल दिया।
2: धिक्कार है तुम्हें, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा बाकी है तो घर से निकल जाओ और तब ही लौट कर आना जब एक सच्चे पंडित बन जाओ।
0: कालिदास ने सच्चे मन से काली देवी की आराधना की और उनके आशीर्वाद से विज्ञानी और धनवान बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खड़काकर कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देहि
2: अस्ति कश्चित् बाग्विशेषः।
0: और जब उसने दरवाजा खोला तो द्वार पर कालिदास को पाया।
2: कालिदास ने विद्योत्तमा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना और उसके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में जगह दी। कुमार संभवम का प्रारंभ होता है अस्युत्तर श्याम दिशि से। मेघदूतम का पहला शब्द है कश्चित कांता और रघुवंशम की शुरुआत होती है वागर्थाविव से।
0: कालिदास की महान कृतियों में है कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। उनकी पहली रचना मालविकाग्निमित्रम मानी जाती है। इसके अलावा उन्होंने विक्रमोर्वशीयम जैसे आदि काव्यों की भी रचना की। उपमाओं में कालिदास का जवाब नहीं। रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर का दृश्य देखिए।
1: संचारिणी दीप शिखेव रात्रो यम यम व्यतियाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गट एव प्रपेदे विवर्ण भावम स स भूमिपालः।
2: अर्थात स्वयंवर के लिए माला लेकर वो जिस जिस राजा के सामने आती है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई दीपशिखा सामने आकर खड़ी हो गई हो, जैसे दीपशिखा के प्रकाश से वह राजा खिल उठता है। लेकिन जैसे ही वह उसके सामने से आगे बढ़ जाती है राजा का मुख धूमिल हो जाता है।
0: उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। कालिदास अपनी अलंकार युक्त सुंदर सरल और मधुर भाषा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं।
2: कालिदास सौंदर्य के कवि हैं।
0: एक वानगी देखिए, सरसज मनुविद्धम शैवालेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्य लक्ष्मीं तनोति यमिदिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिहि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम।
2: कमल यद्यपि शैवाल में लिपटा है फिर भी सुंदर है। चंद्रमा का कलंक यद्यपि काला है किंतु उसकी सुंदरता बढ़ाता है। जो सुकुमार कन्या वल्कल वस्त्र धारण किए हुए है तथापि वह और सुंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि सुंदर रूपों को क्या सुशोभित नहीं कर सकता।
0: महाकवि कालिदास हमारे राष्ट्रीय कवि थे। वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक थे। इस विशाल तथा विराट देश की संस्कृति कालिदास की वाणी में बोलती है। पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम न विमित्य वद्या संतः परीक्षां तरत भजन्ते मूढ़ा पर प्रत्ययने बुद्धि।
2: यानी कोई प्राचीन काव्य हो तो ही उत्तम नहीं हो जाता और ना ही अर्वाचीन रचना निम्न श्रेणी की हो जाती है। काव्यों की समीक्षा करके ही समीक्षक उसका निर्णय करते हैं। अज्ञानी दूसरों के कथन पर विश्वास करके अपना मंतव्य प्रकट करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे रूपक महाकवि कालिदास, लेखक ओम जोशी, प्रस्तुतकर्ता थे उदित तिवारी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद आमिर खां का शास्त्रीय गायन, राग है रागेश्री।

अभी आपने सुना उस्ताद आमिर खां का शास्त्रीय गायन, राग था रागेश्री। शास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नोवाकोट और चितवन तक पहुंचा।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नोवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर है 9779851316807 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्चस्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दुनियाभर में रह रहे केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलवासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्वेच ओपन में भारत के वीर चोटरानी और सेल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Neena Oracle. A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River this morning from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from the different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Birendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, Mr. Modi said, "India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal." Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal. The embassy said that people requiring assistance can contact the embassy on helpline +977 985 131 6807, +977 970 910 7500, and +977 981 032 6117. These emergency numbers can also be contacted through WhatsApp. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Heightened vigilance is being maintained in six districts of Bihar: West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali. Chief Minister Samrat Chaudhary said that a high-level team has been constituted to closely monitor the situation. Union Home Minister Amit Shah spoke to Chief Minister Samrat Chaudhary over the phone in view of the flood situation in neighbouring country. Mr. Shah assured the state government of providing all possible assistance to deal with the emerging situation. In Uttar Pradesh as well, vigilance has been intensified in the districts of Maharajganj and Kushinagar near the Nepal border. Chief Minister Yogi Adityanath has directed the local administration to take all necessary precautionary measures and maintain strict vigil. NDRF Commandant Gyaneshwar Singh said the National Disaster Response Force NDRF has deployed 9 teams in Bihar and 11 teams in Uttar Pradesh to deal with the emerging situation following the flash floods in Nepal. Union Minister of Railways Ashwini Vaishnav has said that Indian Railways is moving towards four-laning the entire high-density railway routes. In a social media post, Mr. Vaishnav said there are 7 high-density routes spread over nearly 11,000 kilometres and carry a major share of the country's rail traffic. The 7 high-density routes are Delhi-Howrah, Howrah-Chennai, Chennai-Mumbai, Mumbai-Delhi, Delhi-Chennai-Mumbai-Howrah and Delhi-Guwahati. The Indian Medical Association IMA has urged people to remain vigilant amid a seasonal rise in influenza AH1N1 cases, saying that the majority of infections are mild and self-limiting and there is no cause for panic. The IMA has advised people not to take antibiotics over the counter for flu symptoms, stressing that H1N1 is a viral infection and antibiotics do not kill viruses. The Delhi government today handed over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana. Out of this, 2,500 letters were given at a formal ceremony. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर इसी मीटर्स पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।